रहे थे अभी ना जा मेरे साथी, दिल पुकारे आरे आरे आरे, पांव छू लेने दो फूलों को।

लता जी के साथ में मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी ताजमहल से आप सुन रहे थे पाँव छू लेने दो फूलों को इनायत होगी। जिंदगी में हमेशा उस इंसान की कदर करो जो अच्छे वक्त में आपकी खुशी में शामिल रहे और बुरे वक्त में आपका साथ दे। सुराहीदार गर्दन कोयल सी है आवाज फ्रॉम द मूवी अमन से हम पेश करते हैं और आपको सुनाने वाले हैं मोहम्मद रफी जी।

0: to enjoy ever.
1: अभी आप सुन रहे थे सुराही दार गर्दन कोयल सी है आवाज, तेरी हर एक बात पे मुझको है बड़ा नास। फ्रॉम द मूवी अमन से हमने पेश किए हैं, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे। पुजारिन है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं मेरा प्रेम हिमालय से ऊंचा, सागर से गहरा प्यार मेरा।

नमाई दी मुकेश जी की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी पुजारिन से हमने पेश किए हैं मेरा प्रेम हिमालय से ऊंचा सागर से गहरा प्यार मेरा। गुजर जाती है ये खूबसूरत लम्हे यूं मुसाफिरों की तरह, गुजर जाती है ये खूबसूरत लम्हे यूं मुसाफिरों की तरह, यादें वही खड़ी रह जाती हैं रुके रस्तों की तरह। फ्रॉम द मूवी अपने हुए पर आए इसी फिल्म से हम पेश करते हैं मैंने बुलाया और तुम आए। लता जी आपको सुनाने वाले हैं।

हुए पराये हैं फिल्म का नाम और इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं मैंने बुलाया और तुम आए। लता जी की आवाज़ में अभी आपने सुने हैं और म्यूजिक दिए हैं शंकर जय किशन जी। दिल लगाकर हम ये समझे जिंदगी क्या चीज़ है, फ्रॉम द मूवी जिंदगी और मौत से हम पेश करते हैं। महेंद्र कपूर जी आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे दिल लगाकर हम ये समझे जिंदगी क्या चीज़ है, फ्रॉम द मूवी जिंदगी और मौत से हमने पेश किए हैं, महेंद्र कपूर जी आपको सुनाने वाले थे। एक गलत बात और एक अधूरी बात, एक गलत बात और एक अधूरी बात न जाने कितने ही रिश्ते तोड़ देती हैं। जिंदगी है क्या, सुन मेरी जा, प्यार भरा दिल मीठी सुबह, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं। फ्रॉम द मूवी माया से आप सुनेंगे और म्यूजिक दिए है सलील चौधरी ने।

फ्रॉम द मूवी माया से हमने पेश किए है जिंदगी है क्या सुन मेरी जा प्यार भरा दिल मीठी जुबा। मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे। वक्त है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए। आशा भोसले जी आपको सुनाने वाले हैं, लेकिन ये गीत पेश करने से पहले एक बात बोलूं, भरोसा उस पर करो तो तुम्हारी तीन बातें पहचान सके, भरोसा उस पर करो तो तुम्हारी तीन बातों पहचान सके, मुस्कुराहट के पीछे दुख, गुस्से के पीछे प्यार, चुप रहने के पीछे वजह।

अभी आप सुन रहे थे हम जिप्सी मिट्टी के आपकी बाहों में आ गए, फ्रॉम द मूवी वक्त से हमने पेश किए हैं, आशा भोसले जी आपको सुनाने वाले थे। जिंदगी में एक चीज़ तो कभी डिलीट नहीं होती, जिंदगी में एक चीज़ तो कभी डिलीट नहीं होती, और वो है किसी की यादें। ये वादियाँ ये फिजाएँ बुला रही है तुम्हें, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी आज और कल।

अभी आप सुन रहे थे ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे।

दमाईती मुकेश जी की आवाज में अभी आप सुन रहे थे जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं। आशा पारेख इस फिल्म में काम किए हैं, साथ में मनोज कुमार जी और सिमी प्राण के साथ में। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं भरी दुनिया में आखिर दिल। मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले हैं।

आप सुन रहे थे भरी दुनिया में आखिर डिव को समझाने कहाँ जाए, आपको सुनाने वाले थे मोहम्मद रफ़ी जी। रोज़ स्टेटस बदलने से ज़िंदगी नहीं बदलती, रोज़ स्टेटस बदलने से ज़िंदगी नहीं बदलती, ज़िंदगी को बदलने के लिए अपना भी एक स्टेटस ज़रूरी है। वक्त करता जो वफा आप हमारे होते, फ्रॉम द मूवी दिल ने पुकारा से हम पेश करते हैं, दमायती मुकेश जी प्रोग्राम में आ रहे हैं।

दिल ने पुकारा फिल्म का नाम, और इसी फिल्म से आपको सुनाने वाले थे दमायती मुकेश जी। वक्त करता जो वफा आप हमारे होते। चीज़ों की कीमत मिलने से पहले होती है, चीज़ों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसान की कीमत खोने के बाद। चाहे कसूर किसी का भी हो, लेकिन रिश्ते में आंसू हमेशा बेकसूर के ही बहते हैं। मोहम्मद रफ़ी जी प्रोग्राम में आ रहे हैं, गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा, फ्रॉम द मूवी मेरे हुजूर।

मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे मेरे हुजूर है फिल्म का नाम गम उठाने के लिए मैं तुझिए जाऊंगा। हुए हैं तुम पे आशिक हम भला मानो बुरा मानो मेरे सनम।

अभी आप सुन रहे थे हुए हैं तुम पे आशिक हम, भला मानो बुरा मानो। लाखों है निगाह में जिंदगी की राह में, मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी फिर वही दिल लाया हूँ, द टाइटल आप सुनेंगे। लेकिन ये गीत पेश करने से पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ और वो ये है, बातों को भूल जाना भी सुकून देता है कभी कभी, बातों को भूल जाना भी सुकून देता है कभी कभी। बहुत बेचैन रहते हैं वो लोग जिन्हें हर बात याद रहते हैं।

मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले थे लखों है निगाह में जिंदगी की राह में फ्रॉम द मूवी फिर वही दिल आया हूँ इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं। मोहम्मद रफ़ी जी आ रहे हैं प्रोग्राम में, तीसरी मंजिल है फिल्म का नाम, और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं दीवाना मुझसा नहीं इस अंबर के नीचे, आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे। लेकिन ये गीत चलाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ वक्त के बारे में। वक्त सभी जिंदगी में, वक्त सबकी जिंदगी में वक्त बदलता रहता है, सबकी जिंदगी में वक्त बदलता रहता है, कभी अच्छा तो कभी बुरा, कभी गम तो कभी खुशी। ऐसा इंसान कोई नहीं है जिसकी ज़िंदगी में वक्त एक सा रहे, इसलिए अच्छे वक्त में कभी अपनी ज़ात और वक्त पर गुरूर नहीं करनी चाहिए और बुरे वक्त में कभी ना शुक्र और मायूस नहीं होना चाहिए।

तीसरी मंजिल से हमने पेश किए हैं दीवाना मुझसा नहीं इस अंबर के नीचे, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे। किस्मत में होगा वो चल कर आएगा, किस्मत में होगा वो चल कर आएगा, और जो नहीं होगा वो आकर भी चला जाएगा। लाट साहेब है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे।

सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे फ्रॉम द मूवी लाट साहेब से हमने पेश किए हैं। मिट्टी का मटका और रिश्ते की कीमत सिर्फ बनाने वालों को ही पता होती है, तोड़ने वालों को नहीं। मिट्टी का मटका और रिश्ते की कीमत सिर्फ बनाने वाले को पता होता है, तोड़ने वालों को नहीं। गलत होकर खुद को सही साबित करना उतना मुश्किल नहीं होता जितना सही होकर खुद को सही साबित करना होता है। तुम्हारे प्यार में हम बेकरार होके चले, शिकार करने को आए शिकार होके चले। फ्रॉम द मूवी शिकार से हम पेश करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे तुम्हारे प्यार में हम बेकरार होके चले, शिकार करने को आए शिकार होके चले। मोहम्मद रफी जी आ रहे हैं प्रोग्राम में फ्रॉम द मूवी आए मिलन की बेला से हम पेश करते हैं मैं प्यार का दीवाना।

सुनने वालों के खिदमत में आपको हम यहाँ से बहुत प्यार के साथ यहाँ पे आपको हम जी हाँ यहाँ से हम आपको स्वागत कह रही हूँ। शुरुआत करने से पहले ये जरूर कहूँगी कि हर पल में प्यार है, हर पल में प्यार है, हर पल में खुशियाँ है। जी लो तो जिंदगी है, जी लो तो जिंदगी है, खो दो तो यादें है। आपको हम यहाँ से इस खूबसूरत दिवस में स्वागत कर रही हूँ। स्वीकार कीजिए सेविका शांता की प्यार भरी राम राम प्रणाम

0: चैन से खाना भी नहीं लोगे। चलो।
1: डांटो मत सुरेश, ये भूखे हैं, हमारे पास इतना खाना है, क्यों ना हम बांट लें।

0: रीता के दिल में कितना रहम है।
1: ये इसकी बचपन की आदत है।
2: हाँ, अपना खाना किसी भूखे को देकर कितना खुश होती है, देखो ना।

कश्मीर से निकाला गया है, लता जी की आवाज में हम यहाँ से और श्रवण की है। इस खूबसूरत दिवस में आपको लेकर चलते हैं फिर से एक बार सुनने के लिए, लता जी के आवाज में साथ दे रहे हैं मोहम्मद रफी जी।

0: जो इंसान हर किसी को इज्जत और प्यार देता है, असल में वो खुद ही बड़ा इज्जतदार होता है, क्योंकि एक इंसान दूसरे इंसान को वही देता है जो उसके पास होता है। और यहाँ से हम सुनेंगे जॉनी वॉकर की आवाज़ में मोहम्मद रफ़ी, जो इसमें प्लेबैक की है, मिस्टर एंड मिसेस 55, एवरग्रीन सॉन्ग। जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, आप ही बता दो।
1: अमे

0: हो गांव के।
1: हाँ बस बड़े बड़े अखियों से डर गया है जी। सुनने वालों कहते हैं कि चाय के कप में सिर्फ चाय नहीं होती, चाय के कप में सिर्फ चाय नहीं होती, कुछ पल सुकून के भी होते हैं। यानी कि अब जब चाय पे बैठे हो तो कुछ पल आपको थोड़ा से रेस्ट मिलता है, तो इसलिए कहते हैं कि चाय के कप में सिर्फ चाय नहीं होती, कुछ पल सुकून के भी होते हैं।

सदा बहार गीत यहाँ से आपके लिए चलाया जाता है आप ही का फाहन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से। सावन का महीना पवन करे शोर, मुकेश और लता जी की आवाज़ में फिल्म का नाम मिलन।

चिड़िया यानी फोखल और मधुमक्खी होनिंग बई। तो ये चिड़िया ने पूछे मधुमक्खी से कि इतनी मेहनत से शहद यानी कि होनिंग बनाती हो और इंसान आकर उसे चुरा ले जाता है, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता? तो मधुमक्खी ने सुंदर जवाब दिया, मधुमक्खी ने चिड़िया को सुंदर जवाब दिया, इंसान मेरा शहद ही चुरा सकता है कि इंसान मेरा शहद ही चुरा सकता है, मेरी शहद बनाने की कला नहीं, कोई भी आपका क्रिएशन चुरा सकता है पर आपका टैलेंट नहीं चुरा पाते यार।

से जैसे मधुमक्खी के शहद लोग चुरा लेते हैं, ले जाते हैं इस्तेमाल करने के लिए, पर उनकी कला जिस तरह से वो मधु बनाते हैं, शहद बनाते हैं, उसका कला तो आज तक तो कोई नहीं पा पाए हैं। इसलिए कहते हैं कि आप जो करते हैं, शायद आपके जो आप बनाते हो उसका क्रिएशन ऐसे भी कोई चुरा सकते हैं, पर आपका मन का विचार जो है उसका बनाने के लिए वो शायद कोई नहीं चुरा पाएगा।

इस खूबसूरत दिवस में आपको लेकर चलते हैं सुनने के लिए आशा भोसले जी और किशोर कुमार जी की आवाज में कि आंखों आंखों में क्या हुआ।

बहुत शुक्रिया, करम मेहरबानी फरमाए आपको। रफी और आशा भोसले जी ने फिल्म का नाम एक मुसाफिर एक हसीना, तो एक मुसाफिर एक हसीना के तर लेकर हम आपको चलते कि हम तुम एक कमरे में बंद हैं।

जी हाँ सुनने वालों, हम तुम एक कमरे बंद हो और चाबी खो जाए तो सोचो क्या होगा। ये सुंदर सा गीत तो जो हम मिलकर और सुने हैं, श्रवण किए हैं आज इस खूबसूरत दिवस में, लता जी के आवाज में साथ दे रहे थे शैलेंद्र जी। फिल्म का नाम ये तो आपको जरूर से पता होगा, अगर पता नहीं तो हम यहाँ से बता देते हैं। फिल्म

खूबसूरत होना सिर्फ अच्छा नहीं, खूबसूरत होना सिर्फ अच्छा नहीं बल्कि अच्छा होना बहुत ही खूबसूरत है।

सुनने वालों, यहाँ से आपको हम लेकर चलते हैं सुनने के लिए श्री मोहम्मद रफी जी की आवाज़ में कि जिंदगी क्या है, गम का दरिया है।

से तस्वीर कहाँ बनती है, पानी से तस्वीर कहाँ बनती है, ख्वाबों से तकदीर कहाँ बनती है, किसी भी रिश्ते को सच्चे दिल से निभाओ, ये जिंदगी फिर वापस कहाँ मिलती है।

वो भोली सी याद आई है। मेरे दिल का तू वो गाना है, मेरे दिल का तू वो गाना है जो दिल से मुझको गाना है। तुझे तुझे धड़कन में बसाना है, मेरे दिल तुझ पे ही मरता है, मेरा दिल तुझ पे ही मरता है। तू हकीकत है चाहे फसाना है, बस मेरा जीना का बहाना है, जीने का तरीका तुझसे मिलकर मैंने जाना है।

कितने सुंदर से कहा है कि मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे आप किस लिए मिल गए। तो आप मिल गए तो दर्द दिल का पता ही चल गया कि आपके सीने में भी एक दिल धड़कता है। कौन किससे चाहकर दूर होता है, कौन किससे चाहकर दूर होता है, हर कोई अपने हालात से मजबूर होता है। हम तो बस इतना जानते हैं हर रिश्ता मोती और हर दोस्त कोहिनूर होता है।

वापस से निकाला गया है, जो पिक्चराइज किया गया है नेखन्तिन नेखनन सेस्तख में, और लता रफी जी के आवाज़ में हमने यहाँ से सुने। गुजरती है कुछ रातें ऐसी भी, गुजरती है कुछ रातें ऐसी भी, खुद खुद से बातें करते हैं खुद के बारे में।

मेरा दिल ये पुकारे आजा, लता जी की आवाज़ में हमने यहाँ सुन सुने सुने फन वालों, और फिल्म का नाम है नागिन। जी हाँ, फिल्म नागिन से हमने सुने लता जी की आवाज़ में। सुने वालों,

पर मैंने आपके लिए सिलेक्ट करके रखी हूँ, साजन बिना सुहागन की मधुबन खुशबू देता है। जी हाँ,

सुंदर मधुबन खुशबू देता है, वो तो सही है। रोटी के बारे में आपसे जरूर से कहूंगी कि कमाई छोटी या बड़ी हो सकती है, कमाई छोटी या बड़ी हो सकती है, पर रोटी की साइज लगभग सब घर में एक जैसे होते हैं।

रोटी कपड़ा और मकान से निकाला गया है जो मुकेश जी और लता जी के साथ यहाँ से हम सुने हैं। सब कुछ बदल जाता है उम्र के साथ, सब कुछ बदल जाता है उम्र के साथ। पहले जिद करते थे, अब सब्र करते हैं।

कहते कि माफ करना और शांत रहना सीखिए, माफ करना और शांत रहना सीखिए, आपके ऐसी ताकत बन जाएगी कि आपको पहाड़ भी रास्ता देगा।

मित्रों, आज जो बतलाने जा रहा हूँ उसे आज भी सुनना और जीवन में जरूर उतारिए। इसलिए तो हम बार बार ये बतलाते हैं ना, हम भी सुनते हैं, हम भी अपने जीवन में उतारते हैं मित्रों। तो ज्ञानी व्यक्ति, ध्यान करना, ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वाले का शोक करते हैं और ना ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा है, क्योंकि वो जानते हैं जो मर गया वो फिर से जन्म लेगा और जो जिंदा है वो एक दिन जरूर मरेगा। आप भी मरेंगे, हम भी मरेंगे, सभी मरेंगे। आप तो रोज देखते हैं मित्रों, तो शोक किस बात की। अच्छा, इंसान के नाते रोना पीटना हो जाता है। केवल ज्ञानी ही मित्रों, केवल ज्ञानी ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ता है मित्रों। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव है, ठीक उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। युद्ध हो या जीवन सफलता, केवल तीन शास्त्रों से प्राप्त होती है मित्रों, धर्म, धैर्य और साहस। धर्म, धैर्य और साहस मित्रों, यही तीन चीजों से प्राप्त होता है।

दोस्तों, ईश्वर से सर्व संबंध अनुभव करने का अर्थ है कि आप सभी इच्छाओं से पार जा चुके हैं।

मित्रों, कोई भी मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि ध्यान करना मित्रों, हम का बोलते हैं अपने देश में, कोई भी मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। किससे? अपने कर्मों से महान बनता है, जैसे आप, और ना जैसे बगल वाले घूसखोरी देकर डिग्री ले लेते हैं वगैरह, बोले हम महान हो गए। खबरदार, पास हो गए। मित्रों, कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, अपने आप पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हो, साथ छोड़ ही जाते हैं, साथ छोड़ ही जाते हैं। शायद इसका अनुभव है आपको, है? जिस पे आप बहुत भरोसा करते थे, अमान दिमानी लूर खदराज, है मित्रों। तो धर्म, चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो, हिसाब तुम्हारे कर्म का होगा, जरूर होगा, और धर्म का नहीं मित्र, गरीब है या अमीर, ये मायने नहीं रखता है, मतलब नहीं रखता है, बल्कि वह आपकी बुरे समय में आपका साथ कितना देता है, दिसना अतोरी, साथ कितना देता है और कहाँ तक मित्रों, ये मायने रखता है, और ना कुछ और है। दोस्तों, इन सब बातों पे ध्यान रखते हुए आगे सुनिए भजन को।

0: शांति।
1: मित्रों, जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरा में चमकती है, ठीक उसी प्रकार मित्रों, उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है। को आप भी कोसते हो ना? नहीं तो ठीक है। तो मनुष्य अपने भाग्य को कोसता है हमेशा ही, तो ये जानते हुए भी कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। आपका कर्म आपके हाथ में है मित्रों, और ना किसी और के हाथ में है।

मित्रों, जीवन बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत बनाने के लिए हम खुद हैं। खुद ही हम जीवन को खूबसूरत बनाते हैं और बिगाड़ भी देते हैं। और जब बिगड़ जाता है तो हम उंगलियां दिखाते हैं किसी और के, वो करे कारण भैले, वो कराई से, वो एक न कराई से, तू अपने कर लो। मित्रों, खबरदार, उंगली मत दिखाया करो। सत्य से कमाया धन, मित्रों, सत्य से कमाया धन हर प्रकार से सुख देता है। और छल कपट से कमाया धन दुख ही दुख देता है। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरा नहीं होते तो रास्ता बदलिए, अपने रास्ता को बदलिए, अपने तरीका को बदलिए, सिद्धांत नहीं। क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं, पेड़ भी बदलते रहते हैं अपने पत्तों को। जरिया थोड़ो बदले है, तो तू कहे कि अपना जरिया, अपने तरीका को बदल दो जीने के। उस साइड ठीक नहीं होगा ना, तो उसे बदलो, बदलो मित्रों।

दोस्तों, किसी के संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे, ध्यान करना, किसी के संगत से आपका विचार शुद्ध होने लगे तो समझ लेना मित्रों कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बनाता है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनके विशेषताओं से सीखता है। मगर आप तो नहीं, आप सीखते नहीं, आप तो जलन करते हो। ऐसे बात नहीं है तो बहुत अच्छी है, तो देखकर उनको विशेषताओं को सीखो, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करो, जलन मत करो, क्योंकि जलन में क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं मित्रों, कुछ नहीं मिलेगा।

दोस्तों, विश्वास के बगैर दुनिया में कोई भी रिश्ता ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता है। ध्यान करना, आप अपने बाल बच्चों को अब खुद समझे। विश्वास के बगैर दुनिया में कोई भी रिश्ता हो ज्यादा देर तक कायम यानी टिक नहीं सकता है। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता मित्रों, तो उसे याद कर आज का दिन व्यर्थ ना करें। और जो लक्ष्य में खो गया, समझो वो सफल हो गया। और जो कर रहे हैं उससे अगर आप प्यार करते हैं तो आप जरूर सफल होंगे। जरूर सफल होंगे आप मित्रों, इसमें कोई संदेह नहीं है।

जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम सभी को राम राम करते ही नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल हो। मैं हूँ आपके खिदमत में अनिल सर। जो आज का प्रोग्राम हम आप लोग के करते हैं, कुछ भजन कार्यक्रम हम आप लोग के करेंगे दोस्तों, और सभी को हमारा राम राम। जहाँ तक हमारा आवाज़ पहुँचे, हमारा प्यार भरा दुलार पहुँचे, नमस्कार पहुँचे, अदा पहुँचे, हर एक को हमारा दुआ पहुँचे, सलाम पहुँचे और राम राम नमस्कार। पूरा टीम के तरफ से, द लव फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से हर एक को राम राम नमस्कार। आज देखा जाए तो भजन का प्रोग्राम है, हम कुछ भजन प्रोग्राम करेंगे। आधा घंटा मैं लेट हूँ और हम भजन करेंगे। एक घंटा का प्रोग्राम है भजन, कुछ शिव मंत्र हम आप लोग के सुनाने वाले हैं, और हर एक को एक बार फिर से हमारा नमस्कार हो। हम ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे प्यारे दोस्तों, ये भी कहना चाहता हूँ। जो लोग इस वक्त अपने नौकरी पे जा रहे हैं, अपने काम करने के लिए, हर एक को बचा के जाना चाहिए, संभल के जाना चाहिए। जिस घर में दुख है वहाँ पे हम शामिल है, जहाँ सुख है वहाँ भी हम शामिल है, यही हम आप लोग के कह सकते हैं। और हम प्रोग्राम को चलाएंगे, कुछ भजन, कुछ शिव मंत्र हम आप मिल के सुनते हैं। शिव मंत्र

ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। काफी लोग हैं जो आज पूजा कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं या कुछ फूल अर्पण कर रहे हैं। आज भी शिवा का दिन है। जो लोग शिवा के याद करते हैं, हर एक के लिए ये मैंने आप लोग की सुनाया है। ओम नमः शिवा, ओम नमः शिवा। हम चलाएंगे एक दो शिवा के कुछ भजन है जो आप लोग के मैं सुनाऊंगा। भूल मत जाना, मैं हूं आपकी खिदमत में अनिल सारजू, जो कुछ देर सिर्फ शिवा गणेशा और इनका भजन मैं आप लोग के सुनाऊंगा। और हर एक को शुभ दिन हो और शुभ सुबह हो। हर एक का दिन भगवान ऐसे करे कि आज काफी अच्छा दिन आप लोग के हो। ठीक है दोस्तों, हम चलाते हैं और चलते हैं।

जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल की आवाज में शिव जी का कुछ भजन है जो हम आप लोग के सुनाना चाहते हैं। अभी क्या भजन आपने सुनी है, जो भी आज इस वक्त अपना पूजा पे ही अपना हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, फूल को अर्पण करते हैं हर एक के लिए ये सब भजन हम चलाते हैं। और एक शुभ सुबह हो, शुभ दिन हो, यही मैं कह रहा हूँ। और पूरा टीम की तरफ से, फॉर्म हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से, हम चलते ही ओम नमः शिवाय।

शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। हम चलते ही ओम जय शिवा ओमकार।

फोरम है और हम आप लोग के मिल के सुनेंगे कुछ शिवा के भजन है और कुछ अभी हम गणेश के एक दो भजन चलाएंगे। चलो हम सब मिल के कुछ भजन करते हैं, जो भी अपना पूजा पे है या अपना फूल अर्पण कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, हर एक पूजा करने वाले के लिए इस भजन है।

हर हर हर ओम महादेव, क्या इसमें क्या ताकत है, भगवान में क्या ताकत है, मैं ये मांगना चाहता हूँ भगवान अपना पूरा टीम की तरफ से, फागुन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से, हर एक घर का दुख दुख करना, हर एक घर की जो बीमारी है दुख करना, ये दुनिया में जो हो रहा है उसे बचा के रखना मालिक, हर एक के दुख दूर करना, तंदुरुस्ती दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, शक्ति दे के लोग अपना चीज कर सकते हैं और हर एक बीमारी से बचाइए भगवान। जो भी कुछ करना चाहता है हर एक चीज़ पूरा कीजिए, आप ही है, आप तो है दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया के रखवाला आप ही है, शिवा ब्रह्मा विष्णु महेश आप ही लोग है जो इस दुनिया के चला रहे रचा रहे हैं, जैसे चाहते हैं वैसे आप रचा रहे हैं, दुनिया को बना रहे हैं और हर एक के घर घर के जो प्रॉब्लम है उसे दुख करना सॉल्व करना मालिक आप ही है, यही मांगता हूँ, हर एक बीमारी से बचाइए। हम आप लोग के लिए चलते हैं गणेश के मंत्रा है, विष्णु का मंत्रा है, लक्ष्मी का मंत्रा है, देखा जाए शिव मंत्रा है, दुर्गा मंत्रा है, हनुमान का मंत्रा है, यही सब है जो दुनिया में दुनिया चलाते हैं, इससे बड़ा और कोई नहीं है, इन सबसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है, यही है जो दुनिया चला रहा है। हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं मालिक आपसे हर एक को बचा के रखना, संभाल के रखना, इंसान की ज़िंदगी बहुत गिनती है मालिक, बचा के रखना, हर एक बीमारी से बचा के रखना।

जी हाँ दोस्तों, ये था गणेश का मंत्र। हम सब अंदाज नहीं लगा सकते ही कि इसमें कितना ताकत है। बहुत ही ताकत है, बहुत ही ताकत है। इस मंत्र को हर एक को जानना चाहिए। हमारा हिंदू भाइयों जो है इसे जानना चाहिए। इसमें वो ताकत है जो हम कहीं नहीं सकते हैं। चलो दोस्तों, मैं चलते हैं हरिओम शरण की तरफ।

दोस्तों, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, हरिओम शरण की आवाज अभी आप सुन रहे थे। हम आप लोग कले चलते विष्णु मंत्र से, इसमें क्या ताकत है हम सब मिलकर सुनते हैं। मैं हूं आपकी खिदमत में अनिल सरजू।

सच बात है तेरा लीला हमेशा न्यारी रहेगी। ये था ब्रह्मा विष्णु महेश, और जैसे आपने सुना इस भजन को, जो सुन रहा है वो समझ भी रहा है, यही सब है जो दुनिया चलाने वाला है। दुनिया हम नहीं चलाते हैं, दुनिया ये लोग चलाते हैं, और इससे बड़ा और कोई नहीं है। हमें मानना चाहिए कि यही है दुनिया के रखवाले। हम सदा अपने हाथ जोड़ के इनके पैर पकड़ते इस दुनिया को संभाल के रखना भगवान, यही मांग है मेरा। चलो हम आगे चलते हैं, हरिओम शरण की आवाज़।

जी हाँ, हमारे प्यारे सुनने वाले भी आप सुन रहे थे हरिओम चरण की आवाज। दिन भर में एक बार भगवान का नाम लीजिए, लीजिए भाई हमारा हिंदू भाई और बहनों, एक बार लेना चाहिए, 10 बार नहीं लेना चाहिए। एक बार अगर आप अपना दिन में अपन दिन एक बार ले लेना तो भी भगवान आपको सुनेगा। इस वक्त वही काम आएगा, भगवान काम आएगा हमारा। ठीक है दोस्तों, भजन के प्रोग्राम देखा जाए तो एक दो गाने के बाद यहाँ से भजन के प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हम अपना हिले मिले जुले गीत आप लोग के ज़रूर सुनाऊंगा। मैं हूँ अनिल सरजू प्रोग्राम में, और आपको हम ज़रूर ले चलेंगे

हर दिल से हमारा नाता है, हर दिल से हमारा रिश्ता है, हर रोज की तरह हमेशा की तरह आपसे आज भी होगी कुछ प्यारे प्यारे बातें और सॉन्ग्स हम चलाएंगे जो आपको पसंद है। जहाँ तक ये आवाज़ पहुँचे और हर एक सुनने वालों को हमारा राम राम नमस्कार अदाए बरस और सत्यकाल हो। मैं हूँ आपके खिदमत में अनिल सारजू, जो आपके साथ देंगे और कुछ पुराने पुराने गाने हम आप लोग के ज़रूर सुनाएंगे। जहाँ पे जिस घर में दुख है या मातम है, पूरा फाहुन टीम उसका दुख में शामिल है। जहाँ पे खुशी है वहाँ पे भी हम साथ हैं। दुख और सुख में हर एक को सदा साथ देना चाहिए, वैसे हम भी आपके साथ हैं। चलो दोस्तों, हम प्रोग्राम को आप चलाएंगे। एक घंटे तक हम कुछ हिले मिले जुले गीतों से आपको जरूर सुनाने वाला है। मिलके हम सब सुनेंगे आज का प्रोग्राम और हर एक जरूर इस प्रोग्राम को पसंद करेंगे। मैंने कुछ गाने चुन के रख चुका है। मूवी हम सफर, जिसमें जितेंद्र शर्मिला टैगोर ने काम किया, लता मंगेशकर और मुकेश ने इस गाने को गाया है। देखा जाए इसका म्यूजिक जो बजाया गया है वो ही आनंद बख्शी और लाइरिक्स आनंद बख्शी और म्यूजिक है कल्याण जी आनंद जी। हम मिलके सुनते हैं किसी राह पे किसी मोड़ पर। इसमें थोड़ा से कुछ गलत हो गया है देखा जाए तो, देखते क्यों आवाज नहीं आता है इसमें से।

0: सभी को राम राम नमस्कार और ढेर सारा दुलार पहुंचे, जहां तक ये आवाज़ पहुंचे वहां तक हमारा पैगाम पहुंचे और ढेर सारी मोहब्बत पहुंचे। दूर दूर से लोग प्रोग्राम को सुनते हैं। मैं हूं आपके खिदमत में अनिल सरजू, जो कुछ हिले मिले जुले गीतों से हम आप लोग के सेवा करेंगे। मैंने कुछ गाने चुन करके लाए हैं, कुछ पुराने गाने हैं और उम्मीद है आप लोग के ज़रूर आज का रेडियो प्रोग्राम फाहून द्वारा ज़रूर पसंद आएगा। आप सब चुन है द एवरग्रीन लव लव फाहून हिंदुस्तानी रेडियो पे, और मैंने चुन करके रखा है मूवी फिल्म हम सफ़र के एक ऐसा गीत है जो लता मंगेशकर और द नाइट मुकेश ने गाया है, जो करोड़ों का दिल जीत चुका है, जीत लिया था, जीते जाते भी है। क्या आवाज़ है मुकेश और लता मंगेशकर का, आवाज़ है किस राह में किस मोड़ पर। लता मंगेशकर मुकेश लाइरिक्स, जो हाथ और कलम चलाया गया है, जो सिहाही से लिखा गया है वो आनंद बख्शी है, म्यूजिक सजा करके हम लोग तक लाया है कल्याण जी, आनंद जी। हम आप लोग के मिल के सुनाते हैं, जितने लोग प्रोग्राम को सुनते हर एक के लिए ये गीत मैं पेश करता हूँ, नामोस रेडियो फाहून।
1: मैंने देखा नहीं, तुम बंसी भी बजाते हो?
2: हाँ हाँ सुनाओ।
1: अरे अरे अभी नहीं, तुम भूल गए हो, तुम छुप कर जा रहे हो।
2: खुशी के मारे मैं तो भूल ही गया था।
1: खुशी? किस बात की खुशी?
2: न जाने क्यों
1: राजू, तुम बहुत अच्छे हो।
2: बापू और उस्ताद के बाद एक तुम ही हो जिसने मुझे अच्छा कहा।
1: तुम्हारा अपना और कोई नहीं है?

मेरे हम सफ़र, मेरे हम सफ़र, मूवी मेरे हम सफ़र, किसी राह पर किसी मोर पर। चलो दोस्तों, अगले गानों को मैंने चुन पे रख चुका हूँ, रख दिया है आपके लिए। मूवी हीरा हीरा हीरा तमन्ना, अल्बम मूवी हीरा तमन्ना है, और सिंगर है किशोर कुमार और लता मंगेशकर। फिर से लाई दीक्षा आनंद बख्शी की, और देखा जाए म्यूजिक है लेबल शरगमा। चलो दोस्तों, हम आपके सुनाते हैं जिसमें काम किया है देवानंद और जीना तमन्ने। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए।

जा दोस्तों मूवी हीरा पन्ना किशोर कुमार और लता मंगेशकर के कवास है ब्याह सुर रहे थे दोस्तों आनंद बख्शी का लिरिक्स और आप जानते ही राहु देव परमन का म्यूजिक। ठीक है दोस्तों हम आगे चलते हैं प्रोग्राम आप ही तो हम हैं आप नहीं तो हम नहीं हैं और आप सब चून हैं द एफगिन लव फॉर्म हिंदुस्तानी रेडियो पे। मैं हूं आपके खिदमत में अनिल जारजू। हम आगे प्रोग्राम चलाते हैं मुकेश जी का एक गाना हम आप लोग को सुनाना चाहते हैं जो प्यार से गाया है जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा मूवी कति पतंग तक का है और देखा जाए म्यूजिक डायरेक्टर है एरदे बर्मन। एक बार फिर से आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना है और हम आपके नाम करते हैं क्योंकि आप प्रोग्राम को सुनते ही जितने गाना या गीत हम चलाते हैं बस आप सबके नाम है। दूर दूर से लोग प्रोग्राम को सुनते हैं और बहुत पसंद करते मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं ऐसे ही सुनते रहना। ये गीत भी आप लोग के नाम है मूवी कति पतंग के जिसमें जितेंद्र आशा परीक ने काम किया है।

जी हाँ दोस्तों, जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा, मूवी कति पतंग निरीक्षण एनन सैफन तक का ये फिल्म है जिसका आपने भी गीत को सुना है और जो जो सुनता है हर एक गीत जो मैं चला रहा हूँ बस आप सबके नाम है। चलो दोस्तों, हम अगले सांस को लगा ही चुके हैं अगले गाने को और देखा जाए, देखिए तो कौन मूवी दो कल्याण नहीं कहती नाथन शस्त्र का है यार। और वो देखा जाए, तुम्हारी नज़र क्यों खफा हो गई, कभी कभी हो जाता है चना, नज़र भी खफा हो जाते हैं लोग से जुदा हो जाते हैं तो क्यों खफा नहीं हो सकता है। पद्माश्री मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर का आवाज़ है, म्यूजिक डायरेक्टर रवि। हम आपको सुनाते हैं, मिल के सुनेंगे, तुम्हारी नज़र क्यों खफा हो गई।

जी हाँ, हमारे सुनने वाले एक हसरत थी कि आंचल का मुझे प्यार मिले, मुकेश की आवाज थी। चलो दोस्तों आगे ले चलते ही, ना जाने क्या हूँ। बहुत विशाल गाना है, यह गाना है लता मंगेशकर का, मूवी दर्द है नहीं कंती एनन तख्त का। न जाने क्या हुआ जो तुम छोड़ लिया, छू लिया। ये गाना हम सोच रहे सब कोई जाने और सब कोई के मोहल्ले की लता मंगेशकर का आवाज है और सब कोई सुनो खोई मिल के फोन हिंदुस्तानी रेडियो पे। आप सब चोर है दोस्तों, मिलके सुनेंगे। न जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया।

ना जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया। मूवी दर्द 1981 का, जिसमें हेमा मालिनी राजेश खन्ना ने काम किया है। तो चलो दोस्तों, हम आप लोग के लिए चलते हैं मूवी प्रोफेसर 1986 का, जिसमें सामी कपूर और कल्पना ने काम किया है और गायक और गायिका है पद्मश्री मोहम्मद रफी और द क्वीन लता मंगेशकर। म्यूजिक शंकर जयकिशन और लाइरिक्स से सई लेंद्रा।

जी हाँ प्यारे सुनने वाले, मैं चली मूवी प्रोफेसर 1962 का। चलो आगे ले चलते, दूरी ना रही कोई, लता मंगेशकर की आवाज़ है। और देखा जाए जी हम दोस्तों, लता मंगेशकर म्यूजिक, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, लायरी से कफीन आज़ाद मुत के जो लिखा गया है, हाथ और कलम उसी ने चलाया है। चलो मिलके सुनते हैं रेडियो फोन के जरिए से

लता मंगेशकर। लता मंगेशकर एक एहसास है जिसे महसूस किया जाता है, बयान नहीं। ये एक नाम है जिसे सुनते ही मेरे दिल में सुकून और चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। टू मी शी इज इथीरियल, समवन फ्रॉम अनदर वर्ल्ड, लार्जर देन लाइफ, नो लेस देन अ गॉडेस, अ देवी। दिस वन नेम इवोक्स अ मिलियन फीलिंग्स इनसाइड मी। आई हैव कोल्ड फीट, वीक नीज, अ नॉट इन माई स्टमक, आई स्माइल ऑन माई लिप्स एंड टीयर्स इन माई आईज। इन अदर वर्ड्स, आई फील अलाइव व्हेन आई हियर दिस नेम, लता

जी हाँ दोस्तों, तुम मुझ में समा जाऊँ, मैं तुझ में समा जाऊँ। द क्वीन ऑफ लता मंगेशकर की आवाज़ थी और कर्तव्य मूवी का नाम है और रेखा और धर्मेंद्र पाजी ने इसमें काम किया है। चलो दोस्तों, हम आप लोग के सुनाते हैं तेरे इश्क का मुझ पे हुआ है असर।

0: जी हाँ दोस्तों, बोल मेरी तकदीर में क्या है मेरे हम सफर अब तो बता। मूवी हरियाली और रास्ता नई खतीन तो शस्त्र का, जिसपे मनोज कुमार माला सिन्हा ने काम किया है, शंकर जय किशन का म्यूजिक है। चलो हम ले चलते हैं एक बार फिर से हरियाली और रास्ता से निकाला हुआ एक गीत है, एक गाना है जो लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज है, और देखा जाए शंकर जय किशन का म्यूजिक है, लाख तारे आसमान पे।
1: आख

जय दोस्तों, दिल मेरा चुपचाप जला, हरियाली और रास्ता, नेगेटिव ट्विन सिस्टर का फिल्म में मूवी, मनोज कुमार माला जीना ने इसमें काम किया था। अभी आप सुन रहे थे मुकेश और लता का आवाज। हमने चलते ही एक बार फिर से हरियाली और रास्ता का बोले, कहीं कहीं पे राजा और रानी भी रहता है ना, तो चलो राजा और रानी के बारे में हमको सुनाते हैं और हरियाली और रास्ता का निकाला गाना है।

जहाँ दोस्तों एक बार मैंने फिल्म से चला दिया था हरियाली और रास्ता का, मुझे बहुत पसंद है ये गाना। हम सोचते हैं आगे में आप लोग के भी पसंद है। तो ठीक है, एक था राजा एक था रानी।

जय दोस्तों बोले नाव तो खो गया रह गया पानी, फिल्म हरियाली और रास्ता से भी आप सुन रहे थे। एक था राजा एक था रानी, नेकदिन टू इंसेस्ट का है, मनोज कुमार माला सिन्हा ने काम किया है। चलो मैं चलते हैं दोस्तों हरियाली रास्ता का नेकदिन टू इंसेस्ट फिर से एक बार देखा जाए तो कौन सा गीत मैंने रखा है यहाँ पे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे। शंकर जय किशन का म्यूजिक है।

जहाँ दोस्तों इब्तदाई इश्क में हम हरियाली और रास्ता का निकाला हुआ गाना है, काफ़ी अच्छे अच्छे गाने हैं और ये मूवी भी काफ़ी अच्छी मूवी है। हम एक बार फिर चले चलते हैं ये हरियाली और रास्ता।

ये हरियाली और रास्ता 1962 का मूवी है, मनोज कुमार मालासिदा ने काम किया है। चलो एक गीत और है, बहुत ही बढ़िया गाना है, बहुत ही अच्छा गाना है, तेरी याद दिल से भुला ना सकूंगा। करोड़ों का दिल जीतने वाला मिलियंस ऑफ हार्ट, मुकेश का गाया हुआ गाना है। चलो हम सब मिलकर सुनते हैं हरियाली और रास्ता का ये निकाला हुआ गाना है, लेकिन ट्विंसेस्टर का है। जे फिल्म बिना देखे से उसे देख सकता है, काफ़ी अच्छी फिल्म है, मूवी।

जी दोस्तों, तेरी याद दिल से भुला ना सकूंगी, मूवी हरियाली और रास्ता नहीं थी। द मिलियन ऑफ आर्स नाइट मुकेश की आवाज थी, शंकर जय किशन का म्यूजिक थे। एक आखिरी गाना है फिल्म हरियाली और रास्ता का, हम सब मिलकर सुनते ही परवानों की रात। आशा भोसले इस गाने को गाया है, नहीं करी तो इस शस्त्र का है।

जी हाँ दोस्तों, अभी आप जो रहे थे एक आखिरी गाना मूवी हरियाली और रास्ता का, आशा भोसले ने गाया था, मनोज कुमार मलाजीना ने इसमें काम किया है, नेहा सिंह ट्विंस का है। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं मूवी में, आप लोग के लिए चलते नहीं सस्तक में, जोहर महमूद इन गोवा, आंखियों का नूर है तू, ये मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ है दोस्तों, सुलेमान कल्याणपुर जो इसका सिंगर है, सुलेमान कल्याणपुर और मुकेश, ना लता मंगेशकर नहीं है, सुलेमान कल्याणपुर और मुकेश की आवाज़ है, कल्याण जानन जी का ये म्यूजिक है। और देखा जाए आप लोग के हमले चलते हैं नेकंतीन फैफन सेस्तक में, आँखियों का नूर है तू।

चले हे चले हे चले हे ससुरार। अभी आप सुन रहे थे जोहर एन महमूद इन गोवा, लोदो दीवाने दिल के चले हे देखो मिल के, महमूद सिमी अग्रवाल और जोहर इसमें काम किया इस मूवी में। चलो हम ले चलते हैं एक ऐसा गाना है फिल्म जोहर महमूद के, जोहर इन महमूद इन गोवा ने कितने फैंस आज तक में। और देखा जाए तो एक जो गाना अब हम रखें बहुत वही गाना है और हम सब मिल के सुनेंगे, उषा खन्ना गाई से और मुकेश इसका जो म्यूजिक बजाए से कल्याण जी आनंद जी है, और वही जलाबादा जलाबादी का ये लिखा हुआ गाना है। हम आप लोग के सुनाते हैं दोस्तों एक ऐसा गाना जो हम बहुत दिन न सुन ली है और बहुत मज़े की सुनत काफ़ी लोग जो प्रोग्राम को सुनते हैं, और अभी ये गाना आप सब के नाम है दोस्तों।

0: न कोई रहा है ना कोई रहेगा। जोहर महमूद इन गोवा नेकंतिन फैन सस्त का गीत था दोस्तों। हम थे आपके आपके साथ अनिल सरजू, जो पूरा प्रोग्राम को आपको सुनाया है और उम्मीद है आप लोग के ज़रूर पसंद है ये प्रोग्राम। ठीक है दोस्तों, अभी ठीक है यहाँ से हम कहते ही अपना आप सबको राम राम नमस्कार।
1: ओब गयु गी पद कौर गयुवत समवेद मिन्न ए नियम गी रावय सनफ्लावर ज्योति 11 मम नील वर्ण कुल सूर्य।

हमारा रिश्ता ही हर रोज की तरह हमेशा की तरह आपसे आज भी होगी। कुछ प्यारे प्यारे बातें और सॉन्ग्स हम चलाएंगे जो आपको पसंद है, जहां तक आवाज पहुंचे और हर एक सुनने वालों को हमारा राम राम, नमस्कार, अदाए बरस और सत्यकाल हो। मैं हूं आपके खिदमत में अनिल सारजू, जो आपके साथ देंगे और कुछ पुराने पुराने गाने हम आप लोग के जरूर सुनाएंगे। जहाँ पे जिस घर में दुख है या मातम है, पूरा फाहुन टीम उसका दुख में शामिल है। जहाँ पे खुशी है वहाँ पे भी हम साथ है। दुख और सुख में हर एक को सदा साथ देना चाहिए, वैसे हम भी आपके साथ है। चलो दोस्तों, हम प्रोग्राम को आप चलाएंगे। एक घंटे तक हम कुछ हिले मिले जुले गीतों से आपको जरूर सुनाने वाला है। मिलके हम सब सुनेंगे आज का प्रोग्राम और हर एक जरूर इस प्रोग्राम को पसंद करेंगे। मैंने कुछ गाने चुन के रख चुका है। मूवी हम सफर, जिसमें जितेंद्र शर्मिला टैगोर ने काम किया, लता मंगेशकर और मुकेश ने इस गाने को गाया है। देखा जाए इसका म्यूजिक जो बजाया गया है वो ही आनंद बख्शी, और लाइरिक्स आनंद बख्शी और म्यूजिक है कल्याण जी, आनंद जी। हम मिलके सुनते हैं किसी राह पे किसी मोड़ पर। इसमें थोड़ा से कुछ गलत हो गया है, देखा जाए तो देखते हैं क्यों आवाज नहीं आता है इसमें से।

0: सभी को राम राम नमस्कार और ढेर सारा दुलार पहुंचे, जहां तक ये आवाज पहुंचे वहां तक हमारा पैगाम पहुंचे और ढेर सारी मोहब्बत पहुंचे। दूर दूर से लोग प्रोग्राम को सुनते हैं। मैं हूं आपके खिदमत में अनिल सारजू, जो कुछ हिले मिले जुले गीतों से हम आप लोग के सेवा करेंगे। मैंने कुछ गाने चुन करके लाए हैं, कुछ पुराने गाने हैं और उम्मीद है आप लोग के ज़रूर आज का रेडियो प्रोग्राम फाहून द्वारा ज़रूर पसंद आएगा। आप सब चुन है द एवरग्रीन लव लव फाहून हिंदुस्तानी रेडियो पे, और मैंने चुन करके रखा है मूवी फिल्म हम सफ़र के एक ऐसा गीत है जो लता मंगेशकर और द नाइट मुकेश ने गाया है, जो करोड़ों का दिल जीत चुका है, जीत लिया था, जीते जाते भी है। क्या आवाज़ है मुकेश और लता मंगेशकर का, आवाज़ है किसी राह में किस मोर पर। लता मंगेशकर मुकेश लाइरिक्स, जो हाथ और कलम चलाया गया है, जो सिहाही से लिखा गया है वो आनंद बख्शी है, म्यूजिक सजा करके हम लोग तक लाया है कल्याण जी। आनंद जी, हम आप लोग के मिल के सुनाते हैं, जितने लोग प्रोग्राम को सुनते हर एक के लिए ये गीत मैं पेश करता हूँ। नामोस रेडियो फाहून।
1: मैंने देखा नहीं, तुम बंसी भी बजाते हो?
2: हाँ हाँ, सुनाओ।
1: अरे अरे, अभी नहीं, ये तुम भूल गए हो, तुम छुप कर जा रहे हो।
2: खुशी के मारे मैं तो भूल ही गया था।
1: खुशी? किस बात की खुशी?
2: न जाने क्यों।
1: राजू, तुम बहुत अच्छे हो।
2: बापू और उस्ताद के बाद एक तुम ही हो जिसने मुझे अच्छा कहा।
1: तुम्हारा अपना और कोई नहीं है?

मेरे हम सफ़र, मेरे हम सफ़र, मूवी मेरे हम सफ़र, किसी राह पर किसी मोर पर। चलो दोस्तों, अगले गाने को मैंने चुन पे रख चुका हूँ, रख दिया है आपके लिए। मूवी हीरा हीरा हीरा तमन्ना, एल्बम मूवी हीरा तमन्ना है, और सिंगर है किशोर कुमार और लता मंगेशकर। फिर से लाइदिक से आनंद बख्शी की, और देखा जाए म्यूजिक है लेबल शरगमा। चलो दोस्तों, हम आपके सुनाते हैं जिसमें काम किया है देवानंद और जीना तमन्ने। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए।

जा दोस्तों मूवी हीरा पन्ना किशोर कुमार और लता मंगेशकर के आवाज से ब्याह सुन रहे थे दोस्तों आनंद बख्शी का लिरिक्स और आप जानते ही राहु देव परमन का म्यूजिक। ठीक है दोस्तों हम आगे चलते हैं प्रोग्राम आप ही तो हम हैं आप नहीं तो हम नहीं हैं और आप सब चून हैं द एफगिन लव फॉर्म हिंदुस्तानी रेडियो पे। मैं हूं आपके खिदमत में अनिल जारजू। हम आगे प्रोग्राम चलाते हैं मुकेश जी का एक गाना हम आप लोग को सुनाना चाहते हैं जो प्यार से गाया है जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा मूवी कति पतंग तक का है और देखा जाए म्यूजिक डायरेक्टर है एरदे बर्मन। एक बार फिर से आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना है और हम आपके नाम करते हैं क्योंकि आप प्रोग्राम को सुनते ही जितने गाना या गीत हम चलाते हैं बस आप सबके नाम है। दूर दूर से लोग प्रोग्राम को सुनते हैं और बहुत पसंद करते मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं ऐसे ही सुनते रहना। ये गीत भी आप लोग के नाम है मूवी कति पतंग के जिसमें जितेंद्र आशा परीक ने काम किया है।

जी हाँ दोस्तों, जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा, मूवी कति पतंग सैफन तक का ये फिल्म है जिसका आपने भी गीत को सुना है, और जो जो सुनता है हर एक गीत जो मैं चला रहा हूँ बस आप सबके नाम है। चलो दोस्तों, हम अगले सॉन्ग को लगा ही चुके हैं, अगले गाने को, और देखा जाए देखिए तो कौन मूवी दो कल्याण नहीं आतन शस्त्र का है यार। और देखा जाए तुम्हारी नज़र क्यों खफा हो गई, कभी कभी हो जाता है चना, नज़र भी खफा हो जाते हैं लोग से जुदा हो जाते हैं तो क्यों खफा नहीं हो सकता है। पद्माश्री मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर का आवाज़ है, म्यूजिक डायरेक्टर रवि। हम आपको सुनाते हैं, मिल के सुनेंगे तुम्हारी नज़र क्यों खफा हो गई।

जी हाँ, हमारे सुनने वाले एक हसरत थी कि आंचल का मुझे प्यार मिले, मुकेश की आवाज़ थी। चलो दोस्तों आगे ले चलते ही, ना जाने क्या हूँ। बहुत विशाल गाना है, यह गाना है लता मंगेशकर का, मूवी दर्द है नहीं गंती एनन तख्त का। न जाने क्या हुआ जो तुम छू लिया। ये गाना हम सोच रहे सब कोई जाने और सब कोई के मोहल्ले की लता मंगेशकर का आवाज़ है और सब कोई सुनो कोई जा मिल के फहून हिंदुस्तानी रेडियो पे आप सब चोर है दोस्तों, मिल के सुनेंगे। न जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया।

ना जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया मूवी दर्द 1981 का जिसमें हेमा मालिनी राजेश खन्ना ने काम किया है। तो चलो दोस्तों मैं आप लोग के लिए चलते मूवी प्रोफेसर 1982 का जिसमें सामी कपूर और कल्पना ने काम किया है और गायक और गायिका है पद्मश्री मोहम्मद रफी और दक्षिण लता मंगेशकर म्यूजिक शंकर जयकिशन और लाइरिक्स है साई लेंद्रा।

Kala na jani uchi nich, kala na jani jat, sosuji mantan diji humko apni aashirwaad. तमाम रेडियो फाहुन के सुनने वालों को हमारा राम राम नमस्कार प्यार भरी अनाम सत श्री अकाल जी। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम। आज का देश और विदेश का समाचार सुनाना है हमारा काम, यही है हमारा मोहब्बत भरी प्यार की पैगाम। इस चून से आपको पता चल चुका होगा कि हम आ गए हैं अपना देश और विदेश की समाचार लेकर। तो दोस्तों आज है मंगलवार 7 तारीख जुलाई हो चुका है, घड़ी की ओर देखा जाए तो 11 बज चुका है। तो 11 से 12 बजे लेकर आप लोग को हम सुरीनामी समाचार सुनाएंगे, उसके बाद एक घंटा कुछ मिली जुली गीत और 1 बजे से शाम को 3 बजे तक आ जाएगा बीबी साहिबा और रहीम बख्श के प्रोग्राम, आप लोग जरूर सुनना, उसका प्रोग्राम कुछ अलहदा है। तो हमारा दिल मारा को लिखा और वो है रहीम बख्श, बीबी साहिबा रहीम बख्श का प्रोग्राम 1 से लेकर 3 बजे तक आप जरूर सुनना। यहाँ से 11 और 12 बजे तक हमारा सुरीनामी न्यूज़, 12 से 1 कुछ मिली जुली गीत और 1 से 3 बजे तक तो हमारा बीबी साहिबा रहीम बख्श से 3 से लेकर करीब 5 बजे तक हम धरेंगे राजेश राजन द्वारका का, और 5 बजे से लेकर हमारा जो न्यूज़ अभी हम पढ़ेंगे 6 बजे उसको हम हैर हाल करेंगे हमारे दोस्तों सोसी दरोस्तर फनाख देर खाउदून। अभी आप लोग हमारा कुलेखा साथी अनिल सरजू से सुबह का प्रोग्राम यानी कि भजन प्रोग्राम सुना है, उसके बाद कुछ फिल्मी गीत आप लोग सुना है 11 बजे तक। तो यहाँ 11 बजे से हम प्रोग्राम को ऑफर लेते हैं। तो ये बात है हमारी प्यारी प्यारी जनता।

दोस्तों हम तुरंत चाहते हैं अपना सूरीनाम की ओर। भैया आप लोग को पता है अब पाकिस्तान में या कहीं कोई और देश में या कोई फेस रहे भाई, तो आप लोग जरूर यूट्यूब पे देखा होगा कि सबन बंदूक लेके लॉसेस खुद दागे हैं। हाँ, फॉर द फेस दैट इज फॉर प्लसीर दून से मैं से, तो उस सबके पास बंदूक रहे तो लॉसेस खुद दागे और फेस तो हुए और नाचे है दत है बवे अंता लंद इज दत वेल मुख लग मा इन सूरीनाम इज दत नीड मैं से नहीं दार इज स्ट्रेंग फरबोद। तो ऐसे भैया एगो फेस रहा ब्रॉन्स वेख ब्रोको पोंदो में और फेस वाला क्रूतु ओसो कोनो क्रूतु ओसो भैया लगे हुआ पे फेस बै क्रूतु ओसो तो हुआ करो जगह के नाम है क्रूतु ओसो हुआ फेस रहा। और ये बात हुए हैगा कि फेस में भैया रात के आदमी दागी से पिस्तौल इस्तौल उसको दागी से भाए, तो यहाँ पे बताए गए हैगा एक बारे में सबन आनखिफ्त कर ऐसे सिपाही आए के पहुँचे ले ब्रॉन्स वेख के और जब गए ले वहाँ तेको द्रियन ट्विन तक यारख एक आदमी के पकड़ी से जेकर पास पिस्तौल रहा। हाँ, और बोले है ओफ थ्रीड कलर ऑफ फ्यूर वेत से और बताए गए सिपाही एक पकड़ी सेगा और एक लगे पिस्तौल मिलल है लाइओ मिलल है एक पास एगो करिया ओतो फोर्थ रेप्टर रहा जो रेस्टिंग क्लास क्रीक में उजात रहा बस वह खरीद चल गया हुआ। और बोले हैगा ओकर बारे में डायरेक्ट सिपाही कंट्रोल कैसे क्लास क्रीक में और फोर्थ रेप्टर वास कंट्रोल पोस्ट अने स्टांडक होदा हुआ पे सबन कंट्रोल पोस्ट पे के रोकी से और सिर्फ येर करी से कर पास इतना वापन पाई से। और बोले है द इंसिडेंट वेयर द फॉरफॉक्स ओवर खतरा के नतीलक मेन से और यरेमिया का बोले बोले हम अपन पिस्तौल वा धल्ले रहली अने आस बोरख कहीं पे यहाँ तेज ऑनडर फॉर क्लार दैट इट आन खतरा फन फिर वापन फन हेमवास ओकर बा और फॉर क्लार करेगा कि आस ऑनडर पांथ हमके धल्ले रही तेजस अन खोकन ते अबराब रुकी में खोक होत रात ओके अंदर पान थम डलेरी के जीत अपने पिस्तौल वा पाया। अब बोले द फरदाख्त बकेंद ना ना दत है तेजे सर फीस स्कोटन इन लुस हट गलोस ना दत न फीस गांगर हिम दत सो हेबन गफरा। द पुलिसी फन ब्रॉन्स वर्क सेट एन अंडरसुक फोर महिया ना लिखल है क्यों एली खाल रहा कि ले खाल पिस्तौल ला भाई लेकिन हुआ ना सोमा सूरीनाम में जैसे मिडलैंड्स उस्ते में पाकिस्तान और कहीं कहीं देश तो में सबन जो फेस करे है दान दान दान दूर से दात में से। हाँ हाँ ऐसे है। अब देखो भैया सूरीनाम के सिपाही जो है ना सबके बोले ला बड़ा स्लेक्ट रिपोर्टाज है उस सब कहेगा उस सबके भैया बड़ी बड़ी सिपाही के पकड़ा है। अब देखिए यहाँ फिन तीन सिपाही पकड़ा ने भैया। हाँ स्कोतू भाई स्कोतू आदमी लोग के पेस्तक कर ले रहा जाने तो कि हमें इतना पैसा दे तो सकुआ हम दाब देवे तो सकुआ हम दाब दे चुकू लेवे भैया पैसा लेवे हैगा। तो यहाँ पे बोले हैगा तीन सिपाही के सबन पकड़ी हैगा फॉर अफ पेरसिंग ये बातचीत हुए हैगा। एगो है पुलिसिया खेन एस्ट क्लास के दूसरा एगो ब्रिगाडियर है और दर्द एगो अस्पिरांत सिपाही सूरीनाम देश के है और बोले हैगा स्ट्रफ रखलक अंडर सुख पहले ना अन आखिफ्त फन ऑटोमोबिलेस एगो अन गाड़ी चला आदमी गली सबके ऊपर नालिश करी से तब ले स्वार सस्ताक बतरेफ के उसको तो इस क्लास के राव ब्रिगाडियर रहा 6 तारीख यूली के एक पकड़ी से फॉर अफ पेरसिंग। तो अफ पेरसिंग के पकड़ी से हुई पकड़ी से दोस्तों तो यहाँ बतावे गए हैगा कि बताए गए है उदयन अनमिया के पेस्त करी से तुई पुलिसिया दी इन बसित वासवा इलिखाल फेस फिर ओकर पास एगो इलिखाल पिस्तौल है जिन आनखिफ्तो करी से आ इस कौतून ओकर लगे इलिखाल पिस्तौल वा पकड़ ली से ले ली से और ओके बोली से जे तू हमें दुई एन हाफ दर्जन अमेरिकन डॉलर दी है तब बोले तोर सखवा हम दाब दे बोले कुछ ना हुई। अब ये मियाँ के पैसे ना रहा तुई एन हाफ दर्जन तो ओके ना भरी से तो इस पिस्तौल वा ले ली से भैया सऊदन आखिर आनखीफ
$2,500 eis kreeg. De man had de geld niet, mensen, hoe John Kepas pistool was. Vuurwapen was van beslag gelezen. Schotel, pistolen, doorop, is een beetje deze. Vermoeden dat het beslag genomen wapens later is doorverkocht. De man deed daarop aangifte kreeg, politie weer om mee. Apitino, kepakarke van kreeg. OPZ, openbare minister, beslist over de verder verloop van de zaken te schotelen. Ja, als hij te openlijk chukumang ik het ook etrapaisa deed, dan te zakwa dab de weer. Abdeko ego admi, ja, ego oudsipahik pakrisse 27-jarige aspirant agentke. Serveer kreeg ik autochauffeur, automobilist, die wilde met 400 SRDD. Toen kun je niet vertellen dat kunstje bij Lam, dat ik heb 400 bharise automobilist was. Maar die Ramia wilde niet, wilde toch hem daar aangifte keren. Toch is jij die aangifte keren. En ik heb 27 jaar ke schotel gepakt lezen. Toen John Admi, John Sipahi, door kameraden, bhaiya, die ke suchie hem kabule hen. हम विश्वास करीला हमें फैला खाई करी वही तो के इस

vrijdag 24-jarige recently die. Die zoeker waar ik bromfies bij Duimela Jahe. Oude voorwerp bij 21-jarige Colombic Namba. Brinselij Leonard. Murge Vaya. Pantarike. Oké, Latisse Marise Vaya. Oor verkeer mee. Hij liet zijn zaterdag 4 juli weten dat hij zich zou aanmelden. De APK school toe gooien hij. John Adamia Latis auto. Hoe was hij niet Maris Bromfis wakker. De school toe ze bole hij. Bole ki hem abbe na abbe. Bole hem jaila pahele apreke wasi karwabe. Tap abbe. Toke melde karbe. To ek ke koi e sipahi bole na bole hem toke na gorab ke kap tu wasi hoye. Tap tu hamal gaye. Bole hem lo aila toke leve. तो एक गेल खोजे तो एक ना पाई से भैया ते बिहान भर अपन एडवोकेट लेके और जाए के मेल्ड करी सेगा द फरदाख्त वेर द अख्तर नीत आंखोत्रोफन और बोले हैगा एडवोकेट के लेके बिहान भर गेल वेल ते मेल्ड करी सेगा और बोले है बाय द फोरलेगिंग हैव द फरदाख्त टूगेगिवन दैट हे द ब्रोनफिशर en die andere persoon met de voorwerp slagen heeft toegebracht aan de Johannes Moerastraat. Toen verkeer me bhaiya sab laathi aathi leek bhi chale hai. Ab verkeer me bhi to kuch bolna paiyo bhaiya. Nahi, aysan taysan anmi laathi leek aayo maari bas mar jaiyo bhai. Aur tu jaane hega verkeer me bhi ketra gadbar hai dekho. Dui prani क्यूबा के लड़ी से दोनों प्राणी भैया घर में वो लड़ाई भइल है इसलिए खवैल के कि औरतियां निकार के कुछ चोक चीज से रमिया के भोग दी से भोग दी से वो रमिया के जाय के परल अकादमी सिकन है इसमें सिपाही जाय के पहुंचल है तो वो सोचे ऊपर फाल भइल हम दा तू जाने सरनामे बड़ी जोर ऊपर फाल होवे है बे बता और ते सोचे ऊपर फाल भइल है ते जाई के पहुंचो में ब्लैक भइल हैगा कि औरतिया रमिया में झगड़ा भइल है ते औरतिया ओके भोंग रही से औरतिया को तलक ली सेगा किसको उतों से बतियाए से किला हम तो क्यूबान रहा खैर फ्लैट की सिपाही पहुंचल है तो अनमिया का बोले है अनमिया बोले हम सखवा बोले त्रक त्रक करेला बोले हम अपन पार्टनर के न मांगेला क्यों बन हुए बोले हम सखवा त्रक त्रक करेला द मन अन दैट हे हिंस तरफ रखल के वर्फोल्किंग तीखन से पार्टनर विंस तो बेचारा बहुत अच्छा आदमी देखा है औरतों के छोड़ी भूखी से या कुछ भूखी से और नाना मांगे को कर औरत पकड़ाई के बन हुए तो ये बात है दोस्तों आप लोग जानो हैं पालू का फोर्थ सीटर राम नंदलाल है राम नंदलाल एनडीपी में संगे हरदम काम करी से अब वही रमिया कृतिस बतिया है बोले वे हेबन एंड फूल की ई रखे रही हूँ अजुनबा ए प्लेटफॉर्म फॉर अख्त रेट जा है बोले है का प्रेसिडेंट हाथ बोले बलूफ कर ले रहा सीमोन बोले कि हम सिस्टम हीला माल बदला बोले मोकिंग का सिस्टम मां बोले हैगा बोले फीस प्रेसिडेंट प्राक आन अयु पासी ओग द पालू हट को हो द देश रखीरिंग ने फरांदरिंग सो बरेंगें मां बोले कुछ ना होवे है रामदन लाल बोले हैं अंदर फोर्सिटर है पालू के और बोले तीफंस ने खवीसन देना लिदबा बोले इन्हें प्रोग्राम सिनवेब में बोली से और रामदन लाल स्टीफ कृतिक लेफर करी से रखेरिंग्स बलाइट के ऊपर पार्लियामेंट के और बोले हैगा कि डीएनआ का बोले जो डीएनआ का नेशनल असेंबली है बोले फरखादत ओवर द बखरूतिंगन kunnen we zeggen dat we qua deskundigheid stappen achteruit aan het maken zijn. Bole hega, John Samepe is op staatsbegroting, ke bare mein batao ta bole in plaats van vooruit is op achteruit ja hai. Deskundigheid ke bole chalakna hai, bole na jane usab kunch kare hai. Bole ons dan dat er verandering is beloof, zien we dat de DNA aan het terugvallen is in een oude manier van kijken hoe we dit land zouden moeten besturen. Ik er bare mein, Paluka onder voorstel de naam Nandalal bole hai aur batawe hai ga ki het volksstem continu anders om vergadering te brengen maar uiteindelijk blijkt dat ze voor de gek zijn gehouden volk kritiek hai ga bole begrotingsbehandeling mein iban bole hai ga onder voorzitter van de palu aur altijd de ndp ke aur upar de naam mein bhi baithel hai
Een belangrijke punt van de kritiek richtte zich op de wijze

keer Nationale Assemblee ramde de Laan parlement volgens hem onvoldoende diepgaande en technische onderbouw te werk gaan. Begroting en tekort in discussie geweest, kritiek op transparantie en verandering oproept tot politieke consequenties. Oriese baan. Nendelal, Bolihe, Hamari, Piari, Jenta. तो अब देखा जाए दोस्तों और क्या हो रहा है भैया फिन रूफ ऊपर फाल भैले 2000 यूरो 17,000 एसर दे और जाए के ई भैले कैनेडी वेख में और ऊपर सो मारना जाए के क्वालिफिजेट एरफारिन चोर लोन है डाकू लोन हो जाए के लूटी से शनिचर के भैया 8 बजे रात के और अतवार के 5 बजे हैं ओमस्त्रिक 20 यूर एंड सोंदा ओमस्त्रिक 5 यूर के बीच में भैल हैं और एक बार एम सिपाही ऑन सुख करे हैं और चोरी भैले भैया उतरा पैसा ऊपर से यहाँ बताए गए हैं ऊपर से या खबेर भी चल गए हैं बे इन बराक में से तो ये सब बात है भैया बड़ी मछली मरल है सूरीनाम के रीमा में सरमाका में और ब्रोंसवेग बेनलांस से आयल है ब्रॉन रिफीरन से मछली मरमर सब उतरान है गंधात है सूरीनाम देश में भाई तो बताए गए हैगा कि एक बारे में जो सूरीनाम सबसे खुरुस्तल लंतर वीरल थे बैना भैया जहाँ पे बोसन है बियोडिफ्रिजाइट है ब्रॉन वाटर है ब्रॉन रिफीरन है और बोले लीफस आदर लंग्स ट्रोमन खून है बोमन है और बोले इतना मोई खसम देश में इतना मछली मरे है फेस स्टेरफ तेन सरमा का रिफीर बोले हैगा ही फील इमोशंस लॉस कलाते मैं से लॉस कमा जनता जो ने बहुत सोचे है एकर बारे में और बताए गए हैं मार ओम हिन फुटसल उस सबके ड्रिंक वाटर कल्चर इतना मछली मरल बोले का भइले सब में तो बताए गए हैगा द एनुम काया नाय द अंदर क्विक भैया जैसे सोना सबन खोजे क्विक उस समय रीवा में सबन लूज करी वार्दन उतना मछली मरल है भाई बोले ये इस दारू इस खुद दत्त वही बोले एनामा किस फुर फर फैलेंद ऑन द सुख के बारे में अभी के सबन ऑन द सुख करी तो लोग जाने वो कितना ढेर क्विक भी स्कोटू के द्वारी पसे चोरी भैले एक बारे में कभी ना पता मिलल कि कोई पकड़ान है कि न पकड़ान है तो दोस्तों terwijl de discussie zich nu vooral richt op onderzoek van deze ene vissterfte dreigt een veel grotere werkelijkheid buiten beeld te raken ki hum log ke jo riba hai barisan se bol under druk ba alleen sarmaka rivier mein marwaine rivier lava tapan honi ka panama mein water weken worden al jaren lang beïnvloed door intensieve goudwinning sona jon khoda hai jungle kata hai sab hum log ke desh ke barbaad hue bhaiya quick se sona se aur bole the hot course lever seeker inkomsten op sona mile hai inkomsten aave hai baki bogdam jon arrest hum log ke verfail hue hai hot ka bole Bos bestaat niet alleen uit bomen, ook de bodem leeft. Bole, wanneer die jarenlang wordt open gegraven en vervuild, raakt uiteindelijk hele ecosysteem aangezaagd. Water, vissen, dieren, uiteindelijk ook de mensen. Toen itera, ze hebben zona gehad in paisa gehad, hamloke, milieu vervuild hoe we waardoor itera machiri, pani, machiri ze mre he, oro, bataye gaye he. बताए गए हैं कि हम लोग के जंगल जो हैं सफर फैल हुए हैं हमारी जनता तो हम जाए भैया रुसलान की ओर हम जाए हैं तो 6 तारीख जुलाई के 9:30 बजे के न्यूज से ओली रफीनाद रही जो रुसलान में बा उक्रेना ड्रोन से फिन दागी से भैया ड्रोन से फिन दागी से बहुत बड़का स्काद भैले ड्रोन आन खतरोफन इन फन दी ग्रोस्ते रफिनार्द रही है भी भैया और बताई गई है कि इतना बसकादक भैले उधर उधर यानी कि
रुसलान यानी कि हुआ के जनता के मारे है और इस हुआ के रफिनार रही दागे है कि इतना हो गए कि देश में आ तेल ना रही गए भैया अनमिलो रई में खड़ा हुई हुई तेल कीने हैं। यह बताए गए हैगा ब्रांस्टोफ क्राइसिस इन रूसलैंड यूक्रेन से ड्रोन अनफालन सॉर्गन फॉर ब्रांस्टोफ क्राइसिस इन रूसलैंड। तो ऐसे बातचीत है हमारे जनता तेल के बारे में रूसलैंड में इतना हुआ पे प्रॉब्लम है। तो हमारे जनता एगो चिनुआ है अमतनार है ओके दो तरफ मिले चीना देश में दो तरफ चीनीस अमतनार जो 285 मिलियन यूरो इन शख्स तक चोरी करके पर जेबिन धरे रहा भैया एगो अमतनार है खमीन तक के करप्सी होके बहुत जबर करी से और बोले फर और दिल फर वी का करप्सी नीखरन सस्तक यार एगो अमतनार है फिंचिनार से अपरे के इतरा फर्रेक कले रफिया मख्त मिस ब्रेक से वेट वास कर इतरा फर गैस्टर कर ले रहा देर तक यार ओम खरीकन है सो ओवर देर प्रियूर फन देर तक यार कर ले रहा भैया सबन जोरिस 285 मिलियन यूरो हैवन आनखनोमन उत्तरा करप्सी उले से फनाफ यान 1993 तो 2023 और ओकर फिंसी रहा वर्कसाम इन द ओस्लेक स्टार नायंग में खदुरन दे देसे प्रोजेक्ट बपाले बदरेफ को कॉन्ट्रैक्ट दे वत रहा चुकू लेले कॉन्ट्रैक्ट दे वत रहा और बोले ग्रोंड इन फिनांसिएरिंग एंड हैवन फर्स्काफ्ट इन रॉयल फॉर गेल्ड एंड ड्यूर स्पिलन एकर बारे में चिनवा के मीडिया लिखी से देखो 69 मान ही फॉलखन स्टाचक्रान चीना डायरी द दो स्ट्राफ गकरीखन फनवेगे द एक्सट्रीम होगे वार्दे फन द स्टीक पेनिंगन बोले द बिसोंदर एरस्टेके ओमस्टांदिगहीदन एंड द एनोर्मे स्कादे दी हैड लैंड हैव टूगेब्राक मेंसे द चीनवान देश में बे दो स्ट्राफ है भैया और द रेखबांग हैव ओपड्राक्ट गिवन टू द इनबेस्लागनामे फन alle persoonlijke eigendommen van de man. President Xi Jinping begon na zijn aantreden in 2013 grote anticorruptiecampagne. Veel onderzoeken eindigen met disciplinaire maatregelen. De Suriname kan hij nou hoe ze kennen, maar na niet. Suriname is kotel en steekpenning leven he. और न खाली स्कूटर ले लेवे बड़े बड़े लोग लेवे है एंड खान से वो फ्राई लूप में से आज इतना स्टीक पेनिंग सब ले से बके कोई के न सुनियो के लांटी कोई के को बैसी गिरी बस लाख करी से भैया तो उस सब फ्राय हंद है जब मांगे करप्शन है जब मांगे हैं चोरी करे है सब होवे है हमारी जनता। अब देखो बल्किए डोनाल्ड ट्रंप के देश अमेरिका के जीत गए फिर इन से भैया फुटबॉल में और जो फुटबॉलर्स बेल्किए के हैं अब अमेरिका अश्काकल हो गए हैं वो सब नाचे हैं फेल पे जैसे ट्रंप नाचे भैया यहाँ बताए गए बेल्किए इज इन एक्सैक्ट इन एक्टास देखिए तो बेल्किए इज नॉट इन फियर ऑफ द अमेरिकांसे अक्सर फिनाल फन वीक का फुटबॉल में गए है और बताए गए है बेल्किए नाची से भैया हुआ सब स्पेलर्स फुटबॉल फैल के अमेरिका में जैसे त्रिम्ब नाचे है तो बाल के बारे में बहुत है बताएंगे दोस्तों। और यहाँ बताए हेत से लानबो उन दुक मन नीदरलैंड से ओक्स हाउट फलूप स्टांत में से हेत भैया बहुत हेत है तो जो सौदा पानी यहाँ लगे हैं इन फ्रांकरिक इज स्कांद अलसेख बार नीदरलैंड के आलू प्याज तरव लेकिन द वारम तो न खुद दोस्तान मर्द तुकोम्स इस ओन जी कर मैं से तो ये बात है हमारी जनता आप लोग को एक गीत हम सुनाते हैं।

0: तो दोस्तों एक दो समाचार आपको हम और सुनाएंगे तो अपना प्रोग्राम को हम खत्म करेंगे। तो बीबी साहिबा हमारा दरबार कोली खा साथी सब सामान लेकर आ चुका है, अबे वो एक बजे से अपना प्रोग्राम को शुरुआत करे। इन तो द्री होगा बीबी साहिबा रहीम बख्श और तीन बजे के बाद तीन द्री तो फेफ रहेगा राजन द्वारका। और पाँच बजे से हमारा प्रोग्राम फिर से चलेगा, छः बजे हम अपना न्यूज़ को हर हाल करेंगे। तो हम चलते हैं एक दो समाचार और आपको हम सुना दे भैया। सूरीनाम देश की ओर हम फिर जाते हैं और वहाँ पे भैया सबन जबरदस्त अक्सी करी से गा क्रिमिनालिटेट के बारे में सिपाही और गैल हैगा इस सब काम बोले हैं ढेर सिपाही गैल अक्सी 3 जुली के शुक्रवार के मेरदर लोकांश इस परमारी बो में सब गैले हैं लोकांश राम गुलाम में गैल है चोरन चपाटी के मिस ब्रोय के बके कोई के ना पाइस भैया द हॉट सॉक्ट फरदाख्त से तेज द एक्शन नीट आन गेट्रोफन। तो ये चीज भैले सूरीनाम देश में असम बिना बेप के बोले बखरोटिंग स्टकोर्ट एन इन्फ्लेशन टोनन आन द इकोनॉमी नोख आते क्वेट्स बार इस ये बात बोले असम बिना माक्रो इकोनॉमी से सिचुएशन ब्लेव सॉर्कलर फोकस अब होकर स्टास इनकम्स्टेन मार इफेंस इफेंसेंसी खफरा फर्स्टेरखन फन बलंगराई के इंस्टीट्यूट के बारे में। और जनता हिया बताए गए है और सब ताशे हुए तेल सूर के भाई तो जाने हैं का समा खास वेशल नेटवर्क लगाई से तो यहाँ बतावे है का दर्द सबुताशे चार रोज में भैले तेल सीट का अंध खास वेशल नेटवर्क उपलोपन बोले हैं फंडालिस्म भैया सूरीनाम देश में तेल सी दुलवेट को वर्धन फंडालिस्म इंदिरा गांधी वैक में भैल है लिफोर्नो बीक है इसमें भैल है तेल कम्युनिकेशन जींस तेल सी स्प्रे फंड सौरक वेकन बोले $3,000 के स्काद भैलू सबके खास वे काबल के बारे में और बतावे वे दून वत इस ओस मख्त ले बोले है सब ताशे सब कलने माटे बोले है इन सामन वेर के में उतरे बफुक थे अक्सी प्लान तेले सी रूप बर्कस ऑफ अलर्ट से फरदाख तक विटेके इन ओमगेविंग फान दे टेलीकॉम फोर्सिटिंगन। ये बात है भैया इस सब कबल वा काट देवे है दौर के करीब काबल बताई का नीत अन दोईसंद डॉलर्स अन हेस्टेल कोस्टर मार ओक ऑन खमाक फॉर क्लांट एंड वर्तराकिंग फॉर ऑन्ट्विकलिंग फॉर ओंस लैंड द इंफ्रास्ट्रक्चर इज नीत अलीन इन्वेस्टिंग फॉर टेलीसूर ते सब कबल वा खमून काट देवे भैया तो कौन चीज तो बराई करियो कुछ बराई ना कर पियो। तो ये बात है अब देखो एगो 25 का आम्स्टरडम के आदमी vorige week augustus met nationale monumenten op het dampenklaat over liggen again is now over koetje vervies liggen ook een sipahie pakkerie ze of voor de rechter liggen ook het zijn 895 euro kosten bereken vervies nikareke verwijder kosten bolehege de pro-palestijnse demonstrant spoot op 16 augustus met de rode verf op de leus never again is now nooit meer is nu. तो दोस्तों चीना में नौ ट्वेर भैल है नौ ट्वेर इन चीना सीकर 10 मने हुआ मर गए हैं और बताए गए हैगा अन मंगलवार के देशदाख के भैल है ओम खेफे नौ ट्वेर दट इन मिडल एंड जैडन फ्रॉम चीना ट्रेफ्ट इज अनड्यूडलक फॉल्स द बरिख्तन फ्रॉम द स्टार स्पेस ब्यूरो यिंग हुआ वर्दन द स्टीडन आनखत्रोफन दोर विंस्टोटन। हमारे प्यारे प्यारे जनता तो हमारा प्रोग्राम खत्म आने को हुआ है।
1: सुन सुन सुन ओ गुलाबी कली तेरी मेरी बात अब आगे चली दिल लेके मैं।
0: तो इस ट्यून से हम अपना प्रोग्राम को खत्म करते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, नमस्कार, प्यार भरी अदाब, सत श्री अकाल। मिन्स तुद फॉलो करने की चोनी नंबर वन है हमारा नाम।

तेरी प्यार में क्या क्या होता है, अरिजीत सिंह, निकिता बच्चन ने, अमिताभ बच्चन इस फिल्म में काम किए हैं। और दोस्तों हम चलते हैं और अपना प्रोग्राम को लेकर आगे और कहते हैं जॉनी नंबर वन है हमारा नाम, आज का प्रोग्राम है सुनाना मेरा काम, बस सुनते जाओ इस दिल के दास्तां भी बड़ी अजीब होती है। इस दिल की दास्तां भी बड़ी अजीब होती है, बड़ी मुश्किल से इस खुशी नसीब होती है, किसी के पास आने पर खुशी हो ना हो, पर दूर जाने पर बड़ी तकलीफ होती है ना यारो, दूर जाने से बड़ी तकलीफ होता है, ये हम नहीं कहता है, ये दिल के आवाज कहते हैं कि अब जिसके जिए में आई वही प्यार रोशनी, अब जिसके ये मन आए वही पाए रोशनी, हमने तो दिल जलाकर सारे आम रख दिया है। और चलते हैं मोहब्बत इनायत कर्म देखती है, और फिल्म के नाम है बहारे आने तक, अनुराधा पौलवार और पंकज उदास क्या कहते हैं।

से मोहब्बत इनायत करम देखते हैं। आओ जा आप लोग जानते हैं प्यार भरी गीतों की बहार प्रोग्राम जॉनी नंबर वन का है और कहते हैं फिर वही दिल की वो फिर वही दिल की गुजारिश फिर वही उनका गुरूर फिर वही उनकी शरारत फिर वही मेरी कसूर दोस्तों कि तेरी खामोशी चला देती है इस दिल की तमन्नाओं को तेरी खामोशी जला देती है इस दिल की तमन्नाओं को बाकी सारी बातें अच्छी हैं तेरे तस्वीर में। हम चलते हैं मेरे सवाल का जैजाना और का ये गीत है आओ मिलकर सुना जाए।

दोस्तों, यहाँ से मेरे सवाल का एक गीत हमने आप सबको सुनाए हैं, प्यार भरी गीतों की। और बाहर प्रोग्राम हमारा यहाँ से चलते हैं और आगे को तो प्यार भरी बातें तो करना हमारा ही काम है यारो, कि काश उसे चाहने के अरमान न होता, काश उसे चाहने की अरमान नहीं होता, मैं होश में रहते हुए अंजाम नहीं होता, ना प्यार होता किसी पत्थर दिल से हमको, या फिर कोई पत्थर दिल इंसान ना होता। दोस्तों नौकीर वसमोए, काश उसने चाहने का अरमान ना होता, काश उसे चाहने का अरमान न होता, मैं होश में रहती हुए अनजान न होता, न प्यार होता किसी पत्थर दिल से हमको, या फिर कोई पत्थर दिल इंसान न होता। तो हम चलते हैं, मिले तुमसे बिछड़ के हम मेरी साजन। और फिल्म के नाम है सलामी अलकायांगनी कुमार शानू।

और मिले तुमसे बिछड़ने के और मेरे साजन दुआ करना। अलका याग्निक का ये गाया हुआ सॉन्ग है कि दोस्तों कि अगर मैं भी मिजाई से पत्थर होता, अगर मैं भी मिजाई से पत्थर होता तो खुदा होता तो तेरे दिल होता। बहुत आसान है पहचान इसकी, अगर दुखता नहीं है तो दिल नहीं है, अगर दुखता नहीं है तो दिल नहीं है। ये तो सच बात है दोस्तों, अगर दिल है तो दिल टूटता भी है, और अगर दिल है तो दिल रोता भी है, और अगर दिल है तो दिल प्यार भी करता है। मुझे रिश्तों के लम्हे कटारों से क्या मतलब, मुझे रिश्तों की लंबी कतारों से क्या मतलब। और कोई दिल से हो मेरे तो एक शख्स की काफी है। तो हम चलते हैं कि रब्बा क्या जानते हैं, रब्बा तो सब कुछ जानते हैं। और आओ सुना जाए कि यहां पर मिशन मजनू क्या कहते हैं।

ओ सनम और ओ सनम दोस्तों, और ओ सनम में क्या क्या होता है आप लोग भी जानते हैं कि कभी कभी नहीं कभी कभी बहुत ज्यादा हो चुका है जो लोग प्यार में धोखा देते हैं। दिस प्रोग्राम भैया, इस प्रोग्राम जो है ये सिर्फ लवर्स के लिए है और प्यार भरी गीतों के बाहर प्रोग्राम हमारा है, और उसमें कभी कभी लोग धोखा भी दे देते हैं, बेवफाई भी करते हैं, तो हम भी उस लोग को याद करते हैं जो दिल तोड़ दिया है या तोड़ते हैं, और जो सोचते हैं दिल तोड़ने को कि तेरे ख्याल से दिल से मिटाया नहीं अभी, बेवफा मैंने तुझको बुलाया नहीं अभी, हमसे ना करिए बातें यू बेरुखी से सनम, हमसे ना करिए बातें यू बेरुखी से सनम, होने लगे हो कुछ कुछ बेवफा से तुम, हम चलते हैं तेरे नाम धोखा रख दुन नाराज हो गए हो क्या, तेरा नाम धोखा रख दू नाराज हो गए है क्या अरिजीत सिंह क्यों।

0: तेरे जैसे कुछ किरदार धोखेबाज निकले
1: और तेरा नाम धोखा रख दूं और तुम नाराज हो गया है क्या कि कहते हैं हमने ना मोहब्बत मिली, हमें ना मोहब्बत मिली और हमें ना मोहब्बत मिली ना प्यार मिला, हमको जो भी मिला बेवफा यार मिला। अपने तो बन गई तमाशा जिंदगी, हर कोई मकसद का तलगार मिला। कि कहते हैं दोस्तों प्यार में धोखा होता है, तूने ही लगा दिया इल्जाम इस बेवफाई, अदालत भी तेरे ही, गवाह भी तू ही थी। तो हमारे यारों और हम अपना प्रोग्राम को और आगे को बढ़ाते हैं और ये गीत है प्यार का, दोस्तों प्यार का सॉन्ग है, बेदर्दी से प्यार का सहारा न मिला।
2: जब हम बड़े हो जाएंगे तो मुझसे शादी करेगी?
3: हाँ।
2: प्रॉमिस?
3: प्रॉमिस।
2: तो फिर मैं अभी आया।
3: ओफो, ये फिर कहाँ चला गया?

0: क्या कर रही हो तुम? हाँ याद है ना, तुमने प्रॉमिस किया था।
1: ये क्या बचपना है, मेरी शादी हो रही है।

और बिदरसी से प्यार का सहारा ना मिला कि वो तारों की तरह रात भर चमकते रहे, हम चांद से तनहा सफर करते रहे। वो तो बीते वक्त उम्मीद आना ना था, वो तो बीते वक्त उन्हें आना था। हम यूं ही सारी रात करवती बदलते ही रहे। और यहाँ से एक गीत और हम आप लोग को सुनाने जाते हैं, और वो गीत क्या है, अब नाम मोहब्बत के लेन तो आया है गुलाम। उदित नारायण अलका यांगनी फिल्म के नाम है गुलाम। दोस्तों गुलाम फिल्म का नाम है। एक लम्हे के लिए मेरा नजरों के सामने आया, एक मुद्दत से माने खुद को आईने में नहीं देखा।

दे दो प्यार और ले लो प्यार, मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर है खुदा होता। सुनने वालों की खिदमत में अदाब नमस्कार। आज जबकि मंगलवार है, जुलाई के 7 तारीख, जो बीमार है, लाचार है, खास करके हॉस्पिटल के अंदर है, तंदुरुस्ती के लिए मिलकर दुआ करते हैं। जिनके घर में शादी या सालगिरह है, फाहों रेडियो के फुल टीम की तरफ से मुबारकबाद और बधाई पेश हो। जो लोग इस वक्त सफ़र पर जा रहे हैं, सफ़र मुबारक हो। जो लोग गैर मुल्क से यहाँ हॉलैंड में आए हैं, उसको मैं खैर मकदम कहती हूँ। हो सकता है कि किसी के घर पर कोई दुख की घड़ी आन पड़ा, तो यकीनन हम सब आपके गमी में शरीक है। आज के प्रोग्राम में आप क्या क्या इंतज़ार कर सकते हैं? इश्तिहारे, कुछ मिले जुले नखमे, नए और पुराने, सब मिला जुला कर कोशिश करूंगी 3 बजे तक आपकी खिदमत करने को। खिदमत करने के लिए इस वक्त स्टूडियो में हाजिर है खुद मैं बीबी साहिबा रहीम बख्श। 3 बजे तक प्रोग्राम को सुनते रहना। उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह से हम प्रोग्राम को पेश करेंगे आपको पसंद आएगा। अभी आपने मुझसे पहले उनसे दीर बार को लिखा एंड भाई जॉनी के जरिए से प्रोग्राम को सुन रहे थे। चलिए मेरे हिस्से का प्रोग्राम के ओपनिंग सेलेक्शन आप सुनेंगे।

और दिल बहलता है आपके आ जाने से। अभी आपने साधना सरगम और साथ में मोहम्मद असीज से गीत सुन रहे थे। रेडियो फाहुन के मंगलवार के शाम के प्रोग्राम में आप फाहुन रेडियो पे चून है और हमारा पता है Johan Rinkerskade 351 तारकनंबर 3652247 और दूसरा तारकनंबर है 3622 07।

0: पलक बंद कर लूं कहीं झलक ही न जा,
1: पलक बंद कर लो और कहीं झलक ही न जाए। अभी आपने किशोर कुमार से गीत सुन रहे थे, फिल्म का नाम है एक बार मुस्कुरा दो, संगीतकार ओपी नैयर, और इस गीत का लेखक है इंदु।

इशारों को अगर समझो तो रास को रास रहने दो। अभी आपने पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी आशा भोसले से गीत सुन रहे थे। संगीतकार ओमिक सोमिक

ना ना करके प्यार तुम्ही से कर बैठे। अभी आपने पद्मश्री मोहम्मद रफी साथ में सुमन कल्याणपुर से गीत को सुन रहे थे। फिल्म का नाम है जब जब खूल खिले। खुदा जाने तुम्हारे इश्क की दुनिया, खुदा जाने तुम्हारे इश्क की दुनिया कहाँ तक है, वो जानता है जिसने जिसके नज़र तुम पे है।

एक हजरत थी कि आपके आंचल के तले मुझे प्यार मिला। अभी आपने मुकेश से गीत सुन रहे थे, इसमें देखा जाए तो 15 मिनट बाकी है 2 बजने में। आप फाहोन रेडियो पर चुने, हमारा पता है न्यूटन स्ट्रात नंबर, माफ कीजिए, योहान्स रिंकर स्ट्रात नंबर 331 और तार का नंबर है 365-2247 और दूसरा तार का नंबर है 362207। इस बार जो गीत आप सुनने को जा रहे हैं, गाने वाला है पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी और साथ में आशा भोसले, और इस ये गीत खास करके पेश है बारन दरख के रहने वाली बीबी साहिबा राफिया रहीम बख्श, जो हमेशा की तरह आज भी रेडियो के करीब बैठकर और रेडियो के फाहोन के प्रोग्राम से लुफ्त उठाती है। चलिए आपके नाम ये गीत हम पेश करती हूँ।

सौ बरस की जिंदगी से अच्छे हैं प्यार के दो चार दिन। अभी आपने पद्माश्री मोहम्मद रफी और आशा भोसले से गीत सुन रहे थे। गीत खास करके पेश था बारंद्रह के रहने वाली बीबी साहिबा राफिया रहीम बख्श के लिए। उम्मीद करती हूँ कि ये गीत जरूर आपको पसंद आया होगा। इसमें देखा जाए तो 10 मिनट बाकी है 2 बजने में। अगला ही गीत की तरफ हम आप सबको लेकर चलती हूँ।

अभी आपने मल्हर और साथ में आशा भोसले से गीत सुन रहे थे रेडियो फाउन के मंगलवार की शाम के प्रोग्राम में। इस गीत जो आप सुनने को जा रहे हैं, गीत की बोल है उलझन सूझे ना, रास्ता सूझे ना, और गीत खास करके पेश है दनहा के रहने वाली फेरा ठाकुर के वास्ते।

उलझन सूझे ना, रास्ता सूझे ना। अभी आपने आशा भोसले से गीत को सुन रहे थे। गीत की पसंद करने वाली, बेनहाक के रहने वाली फेरा ठाकुर के वास्ते ये गीत पेश था। उम्मीद करती हूँ कि ये गीत आपको जरूर पसंद आया हुआ होगा।

तुम रूठ के मत जाना, तेरा मेरा क्या रिश्ता ये तूने नहीं जाना। अभी आपने पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले से गीत सुन रहे थे, इस जीवन या ये मौसम, इस जीवन या ये मौसम, कभी खुशी खुशियाँ कभी है गम, किसी को मिले रास्ता और किसी को बहके कदम।

मेरे बेचैन दिल को चैन तूने दिया हो, शुक्रिया। अभी आपने पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी से गीत सुन रहे थे। इसमें देखा जाए तो 2 मिनट बाकी 2:30 बजने में, हमारा और आपका मिलन सिर्फ 3 बजे तक है। 3 बजे से प्रोग्राम को ऑफर लेगा अनाउंसर साथी राजन द्वारका जी। दुनिया किस्मत और खुदा, दुनिया किस्मत और खुदा, हो जाए दुश्मन तो क्या, प्यार मेरा झुक सकता नहीं है यार तेरे इन कदमों के सिवा।

भीगा भीगा प्यार का समां बता दे तुझे जाना है कहाँ। अभी आपने पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी और साथ में शमशाद बेगम से गीत सुन रहे थे रेडियो फाहन के मंगलवार के शाम के प्रोग्राम में।

चले होले होले साजना, अभी आपने आशा भोसले से गीत को सुना। इस बार जो गीत आप सुनने को जा रहे हैं, गाने वाली है शमशाद बेगम।

है मौसम रंगीनी सुहाने, जिया नहीं माने तू छुट्टी लेके आ जा बाल माँ। अभी आपने सुबैदा खानम से गीत को सुना रेडियो फाहन के मंगलवार के शाम के प्रोग्राम में। इस बार पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले आपसे मुखातिफ है।

आंखों से आंख मिली, दिल से दिल टकराने दो ना बाबा, माफ करो, देर हुई, अब हमें घर जाना है। भी आपने पद्मश्री मोहम्मद रफी और साथ में आशा भोसले से गीत को सुना।

दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार न करे बड़ी महंगी पड़ेगी जुदाई। ये भी आपने माला बेगम से गीत को सुना।

दिल संभाले संभलता नहीं, अब मुझे जाने इजाज़त दे दो जाने के लिए। मुकेश और आशा भोसले से गीत को सुना, इसमें देखा जाए तो 3 मिनट बाकी है 3 बजने में, और इसका मतलब यही होता है कि मेरे हिस्से का प्रोग्राम यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने को आया। आज आपकी खिदमत किया है खुद मैं बीबी साहिबा रहीम बख्श, आपने एक से अभी तक हमारा साथ दिया, साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कुदरत ने चाहा तो आने वाले मंगलवार को अपना मिलन होगा, और हमारे बात अनाउंसर साथी राजन द्वारका के जरिए से आप बाकी के प्रोग्राम सुन रहे थे, सुनेंगे। तमाम सुनने वालों की खिदमत में खुदा हाफिज, नमस्कार।

प्यार में क्या क्या होता है, अरिजीत सिंह, निकिता बच्चन ने, अमिताभ बच्चन इस फिल्म में काम किए हैं। और दोस्तों हम चलते हैं और अपना प्रोग्राम को लेकर आगे और कहते हैं जॉनी नंबर वन है हमारा नाम, आज का प्रोग्राम है सुनाना मेरा काम, बस सुनते जाओ, इस दिल के दास्तां भी बड़ी अजीब होती है इस दिल की दास्तां भी बड़ी अजीब होती है, बड़ी मुश्किल से इस खुशी नसीब होती है, किसी के पास आने पर खुशी हो ना हो, पर दूर जाने पर बड़ी तकलीफ होती है ना यारो, दूर जाने से बड़ी तकलीफ होता है, ये हम नहीं कहता है, ये दिल के आवाज कहते हैं कि अब जिसके जिए में आई वही प्यार रोशनी, अब जिसके ये मन आए वही पाए रोशनी, हमने तो दिल जलाकर सारे आम रख दिया है। और चलते हैं मोहब्बत इनायत कर्म देखती है, और फिल्म के नाम है बहारे आने तक, अनुराधा पौलवार और पंकज उदास क्या कहते हैं।

इनायत कर्म देखते हैं। आओ जा आप लोग जानते हैं प्यार भरी गीतों की बहार प्रोग्राम जॉनी नंबर वन का है और कहते हैं फिर वही दिल की वो फिर वही दिल की गुजारिश फिर वही उनका गुरूर फिर वही उनकी शरारत फिर वही मेरी कसूर दोस्तों कि तेरी खामोशी चला देती है इस दिल की तमन्नाओं को तेरी खामोशी जला देती है इस दिल की तमन्नाओं को बाकी सारी बातें अच्छी हैं तेरे तस्वीर में। हम चलते हैं मेरे सवाल का जैजाना और का ये गीत है आओ मिलकर सुना जाए।

दोस्तों, यहां से मेरे सवाल का एक गीत हमने आप सबको सुनाए हैं, प्यार भरी गीतों की। और बाहर प्रोग्राम हमारा

उसी ने, काश उसे चाहने की अरमान न होता, काश उसे चाहने की अरमान नहीं होता, मैं होश में रहती हुए अंजाम नहीं होता, ना प्यार होता किसी पत्थर दिल से हमको, या फिर कोई पत्थर दिल इंसान ना होता। दोस्तों नौकीर वसमोय है, काश उसने चाहने का अरमान ना होता, काश उसे चाहने का अरमान ना होता, मैं होश में रहती हुए अनजान न होता, न प्यार होता किसी पत्थर दिल से हमको, या फिर कोई पत्थर दिल इंसान न होता। तो हम चलते हैं, मिले तुमसे बिछड़ के हम मेरी साजन, और फिल्म के नाम है सलामी अलकायंगनी कुमार शानू।

तुमसे बिछड़ने के और मेरे साजन दुआ करना। अलका याग्निक का ये गाया हुआ सॉन्ग है कि दोस्तों कि अगर मैं भी मिजाई से पत्थर होता, अगर मैं भी मिजाई से पत्थर होता तो खुदा होता तो तेरे दिल होता। बहुत आसान है पहचान इसकी, अगर दुखता नहीं है तो दिल नहीं है, अगर दुखता नहीं है तो दिल नहीं है। ये तो सच बात है दोस्तों, अगर दिल है तो दिल टूटता भी है, और अगर दिल है तो दिल रोता भी है, और अगर दिल है तो दिल प्यार भी करता है। मुझे रिश्तों के लम्हे कटारों से क्या मतलब, मुझे रिश्तों की लंबी कतारों से क्या मतलब। और कोई दिल से हो मेरे तो एक शख्स की काफी है। तो हम चलते हैं कि रब्बा क्या जानते हैं, रब्बा तो सब कुछ जानते हैं। और आओ सुना जाए कि यहां पर मिशन मजनू क्या कहे।

और ओ श्रम में क्या क्या होता है आप लोग भी जानते हैं कि कभी कभी नहीं कभी कभी बहुत ज्यादा हो चुका है जो लोग प्यार में धोखा देते हैं। दिस प्रोग्राम भैया इस प्रोग्राम जो है ये सिर्फ लवर्स के लिए है और प्यार भरी गीतों के बाहर प्रोग्राम हमारा है और उसमें कभी कभी लोग धोखा भी दे देते हैं, धोखा दे देते हैं, बेवफाई भी करते हैं, तो हम भी उस लोग को याद करते हैं जो दिल तोड़ दिया है या तोड़ते हैं और जो सोचते हैं दिल तोड़ने को कि तेरे ख्याल से दिल से मिटाया नहीं अभी, तेरी ख्याल दिल से मिटाया नहीं अभी, बेवफा मैंने तुझको बुलाया नहीं अभी, हमसे ना करिए बातें यू बेरुखी से सनम, हमसे ना करिए बातें यू बेरुखी से सनम, होने लगे हो कुछ कुछ बेवफा से तुम, हम चलते हैं तेरे नाम धोखा रख दुन नाराज हो गए हो क्या, तेरा नाम धोखा रख दू नाराज हो गए है क्या अरिजीत सिंह के।

0: क्या कर रही हो तुम? हाँ याद है ना, तुमने प्रॉमिस किया था।
1: ये क्या बचपना है, मेरी शादी हो रही है।

बिदर्जी से प्यार का सहारा ना मिला कि वो तारों की तरह, वो तारों की तरह रात भर चमकते रहे, हम चांद से तनहा सफर करते रहे। वो तो बीते वक्त उम्मीद आना ना था, वो तो बीते वक्त उन्हें आना था। हम यूं ही सारी रात करवते बदलते ही रहे। और यहां से एक गीत और हम आप लोग को सुनाने जाते हैं, और वो गीत क्या है, अब नाम मोहब्बत के लेन तो आया है गुलाम। उदित नारायण अलका यांगनी फिल्म के नाम है गुलाम। दोस्तों गुलाम फिल्म का नाम है। एक लम्हे के लिए मेरा नजरों के सामने आया, एक मुद्दत से माने खुद को आईने में नहीं देखा।

पाप और हिंदुस्तान रेडियो पर आप चुन है दोस्तों, और मिस्टर सानू टाइगर ऑफ इंडिया कुमार सानू पद्मश्री कुमार सानू नेखजी सीफ ने तख्तक में शुरुआत किया है गीत गाने को, और ये लगभग 1000 से ज़्यादा गाना ये गाया है, और इसका एक न्यू सॉन्ग है यार तुई जैसन फिरन तुन तक में ये सॉन्ग गाया है, और लगभग ये गीत 1 महीना पुराना है। तो एक डुएट है मिस कुमार सानू और साथ ही साथ सर बरीस दोनों के साथ ये गीत, दोनों के आवाज़ों में, दोनों की मीठी आवाज़ों में आप ये गीत सुनेंगे, मिस्टर सानू एंड सर बरीस।

तुम्हें देते एक और रोमांटिक हॉट सॉन्ग, मैं चॉइस करके रखा हूँ मिस्टर सानू और साधना सरगम दोनों के आवाज में। आप सुनेंगे कुमार सानू दोस्तों, एक सांगर, एक कलाकार है जो 5 साल लगातार अवार्ड पाया, तो ये जैसन नहीं नहीं नीखंती इन नीखंतक से लेकर नहीं फेफ नीखंत लोग 5 साल लगातार इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला। और बात यह है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम भी है, इसलिए कि एक रोज एक दिन के अंदर बिने इन डाक कुमार सानू ने 28 गीत, जी हाँ दोस्तों 28 गीत गाया

कुमार सानू एंड साधना सरगम, आज आप चांदनी हो और तू मेरे साथ हो, उदित नारायण, पद्माश्री उदित नारायण। उदित नारायण ने लगभग 67 देर तक दर्जन गाना गाया है दोस्तों, और 36 देर तक भाषा ताल में। आप जानते हैं इंडिया में लगभग 415 ताल है, भाषा है, तो उदित नारायण ने 67 देर तक 36 भाषा में अपन गीत पेश किया है। और सब गीत में से एक गीत है, ये एक नया सॉन्ग है, एक दो महीना पुरानी है दोस्तों, और गाना के बोल है इंडिया से आया हो, उदित नारायण, पद्मश्री उदित नारायण की आवाज़ में।

डोसो और उदित नारायण के साथ साथ ये द्वैत आपने सुना। और दोस्तों मित्रा जी, डालिया मित्रा जी ने उदित नारायण के साथ ये द्वैत पेश किया आप सभी के लिए। उदित नारायण ने तक ने शुरुआत किया गाना गाने के और लगभग 14 ऑन द स्काइडिंग उदित नारायण के मिला। एक नया सॉन्ग और मैं चॉइस करके रखा उदित नारायण का। मैं सोचता हूँ कि ये गीत फिल्मों में अभी नहीं आया या फिल्मों में नहीं आएगा। मिस्टर उदित नारायण या पद्मश्री उदित नारायण की आवाज़ में आप सुनेंगे।

आज के लिए माफी, कल तो छोड़ दूंगा, कल जब आएगा तो देखा जाएगा दोस्तों, कल आएगा तो देखा जाएगा। मिस्टर सानू पद्मश्री, मिस्टर सानू को नहीं उदित नारायण होना चाहिए। माफी किए दोस्तों, आपसे माफी चाहता हूँ। उदित नारायण पद्मश्री, उदित नारायण की आवाज में एक और सॉन्ग आप सुनेंगे, थोड़ा वक्त और।

उदित नारायण के बाद में भी आप गीत को सुने। श्रिया घोषाल, श्रिया घोषाल कई तरह के गीत भी गाया है दोस्तों। और श्रिया घोषाल जब 6 साल के था तभी से ये म्यूजिक की दुनिया में कदम रखा और आज तलुक के म्यूजिक की दुनिया में है। शुरुआत किया अपन सॉन्ग से तुई दर्शन तुई में, और कई तरह से इन्हें लोग अजमायर की है, एक गायकी निकलेंगे। फिर भी जाकर सारे गामा पा का प्रोग्राम में इन्हें लोग टेस्ट किया और पता लगा कि ये प्लेबैक सिंगर का काबिल है। तो श्रिया घोषाल और साथ ही साथ शकील फर्नांडस दोनों की आवाज़ में अब एक गीत सुनेंगे।

श्रेया घोषाल का न्यू सॉन्ग दोस्तों जैकलीन फर्नांडिस के साथ अभी आपने सुना। एक दूसरा गीत और है साध लंजरेड गुली माता। ये तक में ये एक अरबी मिक्स, इंडियन अरबी मिक्स आप सुनेंगे।

0: I love you.
1: Diafa 2023 Sadnam Jarat performing Guli Mata song abhi aap sune the. Aap hi ka happy station Fahon Hindustani Radio aur aap sune program Gito ka Sangam. सोनू निगम पद्मश्री सोनू निगम और एक बार फिर श्रेया घोषाल दोनों की मीठी आवाज़ों में कुछ कहा अपने मूवी का नाम है सॉन्ग का बोल है पहले ना देखता था यू मेरा दिल

सोनू निगम एंड श्रिया घोषाल दोनों के मीठी आवाज में सॉन्ग आप सुन रहे थे। सोनू निगम दोस्तों, सोनू निगम प्रोग्राम आज और कल में लगभग 100, जी हाँ दोस्तों 100 गाना रिकॉर्ड किया है पद्मश्री, स्वर्गीय पद्मश्री मोहम्मद रफी का। और वैसे तो सोनू निगम गजल, क्लासिक, भजन और 13 भाषा में भी अपन गीत पेश किया है। एक बार फिर मिस्टर सोनू निगम या पद्मश्री सोनू निगम के आवाज में आप गीत सुनेंगे।

घर जाओ या झीलो जरा। दोस्तों आपकी बार सोनू निगम एक बार फिर, लेकिन उसका साथ देंगी अलका याग्निक। बिन अलका के दोस्तों ये गीत संगीत जो है इन दिनों में भी पूरी नहीं होते हैं। और अलका याग्निक एक गायकी है जो 3000 से ज़्यादा सॉन्ग पेश किया है। तो मेरी मोहब्बत का जाने क्या होता है, मेरी मोहब्बत को क्या जाने क्या होता है सोनू।

श्रावण सर्ज बड़ा चून है लगभग एक घंटे तलुक लगातार स्पेशल आपके लिए स्पेशल फॉर यू चटनी शो का प्रोग्राम आप सुनेंगे स्पेशल फॉर यू। ये चटनी शो का प्रोग्राम का शुरुआत मैं करता हूँ, मैं चला जाता हूँ त्रिनिदाद से, और त्रिनिदाद से जाऊँगा गयाना, गयाना से सूरीनाम, वहाँ से वापस आ जाऊँगा हॉलैंड देश। और ये शो का प्रोग्राम का शुरुआत करता है आज शाम का, या आज का प्रोग्राम में जो है, शाम हो या रात हो या दिन हो या सुबह हो कोई बात नहीं, हेमलता दीनदयाल, उन्हीं के मीठी आवाज़ में आप सुनेंगे।

0: सुखा मेरेंगे आपने सुना त्रिनिदाद या टोबैगो का सॉन्ग भी आपने सुने। अब की बार 2023 तक का म्यूजिक रिलीजेस सुखा मिक्स ऑफिशियल इंजी रूम आप सुनेंगे और वो है त्रिनिदाद एंड टोबैगो से।
1: I know you're not blaming me. Nah.
2: That lace is not my money. Spend.
1: Yeah, because I made our money.
2: You gotta call somebody.
1: You see me trying to get a signal.
2: Oh gosh, well, you could ask for a ride or something.
3: Who you wanna ask? Who? I could get a ride, please.
4: Only one ride, oh. Come now, man. Are you good now?

0: wanneer de zon je wekt in de ochtend, het licht je doet stralen.
1: जब सोका और मेरेंगे के बात होता है तो सुंदर पोपो को कभी मत भूलना चाहिए दोस्तों. द किंग ऑफ कैलिप्सो त्रिनिदाद टोबैगो का सुंदर पोपो की आवाज में आप एक कैलिप्सो सुनेंगे.

त्रिनिदाद एंड टोबैगो का अभी चटनी आपने सुना, और वो था द किंग ऑफ सोका मिस्टर सुंदर पोपो के आवाज में। अब की बार मैं चला जाता हूँ त्रिनिदाद टोबैगो छोड़कर गायना को, दोस्तों वहां पर भी बहुत चटनी सोका लोग गाया है, और रशिका दीनदयाल तैयार हो गया है चटनी ऑन द बीच।

Hai hai, chilam chilam sigaretwana mange and now chutney darya mode laila. गायना का चटनी सो का सॉन्ग आप सुनेंगे।

0: आशनी माता दिन के बाद दोस्तों हम चला जाते हो आपन बैठक चटनी स्टाइल। बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, क्रिस राम खिलावन के आवाज में
1: तोरी अखिया हो और पति

श्री राम खिलावन के आवाज में भी आप गीत को सुना। मैं वापस चला जाता हूँ हॉलैंडेस, द ईगल्स बॉबलिंग हिट आप सुनेंगे। डीजी विदेश, हर तरफ तेरी जलवा।

तेरी जलवा हर तरफ तेरी जलवा के बाद दोस्तों जानते जहां सोको मेरेंगे चलता है वहां भी बिगी पोको चाहिए तो आई वन एसबोम ये सरनाम जिस मेरे गांव में रहता है दोस्तों रहता था तो उन्हीं की आवाज में आप सुनेंगे बिगी स्मार्ट स्टोरी

आप सुनेंगे सितारों का सफर। आज का प्रोग्राम है सितारों का सफर, में मैं गजल का गायक या गजल का फनकार पंकज उदास के बारे में कुछ बातचीत करूंगा। पंकज उदास पैदा हुआ सीपटिक में इन फैक्ट राजखत में, परिवार बॉम्बे से बॉम्बे चला आया और म्यूजिक अकादमी में तबला बजाने को सीखा पंकज ने। पंकज को बचपन से गाने का बहुत से शौक था। मास्टर नवरंग से ये संगीत सीखा। उषा खन्ना ने पंकज को फिल्म कामना में गाना गाने का एक मौका दिया, लेकिन ये फिल्म कामयाब नहीं हुआ तो पंकज ने फैसला किया कि वो फिल्मों में बहुत कम काम करेगा और पंकज शुरुआत किया गजल गाने में और उर्दू भी सीखा। बड़ा भाई ने कहा पंकज से कि अगर गजल में कुछ करना है, कुछ करना चाहते हो तो मेहंदी साहेब और बेगम अख्तर को सुनो। पंकज जी ने बहुत से गजल पेश किया है, तो बहुत से गजल गाया है और सभी गजल में से एक गजल जो मुझे बहुत पसंद है, तेरी निगाहों से, पंकज उदास की आवाज़ में।

अहंकार पंकज उदास कनाडा को चली गई और वहाँ जाकर उन्हें महसूस हुई कि यहाँ के लोग को हिंदुस्तानी म्यूजिक कितना पसंद है। फिर पंकज ने मन बना लिया कि ये अपना देश में अपना नाम करेंगे और काफ़ी टाइम गजल सीखने के बाद ये वेसन में काफ़ी गजल की कॉन्टेस्ट किए नीखतिन तख तक और नीखतिन तख तक ने अपनी पहला गजल की आलबम तैयार की जिसका नाम था आहट। फिर उसके बाद फिर उसके बाद वो एक गाना तैयार की एक गजल और वो था चिट्ठी आई है। इस गाने से ये तुरंत पॉपुलर हो गया दोस्तों। एक बार पंकज उदास एक बेनिला से फ्लिक था तो एक शो देकर घर जा रहा था और जो फ्लिक थे जब प्लेन में बैठा तो राज कपूर जी वहाँ प्लेन में बैठा था तो राज कपूर के जाकर उनका पाँव पकड़ लिया पंकज। तो राज कपूर ने कहा नहीं नहीं पंकज जी ऐसे मत करो आप एक बड़ा गायक हो। तब पंकज ने कहा नहीं नहीं मैं कोशिश करता। तो राज कपूर ने कहा आपका गीत जो है चिट्ठी आई है वो एक हिट एक बड़ा सॉन्ग हो गया है। तो वहाँ पर जाकर पंकज उदास को महसूस हुआ कि कितना तारीफ किया जा रहा है मेरा ये गीत पर। और ये गीत दोस्तों मैं सोचता हूँ ये गीत हमेशा पॉपुलर रहेगा। इसलिए गीत में जो बातें हैं मैं गीत को सिलेक्ट करके रखा लेकिन आज नहीं पेश करूँ इसलिए कि गीत बहुत लंबा चौड़ा है। एक दूसरा गजल मैं आपके लिए चुन के रखा हूँ और मैं अभी पेश करूँगा। तो चिट्ठी आई एक पॉपुलर हिट हुआ। फिर उसके बाद जहाँ जहाँ गजल गाया जाता था वहाँ वहाँ पंकज उदास हमेशा उपस्थित होते थे और उनका गाना भी हमेशा चलता था। पंकज उदास की आवाज़ में एक दूसरा गजल आप सुनेंगे। पंकज उदास दोस्तों आप जानते हैं वो सुरीनामदेश भी अपन शो दिया है और हॉलैंडेश में भी आकर अपन शो कितने कई बार मैं सोचता हूँ दो बार वो सुरीनामदेश गया है।

एक तू ही धनवान गोरी, बाकी सब कंगाल। गसल का फंकार पंकज उदास को पद्मश्री का पद्मी मिला दिया। ट्वीडेशन शस्त्र में पद्मश्री का ऑन स्काइडिंग और पंकज उदास का पिता का नाम, उसका पिता का नाम थे खुशीदास उदास और माँ का नाम थी झूठी झीती झीती बन। पंकज को दो भाई है जिन्हें जिनका नाम है मनहर उदास, वो भी एक गायक है, और दूसरा भाई का नाम है निर्मल उदास, एक गजल गायक, और बीबी का नाम है फरीदा उदास। इन दोनों को दो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, जिनका नाम है नयाब उदास और रेबा उदास। दोस्तों दुख की बात यह है कि 26 फरवरी 2024 को 72 साल के उम्र में पंकज उदास की मृत्यु हो गया, दुनिया को छोड़ चल गए, और बहुत दुख की बात है दोस्तों। पंकज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका नाम जब लिया जाएगा बड़ी गर्व से लिया जाएगा। उसका दाह संस्कार परिवार रिश्तेदार के अलावा फिल्म इंडस्ट्री के तमाम भी सितारे मशहूर थे वहाँ पर।

सितारों का सफर यहाँ से समाप्त होता है। बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली। महेंद्र कपूर का लाइव सॉन्ग आप सुनेंगे।

महेंद्र कपूर, पद्मश्री महेंद्र कपूर की आवाज़ में बदल जाए अगर माली। दोस्तों, जॉय मुखर्जी सायरा बानो के साथ फिल्म शागिर्द में काम किया। आप ये फिल्म देखे होंगे तो इस फिल्म एक बहुत जोक फिल्म था, इसमें बहुत हंसी था और जॉय मुखर्जी और सायरा बानो अच्छी तरह से इस फिल्म में काम किया। और इसी फिल्म का एक सॉन्ग है नाइटिंगेल, लता मंगेशकर की आवाज़ में आप सुनेंगे।

और आशा पर सायरा बानू दोस्तों दिलीप कुमार का बीवी सायरा बानू के साथ फिल्म शागिर्द का ये सॉन्ग अभी आपने सुना। धर्मेंद्रा दोस्तों धर्मेंद्रा और अपन दूसरा बीवी, जी हाँ लोग कहते हैं दूसरी बीवी, तो मैं कहा दूसरा बीवी, अपन दूसरा बीवी हेमा के साथ वो काम किया फिल्म चरस में। अभी गीत के बाद मैं कुछ धर्मेंद्रा के बारे में आपसे बताऊँगा।

0: दोस्तों धर्मेंद्र, आप सभी जानते हैं कि धर्मेंद्र का तबीयत जो बिगड़ा, तो धर्मेंद्र अपना दयाद जो है, जितना धन दौलत है, वो अपन दो बीबियों के अंडर बांध दिया दोस्तों। तो एलक है, एलक मीन्स दोनों बीबियों का पूरा बांध दिया। और धर्मेंद्र का दौलत जो है 560 करोड़ रुपए। तो धर्मेंद्र अपना पहला पत्नी और हेमा मालिनी को दोनों को 200 करोड़ दिए। तो हेमा मालिनी को 200 और अपने पहले पत्नी को भी 200 करोड़। और अपनी चार बेटियां, धर्मेंद्र को चार बेटियां है, दो हेमा के साथ और दो बेटी है प्रकाश कौर के साथ। तो चारों बेटियों को 107 करोड़ दे दिए और 60 करोड़ रुपये। और अपना फार्म जो है, अपना फार्म हाउस जो है, वो दोनों अपने अपने दोनों पत्नियों में बात दिए, ये लगा। और बच्चे सोनी दियोल और बॉबी दियोल दोनों को अपना प्रोडक्शन हाउस दे दिया। और धर्मेंद्र को कई शहरों में रेस्टोरेंट है, उसका कीमत लगभग 5 करोड़ है। और दोनों भाई के हिस्से में ये दोनों, ये सभी रेस्टोरेंट जो है, ये दोनों भाई के हिस्से में आया। और धर्मेंद्र को चार बड़े बड़े बंगले है जो अपने दो बीबियों को बात दिए है दोस्तों। तो देखिए धर्मेंद्र अपन दो बीबियों को कितने प्यार करते हैं कि लड़कन को कम दिया है और अपन बीबी को ज़्यादा दिया है। इसलिए कि बीबी से तो लड़का होता है ना, जब बीबी नहीं है तो लड़का कैसे होगा। जॉनी तू क्या सोचे है, सही बात है कि नहीं
1: भैया? जो मसीह है ना, वो तो कैसे चले।
0: वही बात है जॉनी, थैंक यू वेरी मच।

Na jaane unch neech kala na jaane jaat sochi mantan di ji humko apni aashirwaad tamam radio fahun ke sunne walon ko hamara ram ram namaskar pyar bhari anam sat sri akal ji जॉनी नंबर वन है हमारा नाम आज का देश और विदेश का समाचार सुनाना है हमारा

ट्यून से आपको पता चल चुका होगा कि हम आ गए हैं अपना देश और विदेश की समाचार लेकर।

दोस्तों हम तुरंत चाहते हैं अपना सूरीनाम की ओर। भैया आप लोग को पता है अब पाकिस्तान में या कहीं कोई और देश में या कोई फेस रहे भाई, तो आपने जरूर यूट्यूब पे देखा होगा कि सबन बंदूक लेके लॉसेस खुद दागे हैं। हाँ, फॉर द फेस एंड दैट इज फॉर प्लसीर दून से

जगह के नाम है क्रिस्तुस वो फेस्ट रहा और ये बात हुए हैगा कि फेस में भैया रात के आदमी दागी से पिस्तौल स्टूल और उसको दागी से भाए तो यहाँ पे बताए गए हैगा एक बारे में सबन अनखिफ्त कर इसे सिपाही आए के पहुँचे ले ब्रॉन्स वेख के और जब गए ले हुआ ते को द्रियन ट्विन तक यारख एक आदमी के पकड़ी से जेकर पास पिस्तौल रहा हाँ और बोले है उफ त्रीड कलर फिर वेत से और बताए गए सिपाही एक के पकड़ी से गया और एक कल के पिस्तौल मिलल है लाई हुई मिलल है एक पास एगो करिया ओतो फोर्थ रेप्टर रहा जो रेटिंग क्लास क्रीक में उजात रहा बस वह खरीद चल गया हुआ और बोले हैगा दखीफ फन फुरते ओकर बारे में डायरेक्ट सिपाही कंट्रोलर कैसे क्लास क्रीक में और फोर्थ रेप्टर वास कंट्रोल पोस्ट अने स्टैंडर्ड होद हुआ पे सेवन कंट्रोल पोस्ट पे के रुकी से और सिर्फ एयर करिसे कर पास इतना वापन पाई से और बोले है डफ इन से तने वेदर फॉर फोकस ओवर खतरा का नतीलक में से और ये रमिया का बोले बोले हम अपन पिस्तौल वा धल्ले रहली अने आस बोरख कहीं पे यहाँ तय इस ऑन डर फरक्लार्ड दैट इट आन कत्रोफन फिर वापन फन हम वास ओकर बा और फरक्लार करेगा कि आस अंदर पांत हम ओके धल्ले रही तय इस अन खोकन ते अबराब रुकी में खोक होत्रात ओके अंदर पांत हम धल्ले रही के जीत अपने पिस्तौल वा पाया अब ले डे फरदाख्त बकेंद दन आज दैट है तय इस अर्फीस स्कोटन इल्लुस हाथ खलोस नादन एन फीसगांगर हम दैट सो हैवन गफ्रा De politie van de Bronswerk zet een onderzoek voor, maar hier na liegen hij, kieu illegale raak, kieu legale pistool lavai. Lekin hoe na zomaar Suriname, met deze Nederlandse oosten, met Pakistan, of kahin kahin die stuwen, ze van je face kregen, dan doen ze dat mensen, ha, is je hè. अब देखो भैया सूरीनाम के सिपाही जो है ना सबके बोलेला बड़ा स्लेक्ट रिपोर्टाज है उस सब कहेगा उस सब के भैया बड़ी बड़ी सिपाही के पकड़ा है अब देखिए यहाँ फिन तीन सिपाही पकड़ा ने भैया हाँ स्कोटू भाई स्कोटू आदमी लोग के पेस्तक कर ले रहा जाने तो कि हमें इतना पैसा दे तो सखुआ हम दाब देवे तो सखुआ हम दाब दे चुकू ले भैया पैसा लेवे हैगा तो यहाँ पे बोले हैगा तीन सिपाही के सबन पकड़ी रहेगा फॉर अफ पेरसिंग ये बातचीत हुए हैगा एगो है पुलिसिया खेन एस्ट क्लास है कि दूसरा एगो ब्रिगाडियर है और दर्द एगो अस्पिरान सिपाही श्री नाम देश के है और बोले हैगा स्ट्रफ रखने को अंडरसूक पहले ना अन आखिफ्त फन ऑटोमोबिलेस एगो अन गाड़ी चला आदमी गली सबके ऊपर नालिश करी से तब ले स्वास्थ्य स्टाक बतरेफ के को स्कूल तो इस क्लास के राव ब्रिगाडियर रहा 6 तारीख यूली के एक पकड़ी से फॉर अफ पेरसिंग तो अफ पेरसिंग के पकड़ी से हुई पकड़ी से दोस्तों तो यहाँ बतावे गए हैगा कि अन बताए गए है उद्योग अनमिया के पेस्ट करी से तुई पुलिसिया दी इन एंड बसित वास फॉर इलीगल फेस फिर वा ओकर पास एगो इलीगल पिस्तौल है जे आनखिफ्त करी से आ इस कोतुन ओकर लगे इलीगल पिस्तौल वा पकड़ ले से ले ले से और ओके बोली से जे तू हमें दुई एन हाल दैसन अमेरिकन डॉलर दी है तब बोले तोर सखवा हम दाब दे बोले कुछ ना होई अब ये मियां के पैसे ना रहा तू एन हाल दैसन तो ओके ना भरी से ते इस पिस्तौल वा ले ले से भैया सौदन अखेंड फोकस आनखिफ $2,500 ऐस करी से द मान हद खल्त नीड मेंसे उ जोन के पास पिस्तौल वा रहा फिर वा परवा सब हम बसलाख कली से गा स्कोटोर और स्कोटोर पिस्तौल वन दोरो फिर से बेच दी से भाई फरमूदन दैट इज बसलाख नु मो वापस लातर इस दूर फरकोह द मान दे दारो आनखिफ्त कर इस पुलिस विरो में अपि तीनों के पकड़ के बंद करी से गा ओपी सेट उपमार मिनिस्टर beslist over de verder verloop van de zaken te schotelen, ja, als hij te openlijk tjoukou mange ke to etra paisa deed hem to sakwa daap de be. Ab deko ego admi bhaiya ego aur sipahi pakdi se 27 jaar ka aspirant aken ke serfier kari se ko auto chauffeur automobilist ke bole hame 400 srd de to kuch na bata iske kunch bhai lamb ki ek ke bhi 400 bhari se automobilist wa baki ramiya

बोले ना बोले तो हम जब अनगिफ्त करे तो कि जाए के अनगिफ्त करी से और एक भी सीफ ने तुन रख यार के स्कोटू के पकड़ ली से ते जोन आदमी जोन सिपाही तोर कमरात है भैया जी के सोचिए हम का बोले हैं हम विश्वास करीला हमें फैला खैर करी वही तो के इसे भी चीज करी तो सिपाही पे कैसे विश्वास करी भैया हम ना बोले ला मौसी लो उनकी सब स्कोतू है माँ शायद बहुत ढेर हुई गए श्री नाम दी इसमें सिपाही लोन भाई जोन ये चीज करे अब देख एक आदमी का और बात है आज एगो गाड़ी जा है भैया और ब्रॉफिस पे दुई मिला जा है तो दुई मिला ब्रॉफिस पे बैठल ओतुआ वाला अनमिया रुकल है और शुक्रवार के गो रिसेंटली दी शुक्रवार के ब्रॉफिस पे दुई मिला जा है और फोर को आदमी के नाम बा ब्रिंस लियोनार मर गए भैया 5 तारीख के ओके लाठी से मारी से भैया और फरकेर में हैली से 7 तारीख फिर यूलवेतन दथे से 100 आन मेलन तो आप एक स्कोतु खोजे है जो अनमिया लाठी से तो हुआ मसे निकल के मारी ब्रॉम्फिस वाके तो स्कोतु से बोले है बोले कि हम अबे ना आबे बोले हम जाएला पहले अपरे के वासी करवाबे तब आबे तो के मेल द करबे एक के कोई सिपाही बोले ना बोले हम तो के ना गौरव के कब तू वासी हुई है तब तू हमार लगी है बोले हम लोग आयला तो के लेवे तो एक के गेल खोजे तो एक के ना पाई से भैया ते बिहान भर अपन अफोकात लेके और जाए के मेल्द करी से गा द फरदाख्त वेर द अख्त नित अनकोट्रोफन और बोले है गा अनफोकात के लेके बिहान भर गेले वेल तो मेल्द करी से गा और बोले है बाय द फोरलेगिंग हियर द फरदाख्त टूगेगिवन दैट हे द ब्रॉन्फिशर en die andere persoon met de voorwerp slagen heeft toegebracht aan de Johannes Moerastraat. Toen verkeer me bij jezelf laatje aan die leek bij jullie heen. En verkeer me bij te kus bolen op je bij jou. Nee. ऐसा तैसा आदमी लाठी ले आयो मारी बस मर जाइयो भाई और तू जाने हैगा फरकीर में भी कितना गड़बड़ है देखो दुई प्राणी क्यूबा के लड़ी से दोनों प्राणी भैया घर में वो लड़ाई भइल है इसल खवेल के कि औरतियां निकार के कुछ चोक चीज से अरेमिया के भोग दी से भोग दी से वो रमिया के जाई के परल अकादमी सिकन हैस में सिपाही जाई के पहुंचल है तो वो सोचे ऊपर फाल भाई लो हमदा तू जाने सरनामे बड़ी जोर ऊपर फाल हुए है अबे बता और तो सोचे ऊपर फाल भाई है तो जाए के पहुंचो में ब्लैक भाई लेगा कि औरतिया रमिया में झगड़ा भाई है तो औरतिया ओके भोग रही से औरतिया को तो लग ली से गा किसको उतन से बतियाई से किला हमदा तो क्यों बांध रहा खैर फ्लैट की सिपाही पहुंचल है तो अनमिया का बोले है अनमिया बोले हम सखवा बोले त्रक त्रक करेला बोले हम अपन पार्टनर के न मांगेला क्यों बन हुए बोले हम सखवा त्रक त्रक करेला द मन अन दैट है हिंग स्ट्रफ रेखल को फॉरवर्किंग तीखन से पार्टनर विंस तो बेचारा बहुत अच्छा आदमी देखा है औरतों के छुरी भूखी से या कुछ भूखी से और नाना मांगे को कर औरत पकड़ाई के बन हुए तो ये बात है दोस्तों आप लोग जानो है पालू का फोर्थ सीटर राम नंदलाल है राम नंदलाल एनडीपी में संगे हरदम काम करी से अब वही रमिया कृतिस बतिया है बोले वे हेबन कफूल की ई रखे रेंगवा जो बा ए प्लेटफॉर्म फॉर अख्तर रेट जा है बोले है का प्रेसिडेंट हाथ बोले बलूफ कर ले रहा सिमोन बोले कि एम सिस्टम वो हील माल बदला बोले मोकिंग का सिस्टम मा बोले हैगा बोले फीस प्रेसिडेंट प्राक आन अयू पासी ओ द पालू हाथ को हो द देश रखेरिंग फरांदरिंग सो बरेंगे मा बोले कुछ ना होवे रामदन लाल बोले है अंदर फोर्सिटर है पालू के और बोले तीफंस ने खवीसन देना लिदबा बोले इन प्रोग्राम सिनवेब में बोली से
और रामदलाल स्टीफ कृतिक लेवर कर इसे रखेरिंग्सबलाइट के ऊपर पार्लियामेंट के और बोले हैगा कि डीएनआ का बोले जो डीएनआ का नेशनल असेंबली है बोले फरखादत ओवर बखरूतिंगन kunnen we zeggen dat we qua deskundigheid stappen achteruit aan het maken zijn. Bolle hega, John, ze mepe is op staatsbegroting gebaren betaald, dat bolle in plaats van vooruit is op achteruit, ja, he. Deskundigheid, ke bolle tjalagen na, he, bolle na jane ons op kontje kregen. Bolle ons dan dat er verandering is beloofd, zien we dat de DNA aan het terugvallen is in een oude manier van kijken hoe we dit land zouden moeten besturen. Ik erbaren mee, paluka onder voorstel de naam Nandalal bole he aur batawe hega ki het volk stem continu anders om vergadering te brengen maar uiteindelijk blijkt dat ze voor de gek zijn gehouden volk kritiek hega bole begrotingsbehandeling me iban bole hega onder voorzitter van de palu aur altijd de NDP ke aur upar de naam me bhi baithel he. Een belangrijke punt van de kritiek richtte zich op de wijze dat de Nationale Assemblée Ramdendelaan en het parlement volgens hem onvoldoende diepgaande en technische onderbouw te werk gaan. Begroting en tekort in discussie hoe we kritiek op transparantie en verandering oproept tot politieke consequenties. Oriezebaan, Nendelaan, Bolihe, Hamari, Piari, Piari, Genta. तो अब देखा जाए दोस्तों और क्या हो रहा है भैया फिन रूफ ऊपर फाल भैले 2000 यूरो 17000 एसआरडी और जाए के ई भैले कैनेडी वेख में और ऊपर सो मारना जाए के क्वालिफिकेट एरफारिन चोर लोन है डाकू लोन है जाए के लूटी से सनिचर के भैया 8 बजे रात के और अतवार के 5 बजे हैं उमस्त्रिक 20 यूर एंड सोंदा उमस्त्रिक 5 यूर के बीच में भाईल हैं और एक बार एम सिपाही ओनर सुख करे हैं और चोरी भैले भैया उतरा पैसा ऊपर से यहाँ बताए गए हैं ऊपर से या खबीर भी चल गए हैं बे इन बराग में से तो ये सब बात है भैया बड़ी मछली मरल है सूरीनाम के रीमा में सरमाका में और ब्रॉन्सवेग बेनलांड से आयल है ब्रॉन रिफीरन से मछली मरमर सब उतरान है गंधात है सूरीनाम देश में भाई तो बताए गए हैगा कि एकर बारे में जो सूरीनाम सबसे खुरुस्तल लंग तरवीरल थे बैना भैया जहाँ पे बोसन है बियोडिफ्रिजाइट है ब्रॉन वाटर है ब्रॉन रिफीरन है और बोले लीफस आदत है लंग स्ट्रोमन खून है बोमन है और बोले इतना मोई खसम देश में इतना मछली मरे है फेस sterf ten Saramaka rivier bole hega hij veel emoties losgelaten mensen losgemaakt janta jo ne bahut soche hai ekar bare mein aur bataye gaye hain maar om hun voedsel, hoe ze hebben drinkwater, cultuur, itra machri maral, bole kaab heil is op mee, te bataye gaye hega, de een noem Kaya Nai, de andere Kwik, bhaiya, jese Sona Saban khoje Kwik, usam Uriba me Saban loost kariwaardun, utra machri maral bhai, bole juist daarom is het goed dat wij, bole NMA kies voor vervuilende onderzoek ke baare, maar bheke Saban onderzoek kari, tulun jano, kitna dheer, Kwik biskout, के द्वारी पर से चोरी भैले एक बारे में कभी ना पता मिलल कि कोई पकड़ान है कि ना पकड़ान है तो दोस्तों terwijl de discussie zich nu vooral richt op onderzoek van deze ene vissterfte dreigt een veel grotere werkelijkheid buiten beeld te raken कि हम लोग के जो रीबा हैं बरिसन से बोले अंदर दृगबा अली शर्मा का रिफीर में मरवैने रिफीर लावा तपन होनी का पनाम में वाटर वेकन वर्धन आल यार लंग इन फ्रू दूर इंटेंसिव खोट विनिंग सोना जोन खोना है जंगल कटा है सब हम लोग के देश के बर्बाद हुए भैया क्विक से सोना से और बोले खोट कोर्स लेवर सेकर इनकमस्टन ऑफ सोनवा मिले है इनकमस्ट आवे है बाकी बोगदम जो एरस्ट हम लोग के फरफेल हुए है खोट का बोले बोस बस्ताद नीत अलीन एट बोमन ओक द बोदम लेफ्ट
Bole, wanneer die jarenlang wordt open gegraven en vervuild, raakt uiteindelijk hele ecosysteem aangezaagd. Water, vissen, dieren, uiteindelijk ook de mensen. Toen itera, ze hebben zo'n gehad in Paisa, gehad hem ook milieu vervuild hebben. Waardoor itera, machrie, pani, machrie, ze mre he. Aur, बताए गए हैं कि हम लोग के जंगल जो है सफर फैल हुए है हमारी जनता। तो हम जाए भैया रुसलान की ओर हम जाए हैं। तो 6 तारीख जुलाई के 9:30 के न्यूज से ओली रफिनाद रही जो रुसलान में बा उक्रेना ड्रोन से फिन दागी से बहुत बड़का स्काद भैले ड्रोन आन खतरोफन इन फंदी ख्रोस्त रफिनाद रही है भी भैया। और बताई गई है कि इतना बसकादक भैले उधर यानी कि रुसलान यानी कि हुआ के जनता के मारे है और इस हुआ के रफिनार रही दागे है कि इतना होगी कि देश में आ तेल ना रहेगी भैया। अनमिलों रही में खड़ा हुई तेल कीने हैं। यह बताए गए हैगा ब्रांस्ट ऑफ क्रिसिस इन रुसलान उक्रेन से ड्रोन अनफालन सोर्खन फॉर ब्रांस्ट ऑफ क्रिसिस इन रुसलान। तो ऐसे बातचीत है हमारी जनता तेल के बारे में रुसलान में इतना हुआ पे प्रॉब्लम है। तो हमारी जनता एगो चिनुआ है अमतनार है ओके दो तरफ मिले चीना देश में दो तरफ चीनीस अमतनार जो 285 मिलियन यूरो शख्स तक चोरी करके पर जेबिन धरे रहा भैया। एगो अमतनार है खमीन तक के करप्सी होके बहुत जबर करी से और बोले फर और दिल फर वीक करप्सी नीखन से तक यार एगो अमतनार है फिंचिनार से अपरे के इतरा फर्रेक कर ले रफिया मख्त मिस ब्रेक से वित वास कर रहा फर्स डाइस्टर कर ले रहा देर तक यार ओम खरीकन है सो ओवर देर प्रियोर फन देर तक यार कर ले रहा भैया। सबन जो रिस 285 मिलियन यूरो हैवन आनखनोमन उत्तरा करप्सी उले से फन फियान 1993 तो 2023 और ओकर फिंसी रहा वर्कशॉप इन द ओस्टलेके स्टार नायंग में खदुरंद देसे प्रोजेक्ट बपाले बदरेफ को कॉन्ट्रैक्ट देवत रहा चुकु लेले कॉन्ट्रैक्ट देवत रहा और बोले ग्रोंड इन फाइनेंसिंग एंड हैवन फर्स्काफ्ट इन रॉयल फॉर गेल्ड एंड ड्यूर स्पिलन एकर बारे में चीनवा के मीडिया लिखी से देखो 69 खमान ही फॉल्कन स्टार्ट चीना डायरी द दो स्ट्राफ का क्रीकन फन वीक द एक्सट्रीम होके वार्डे फन द स्टेक पेरिंगन बोले द बिसोंडर एरेस्ट के ऑब्स्टेंडेगीरन एंड द इनोर्म स्कार्ड दी हेड लॉन्ग हेव टू खबराक मेंसे द चीनवा देश में भी दो स्ट्राफ है भैया। और द रेखबांग हेव ऑब्ड्राफ हेव तो द इंबेस्लागनामे फन अल्ले पर्सनलिक एगेंडोमन फन द मन President Xi Jinping begon na zijn aantreden in 2013 grote anticorruptiecampagne. Veel onderzoeken eindigen met disciplinaire maatregelen. De Suriname kan hij nou hoe ze kennen, maar na niet. Suriname is kooltool een steekpenning leven. Ouderen naar Kali kooltool leven. Bede loog leven. En dan gaan ze nog vrijlopen mensen. Aantje etra steekpenning ze blijven bakken koeike. नसुनियों के लांटी कोई के को बैसी गिरी बसलाख करी से भैया। तो उस सब फ्रय हमद है जब मांगे हैं चोरी करे हैं सब होवे है हमारी जनता। अब देखो बेल्किए डोनाल्ड ट्रंप के देश अमेरिका के जीत गए फिर इन से भैया फुटबॉल में। और जो फुटबॉलर्स बेल्किए के हैं अब अमेरिका अस्काकल हो गए हैं उस सब नाचे है फेल पे जैसे त्रिप नाचे भैया यहाँ बताए गए बल्कि इस इन एक्सेप्ट इन एक्टास अंधिकितो बल्कि इस ना द इन फिर
op de Amerikaanse achtste finale van de WK voetbal met Gael. Op het tijd België. Nachi ze bhaiya hua sab spelers football fell ke America mein jaise Trump Nachi hai to bal ke bare mein bahut hai batayenge dosto aur ya batai hitte set landbouw onder druk maar Nederlandse oogst houdt voorlopig stand mensen hitte bhaiya bahut hitte hai te jo ni sauda pani ya lage hai in Frankrijk is de schade al zichtbaar. Nederland ke alu, piaan, tarwe leken de warmte nog goed te doorstaan, maar de toekomst is onzeker mensen. To ye baat hai, hamari janta, aap log ko ye geet hum sunate hai.

तो दोस्तों एक दो समाचार आपको हम और सुनाएंगे तो अपना प्रोग्राम को हम खत्म कर, तो हम चलते हैं एक दो समाचार और आपको हम सुना दे भैया। सूरीनाम देश की ओर हम फिर जाते हैं और वहां पे भैया सबन जबरदस्त अक्सी करी से गा क्रिमिनालिटेट के बारे में सिपाही और गैल हैगा इस सब काम बोले हैं ढेर सिपाही गैल अक्सी 3 जुली के शुक्रवार के मेरदर लोकांशी परमारी बो में सब गैले हैं लोकांशी राम गुलाम में गैल है चोरन चपाटी के मिस ब्रोय के बके कोई के ना पाई भैया दो हॉट सॉक्ट फरदाख्त से तेंजेस द एक्शन नीट आन खतरोफन। तो ये चीज भैले सूरीनाम देश में असम बिना बेप के बोले बखरोटिंग्स तो कोर्ट एन इन्फ्लेशन टोनन आन दैट द इकोनॉमी नोक आंटेड क्वेट्सबार इस ये बात बोले असम बिना माक्रो इकोनॉमी से सिचुएशन ब्लेव सॉर्कलर फोकस अब होकर स्टास इनकम्स्टेन मार इफेंस इफेंसेंसी खफरा फर्स्टेरखन फन बलगरेके इंस्टिट्यूट के बारे में और जनता हिया बताए गए हैं और सब ताशे हुए तेल सूर के भाई तो जाने हैं का समा खास वेशल नेटवर्क लगाई से तो यहां बतावे का दर्द सबोताचे चार रोज में भइले तेल सूर सीट्स का द एंड खास वेशल नेटवर्क अपलोपन बोले हैं फंडालिस्म भैया सूरीनाम देश में तेल सूर दुलवेट को वर्धन फंडालिस्म इंदिरा गांधी वेक में भइले लिफोर्नो बीक है इसमें भइले हैं टेलीकम्युनिकेशन जी स्टेल सी स्प्रेक फंड सोर वेकन बोले $3,000 के स्काद भाई उस सबके खास वे इस काबल के बारे में और बतावे वे दून वत इस ओस मख्त ले बोले है सब ताचे सब कलने माटे बोले है इंसान मनवेर के में उतरे बफुक थे एक्सी प्लान तेले सी रुबर्कस ऑफ अलर्ट से फरदाख्त अखवितेक इन ओमगेविंग फंड टेलीकॉम फोर्सिटिंगन। ये बात है भैया इस सब का बलवा काट दे हुए है दौर के करीब काबल बताई के नीत अनि दैसेंड डॉलर्स अन हेस्टेल कोस्टर मार ook ongemak voor klanten en vertraging van de ontwikkeling van ons land. De infrastructuur is niet alleen investering van telesuur. Deze kabel waar gewoon kaart de weer bij jou. De kontje te bereiken je. Kuch bereiken nakker bij jou. Toe je baat he. Op de ko ego 25-jarige Amsterdam. Ke admin. Vorige week augustus mee. Nationale monumenten op het dampen klaten open liggen. Again is now. ऊपर कुछ फिर फीस लिख दे ओके सिपाही पकड़ी से और फॉर द रेक्टर लेके ओके चाहेंगे 895 यूरो कॉस्ट भरे के फिर फिया निकारे के फरवेदर कॉस्टन बोले हैगा द प्रो पैलेस्टाइन डेमोस्ट्रेंट स्पोट ऑफ 16 अगस्त में द रोड द फेरफ ऑफ द लूज नेवर अगेन इज नाउ नोइट मेर इज न्यू। तो दोस्तों चीना में नोटवेयर भइल है नोटवेयर इन चीना सीकर 10 मने हुआ मर गए हैं और बताए गए हैगा अन मंगलवार के देशदाग के भइल है ओमखेफे नोटवेयर दैट इन मिडल एंड ज़ाइडन फ्रॉम चीना ट्रेफ्ट इज अनडुइडलक फॉल्क्स द बरिखतन फ्रॉम द स्टार्स स्पेस ब्यूरो यूं हुआ वर्दन द स्टीडन आंगेट्रोफन दोर विंस्टोटन। हमारे प्यारे प्यारे जनता तो हमारा प्रोग्राम खत्म आने को

ट्यून से हम अपना प्रोग्राम को खत्म करते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, नमस्कार, प्यार भरी अदाब, सत श्री अकाल। मिन से तुद फॉलो करने की चोनी नंबर वन है हमारा नाम।

थोड़ा प्यार और थोड़ा प्यार ना करियो तो दोनों मर जाएंगे। ये काम ना करना भैया, ना करना, मरने वाला बात क्यों करते हैं, जीने वाला काम करो। जैसे किताबों बहुत है, किताबों बहुत है, शाहरुख खान और शिल्पा कहते हैं, आओ सुना जाए क्या कहते हैं।

लेकिन सिर्फ किताबों में वही नहीं लिखा है। हाँ, आजकल इंटरनेट पे लोग पढ़ते हैं तो, और उस पे नहीं मिलेगा तो टिकटॉक पे आपको मिल जाएंगे, कारण कि हमारा सोशल मीडिया जो है आज आसमान छू लिया दोस्तों। जवान से बच्चे से लेकर और बूढ़े लोग 24 घंटा हुई टेलीफोन में और फिर सोशल मीडिया पे सब रखते रहते हैं, और तो कोई टिकटॉक बना

आंख जो है अपने टेलीफोन में लगाए रहते हैं, तो कहते हैं कभी कभी दिल भी किसी चुरा लेता है, और जब दिल चुरा लेता है तो आपको क्या करना चाहिए। हम यहां से बताते हैं कि अगर आपके दिल गुम हो गया तो आपको कैसे मालूम होगा कि कैसे गुम हो गया है। और यहां से

सॉन्ग हमने सुना दिया है और हम अपना यानी अगला गीत की ओर जाते हैं। और कभी कभी लोग भूल जाते हैं सपने साजन की में अलका याग्निक और मुकुल अग्रवाल कहते हैं कि कभी कभी भूल जाते हैं लोग। और क्या भूल जाते हैं दोस्तों? यादें भूल जाते हैं।

और मैं भी कभी भूला है और कभी याद करते हैं हमारे जनता, हमारे लिस्टनर्स, हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों, और याद तो करना चाहिए कारण की रेडियो फाउन के माध्यम से इस प्रोग्राम को चलती है, जो हमारा प्रोग्राम दे आप भी प्लस रेडियो पे आप सुन सकते हैं कनाल 5B पे फ्रीक्वेंसी होन द सेसेस इवन द प्रिंसेस फिर तक मेगा हर्ट्ज पर, और नहीं कनाल 8 पे भी आप लोग सुन सकते हैं हमारा प्रोग्राम जो 24 घंटा चलते हैं। हर एक काम के लिए आप हमें तार कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर जो यहाँ के ही कांतोर का है, अमिस्त्रासी का है, 07 3 6 5 2 20 4 7, और नहीं हमारा स्टूडियो नंबर है 07 3 6 2 20 0 7 पर आप लोग हर जानकारी के लिए तार कर सकते हैं। और हम चलते हैं शैलेंद्र सिंह और कंचन की ओर। फिल्म के नाम है रफू चक्कड़ की ओर हम आओ मिलकर इस गीत को सुना जाए।

करते हैं तो अपना आवास उसके साथ, उसके आवास में मिलाना चाहिए हमारे दोस्तों। और जब आवास मिल गया तो उसको भुलाना भी नहीं चाहिए। ये कहते हैं द टाइगर ऑफ इंडिया कुमार शानू और अन्नू अग्रवाल, ये कहते हैं।

कोरा कागज का है, और अगर आपको भी होगा तो किसी के नाम उस पे जरूर लिख देना। उसके बाद हम जाते हैं, जो कोई ओढ़नी ओढ़ता तो बोले हमारी नानी आजी ओढ़े, लेकिन यहाँ ओढ़नी कुछ और बातचीत हो है, जो अलका याग्नि का उदित नारायण आपको सुनाते हैं हमारी यारो।

ओढ़नी ओढ़ के नचियो तो और मोई लगीगा नानी, यही बतिया हमारा जी नानी बोले है। और हम जाते हैं गीत के ओर, हवाओं ने कहा और क्या क्या ने कहा, आओ मिलकर सुना जाए।

चेहरे में वो जादू है, और वो जादू है दोस्तों कि तेरे चेहरे दिखते दिखते और जैसे कोई डोड़ ततई घिजाया है, वैसे हम ओ तो माथी स्टोरी अगर

करते हैं। तो दोस्तों उसके बाद हम चलते हैं आपकी आ जाने से क्या होता है। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम दोस्तों, और आपकी आ जाने से क्या हो जाता है, मोहम्मद अजीज साधना सरगम का गाया हुआ ये सॉन्ग है। फिल्म के नाम है खुद गर्ज, आओ सुना जाए। इसमें गोविंदा काम किए हैं हमारे।

अजानी सी क्या क्या हो जाता है। फिल्म के नाम है खुद गर्ज का, ये जोंग है हमारे यारो। और उसके बाद तो हम प्यार भरी गीतों का प्रोग्राम लेकर और आगे को चलते हैं कि यहाँ पर बताएंगे जाने क्यों लोग, क्या आपको मालूम है कि लोग क्यों मोहब्बत करते हैं। अगर जब मालूम होगा तो आप लोग हमें बता सकते हैं तार करके। और हमारा सीडियो का नंबर है 07 3 6 20 07 7। अगर ये मोहब्बत क्यों लोग करते हैं और क्या आपको भी मोहब्बत हो गया है, अगर ये हो गया हो और नहीं होना है तो बताना। फिल्म के नाम है महबूब की मेहनी नाइटिंगेल, लता मंगेशकर का ये गाया हुआ सॉन्ग है।

जाने क्यों लोग मोहब्बतें और क्या करते हैं। और आपको अगर ये मालूम होगा कि किस लिए लोग मोहब्बत करते हैं तो हमें आप लोग बतला सकते हैं। उसके बाद हम चाहते हैं, ये है यानी कि लता जी इस गीत को गाए, फिल्म के नाम है महबूब का मेहंदी। महबूब का मेहंदी नाइटिंगेल लता जी का गाया हुआ सॉन्ग है। उसके बाद हम एक बार फिर चलते हैं फिल्म धर्मात्मा की ओर। आओ सुना जाए।

प्यार किया है, और अगर ये प्यार किया होगा तो हमें आप लोगों ने जरूर बताना कि कौन सा प्यार आपने किया है हमारे यारों, और अगर जो किया है तो हमें जरूर बताना। उसके बाद हम चलते हैं एक और सॉन्ग की ओर कि अगर ये आपको दीवांगनी होता है तो दीवांगनी कब होता है, जब बहुत बहुत मोहब्बत हो जाता है। फिल्म के नाम है दीवाना, दीवाना फिल्म का नाम है, नीखन दिन तुई नीखन तक का ये फिल्म है, और शाहरुख खान दिव्या भारती इस फिल्म में काम किए हैं। आओ सुना जाए।

पौरुत ऐसा दीवांगनी, और दीवानी किसका होता है, ऐसा दीवांगनी। और दोस्तों शाहरुख खान इस फिल्म में देविया भारती सिंह काम किया है, और अगर परदेसी के बाद जो हो जाए तो परदेसी से दिल लगाने के लिए आपको सोचना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं परदेशियों से अगर ये अखिया लड़ाना है तो ओमा कोई बुरी बात नहीं है दोस्तों, लेकिन बुरी बात ये है कि अगर जब परदेसी को जाना पड़ेगा, जब अगर परदेसी को जाना पड़ेगा तो वहाँ पर प्रॉब्लम तो आ जाएगा ना राजा, कि अब तो सोचना है कि वो परदेसी कब आएगा, फिर से लौट कर वो कब आएगा। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ तक हम आपको कुछ परदेसी की बात बताते हैं, कि परदेसी के गीत हम आपको सुनाते हैं।

और परदेशियों से अखियां मिलाने में कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, लेकिन दिल थाम कर रखना अगर जब परदेशियों को जाना है तो हर किसी को ये सब प्यार कहां होता है दोस्तों, सिर्फ नसीब वालों को होता है। श्रीदेवी फिरोज खान इस फिल्म में काम किया है, आओ मिल के सुना जाए।

और हर किसी को, हर किसी को कहां प्यार मिलता है इस जिंदगी में दोस्तों, सिर्फ नसीब वाला को, नसीब वालों को यानी कि सच्चा प्यार मिलता है हमारे यारों। और उसके बाद हम चलते हैं एक और गीत हो जाए, वो कौन सा गीत है, हम तुम्हें चाहते हैं और कैसे चाहते हैं, दिल लगाकर चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, मनहर उदास का ही गाया हुआ ये सॉन्ग।

और फिल्म कुर्बानी का, फिल्म कुर्बानी का निकाला हुआ ये सॉन्ग है जिसमें विनोद खन्ना सीने तमन ने काम किए है। मन हर उदास का ये सॉन्ग जो आप लोग को हम सुनाए है, बहुत मोहब्बत भरी प्यार भरी सॉन्ग है। इसके बाद हम और चलते हैं फिरोज खान हेमा मालिनी की ओर, आओ सुना जाए।

और तू जान हमारी हो, क्या खूब लगती हो और बड़ी बड़ी चमकल लगती हो। ये एक लव स्टोरी सॉन्ग है, फिल्म के नाम है खलनायक पलके में होके सवार चली रे अलका याग्निक, जिस फिल्म में माधुरी दीक्षित ने काम किया है। आओ सुना जाए इस गीत को।

0: Duidelijk temperatuurverschil in het land tussen het noorden en het zuiden. Terwijl het in het zuiden zo'n 28 graden wordt met veel zonneschijn, blijft het in het noorden bewolkt met lokaal motregen. Daar blijft de temperatuur hangen tussen de 19 en 23 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
1: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07 36 52 47. मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247. कुछ मोहम्मद रफी का बदमाश श्री मोहम्मद रफी का हॉट सॉन्ग और कुछ माइती मुकेश का सॉन्ग आपको हम आज सुनाएंगे आओ बढ़ा जाए सबसे पहला सॉन्ग की ओर हम चलते हैं और वो है माइती मुकेश का ये सॉन्ग है फिल्म के नाम है पूरब और पश्चिम

पूरब और पश्चिम, जिसमें मनोज कुमार ने काम किया है। कितने लोग इस फिल्म को देखकर बहुत प्रसन्न किया है। और फिल्म पूरब और पश्चिम में जिसने माइती मुकेश ने काम किया है दोस्तों। और अगला गीत की ओर हम जाते हैं, वो है परमा श्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ सॉन्ग है प्यार का सागर, जिसमें मीना कुमारी राजेंद्र कुमार ने काम किया है। मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले कौन है, आओ सुना जाए।

और मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले कौन है आपको तो पता है। आज कुछ पद्मश्री मोहम्मद रफी का गाना और नयति मुकेश के गीत से आपको हम सेवा करेंगे हमारे दोस्तों। और दोस्तों जैसे आपको पता है हम चलते हैं फिर से एक फिल्म का नाम है मिलन, जिसमें नयति मुकेश ने इस सॉन्ग को गाया है नी खती जीवन शस्त्र का। ये गीत है मैं तो दीवाना दीवाना और दीवाना लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का और ये सॉन्ग है।

और जब से तुम्हें हमने देखा है, अगर ये आपको हमने जब से देखा है तो सिर्फ आंखों में कौन है, तुम ही तुम हो। तो दोस्तों तो अगला गीत की ओर हम बढ़ते हैं, तो हम तरुण जाते हैं ओल्ड इन गोल्ड जोंग, और है मध्य मुकेश ए नाइटिगेल लता मंगेशकर का ये जोंग है। फिल्म के नाम है हम तो तेरे आशिक है, हम तो तेरे आशिक है। और देखो क्या गाया है।

Oude movieke naam, he dosto, vars 1967 agit. Ban ma janiki, mainti mukis, au naiti gil, taji ka song he, ham to tiri, aanchik he, song ka naam he dosto. Aur aap jante he, aanch ham aapko kuchi karenge, aur wo he, dal mensen di, fan liters van mainti mukis en Mohammed Rafi, par ma shri Mohammed Rafi ko geet ko pasand karte, aap sab ke liye, aanch aapko hum moka deti he, ki ye dono ko geet aap suniye, to hum chalte he, ab बारी है अब की बारी है परमात्मा श्री मोहम्मद रफी और आशा जी भी साथ में हैं मूवी का नाम है

आओ तुझे देख के और दीवाना हुआ बादल। परमा श्री मोहम्मद रफी आशा भोसले का ये गीत है, मूवी के नाम है कश्मीरी, कश्मीर की कली दोस्तों, जिसमें शमी कपूर और शर्मिला टैगोर ने काम किया है हमारे दोस्तों। उसके बाद तो हम चलते हैं अगला गीत की ओर, वो भी है, वो है मधु मुकेश का ये सॉन्ग है और इस फिल्म में मनोज कुमार ने काम किया है। फिल्म के नाम है हिमालय, हिमालय की गोद में, हिमालय की गोद में माला सिन्हा और मनोज कुमार ने काम किया है। मैकी मुकेश का एक टॉप सॉन्ग यहां से हम चलाते हैं।

मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर रहे। ख्वाब से कहाँ प्यार करते हैं लोग, ख्वाब में रोक सिर्फ ख्वाबों में गुम रहते हैं। तो मुकेश की बात में आओ हम चलते हैं पद्माश्री मोहम्मद रफी की और हम जाते हैं दोस्तों। और आशा जी इस गीत में काम किया, ओल्ड इज गोल्ड क्लासिक सॉन्ग। और ये मेरे हाथ में तेरे हाथ, जिस फिल्म में शर्मिला टैगोर ने काम किया है दोस्तों, मूवी के नाम है कश्मीर की कली।

फाहम के हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ये कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 6 20 6 9 8 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम स्वयं हैं। खुद को समझ लीजिए, सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं हूँ आपकी सेविका बबली आसरा। प्रोग्राम की शुरुआत करने जा रही हूँ जिसका नाम है स्वप्न। सपने, सपने हमें क्यों आते हैं, सपने हम क्यों देखते हैं और उन सपनों का मतलब क्या है, इस सब विषय के बारे में आप

स्वप्न विश्लेषण, स्वप्न की परिभाषाएं, यानी सपने कितने प्रकार के होते हैं और उसकी क्या परिभाषा है। भारतीय मत, जागृत अवस्था में हुए संस्कारों से उत्पन्न ज्ञान अवस्था का नाम ही स्वप्न है। जब हम जाग रहे होते हैं तो जो चीज़ें हम देखते हैं और जब सो जाते हैं और जो चीज़ें हमें दिखाई देती है उसी को हम सपना या स्वप्न कहते हैं। आरसत्तु, स्वप्न नींद के समय का मस्तिष्क का जीवन है। जो आरसत्तु एक बड़े वैज्ञानिक हुए हैं उनका मत है कि स्वप्न नींद के समय हमारे मस्तिष्क का जीवन है। ब्रिज, अवस्था शारीरिक परिणाम ही स्वप्न है। जब हमारा शरीर काम नहीं करता और हम नींद में होते हैं उसी को स्वप्न कहा जाता है। फ्राइट, नींद में मन पर क्रिया करने वाले उद्दीपकों को उनके ऊपर होने वाली प्रतिक्रिया ही स्वप्न है। कि जब नींद में होते हैं और हमारे अंदर सारी चीज़ें मस्तिष्क में चल रही होती हैं और उसी को स्वप्न का नाम दे दिया जाता है। डायलॉग आलिस, जागृत अवस्था में जिन लक्षणों के कारण सर्वाधिक प्रबल रूप में कर्ता प्रभावित होता है उस अवस्था की पूर्ण प्रवृत्ति ही स्वप्न है। स्वप्न हमारे नरक और स्वर्ग की ओर प्रवृत्त होने का बैरोमीटर है। स्वप्न दर्पण है चित्त की दशा का। ना होगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, वासना का प्रतिबिंब ही स्वप्न है। सर्वप्रथम स्वप्न ब्रह्मा जी ने देखा था। 33 देवों ने स्वप्न को शक्ति प्रदान की। स्वप्न तत्व, जिन व्यक्तियों के देह में पृथ्वी तत्व की मात्रा अधिक होती है उनका बाह्य आवरण थोड़ा कठोर, हड्डियां मजबूत और देह पर बालों की भरमार होती है। पृथ्वी तत्व तपोगुण प्रधान होता है, इसलिए ये जातक अधिक आलसी, अधिक सोने वाले, शीघ्र डर जाने वाले, देर से निर्णय लेने वाले, दीन स्वभाव वाले, अधिक मीठा खाने वाले तथा अधिक स्वप्न देखने वाले होते हैं।

सुनने वालों, अभी तक आपने सुना कि स्वप्न की परिभाषा क्या है। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। मन तथा स्वप्न, ये मन कभी निष्क्रिय नहीं बैठता, कुछ ना कुछ चिंतन करता ही रहता है। स्वप्नों के विश्लेषण का कोई वैज्ञानिक नियम भी नहीं होता। लिंग, स्वभाव, वातावरण की प्रतिकूलता के अनुसार एक ही प्रकार के स्वप्न विभिन्न व्यक्तियों पर विभिन्न प्रकार के प्रभाव डालते हैं। सुनने वालों देखो ना, जैसे हम सपने लेते हैं तो जैसे जिसका स्वभाव होता है उनके सपने भी अलग अलग होते हैं, व्यक्तियों पर विभिन्न प्रकार के प्रभाव डालते हैं। विभिन्न जातियों और देशों के लोग एक ही प्रकार के स्वप्नों की व्याख्या अपनी अपनी धारणाओं के अनुसार अलग अलग प्रकार से करते हैं। स्वप्न का कोई ठीक और निश्चित कारण नहीं बताया जा सकता। अंतःकरण में संस्कारों का जो समूह एकत्र रहता है उसी में से किसी एक या अनेक का चित्र शुद्ध अथवा विकृत रूप में हमारे सम्मुख उपस्थित हो जाता है। संस्कार अथवा चिंतन निकट वर्तमान कालीन अथवा दूर भूतकालीन भी हो सकता है। कुछ स्वप्न ऐसे भी होते हैं जो भविष्य में घटित होते देखे गए हैं। काम स्वप्नों का अंतिम फल वही होता है जो जागृत अवस्था में किए जाने वाले विषय भोग का होता है, और इसको स्वप्न दोष कहते हैं, जो एक रोग होता है।

सुनने वालों, अभी आप लोगों ने सुना स्वप्न की परिभाषा। अब हम आगे बढ़ते हैं। फल समय, स्वप्नों के फल पर विचार करते समय सर्वप्रथम यह बात देखी जाती है कि स्वप्न रात्रि के या दिन के सोते समय किस भाग में देखा गया है। दिन में देखे गए स्वप्न सर्वथा अविश्वसनीय माने जाते हैं। रात्रि के समय उत्तरार्ध में देखे जाने वाले स्वप्न अधिक विश्वसनीय होते हैं और चौथे पहर में ब्रह्म मुहूर्त के निकट काल में देखे गए स्वप्न सच्चे होते हैं। रात्रि के चार पहर में देखे गए स्वप्न इस प्रकार फल देते हैं। ये तो आप सब लोग जानते हो सुनने वालों कि जब हम दिन में सपने देखते हैं वो ज़्यादा सच नहीं माने जाते, और जब रात को सपने देखते हैं उनको ही हम लोग सच मानते हैं या सोचते हैं कि वो सपने ही ठीक हैं। और उसके चार पहर बताए गए हैं, जो है पहला पहर के सपने एक वर्ष में, दूसरे पहर के सपने छः मास में यानी छः महीने में, तीसरे पहर के सपने तीन मास में तीन महीने में, चौथे पहर के एक मास में यानी एक महीने में, और प्रभात के सपने तत्काल यानी प्रभात सुबह के जो सपने हम देखते हैं वो हमें तत्काल उसी समय दिखाई देते हैं।

सुनने वालों, अब हम आगे बढ़ते हैं। किसी कार्य की सिद्धि असिद्धि स्वप्न में देखना, कि जैसे हम में सपने जो आते हैं उनमें सिद्धि क्या है और सिद्धि क्या है, अच्छा क्या है और बुरा क्या है। शैया पर बैठकर ओम हील हील शून पणे स्वाहा मंत्र का 108 बार जाप करके भगवान शंकर से प्रार्थना करें कि हे भगवान, हे देवे दवेश, हे शूलधारी, हे वृषध्वज, मैं सोता हूँ या सोती हूँ, मेरे कार्य में सिद्धि असिद्धि में कुछ भी फल हो उसे कृपा करके स्वप्न में कहिए। मैं आपकी शरण में हूँ, आप अजम्मा त्रिनेत्र ऐसे वाम विश्व रूप आप स्वप्न के अधिपति को मेरा नमस्कार है। इस मंत्र को एक बार जाप कर और पूर्व की ओर सिर करके दाहिनी करवट के बल शयन करें और स्वप्न की प्रतीक्षा करें।

सुनने वालों, अब हम आगे बढ़ते हैं। सोने पर फल नाश। जो व्यक्ति स्वप्न देखकर फिर सो जाता है, वह मनुष्य स्वप्न से मिलने वाले शुभ अथवा अशुभ फल का भोगता नहीं होता। इसलिए शुभ स्वप्न दिखने पर बुद्धिमान पुरुष को पूर्ण नहीं सोना चाहिए और शेष रात्रि जागकर ईश्वर आराधना करते रहना चाहिए। यदि कोई पहले अशुभ स्वप्न देखे तो बाद के शुभ स्वप्न के फल को ही पाता है। बुरे स्वप्न को देखकर यदि व्यक्ति सो जाए अथवा रात्रि में ही किसी से कह दे तो बुरे स्वप्न का फल नष्ट हो जाता है, अथवा प्रातःकाल उठकर भगवान शंकर को नमस्कार कर स्वप्न फल निवृत्त के लिए प्रार्थना कर तुलसी के पौधे को जल देकर उसके सम्मुख स्वप्न को कहें अथवा अपने गुरु को स्मरण करें, तब भी बुरा स्वप्न का नाश होता है। आप तो जानते हैं कि जब हमें बुरे सपने आते हैं तो हम एक दूसरे से सुबह उठ के बातचीत करते हैं कि रात को हमने ये सपना देखा। सुनने वालों, जब हम अपना बुरा सपना किसी को बता देंगे, किसी से बातचीत कर लेंगे तो मन को एक तसल्ली मिलती है।

सुनने वालों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बताते हैं कि स्वप्न तथा माया। स्वप्नों के गीत सदा अधूरे नहीं रहते, पूरे भी हुआ करते हैं। यानी कि जो हम सपने देखते हैं वो कभी अधूरे नहीं रहते, कभी कभी सच भी होते हैं सपने। ऐसी बात नहीं है सुनने वालों।

जो अपना होता है वह कभी सपना हो जाता है और जो सपना होता है वह कभी अपना हो जाता है। एक प्रसिद्ध पाश्चात्य विचारक फरियाड के अनुसार स्वप्न हमारी दबी हुई इच्छाओं का प्रकाशन मात्र है, विशेषता हमारी वह इच्छाएं जो समाज के भय से जागृत अवस्था में पूर्ण नहीं हो पाती स्वप्न में साकार हो जाती हैं। ये तो आप सब जानते हैं सुनने वालों, कई बार हम सोचते हैं कि हमारा ये काम हो जाए वो काम हो जाए लेकिन नहीं हो पाता, और वही चीज़ें कई बार हमारे दिमाग में घूमती हैं और वे सपना बनके हमें दिखाई देने लग जाती हैं।

हृदय में दबी हुई प्रत्येक वासना स्वप्न में पूर्तिमान होकर अनेक कर्तव्य दिखाती है, किंतु उनके यह विचार एकांगी तथा अश्मातक ही ठीक है। स्वप्न की अपनी एक सांकेतिक भाषा होती है, जिसे समझने के लिए

विशेष प्रकार की शब्दावली होती है। कोई दिव्य शक्ति मनुष्यों को स्वप्न के माध्यम से उनके शुभ या अशुभ भविष्य के विषय में सूचना दिया करती है। कुछ उन्हें अपनी चैतन्य आत्मा की शक्ति से प्राप्त सूचना बतलाते हैं। व्यक्ति को जब निद्रा आती है, यानी जब हम सो जाते हैं, तो उनका मन सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर जाता है। हमारे जन्म जन्मांतरों का इतिहास लिखा रहता है। हमारे शरीर में एक ऐसी नाड़ी होती है जिसमें हमारे जन्म जन्म का इतिहास लिखा रहता है। ऐसा केवल आत्मा की शक्ति के कारण ही संभव है, जो अजर अमर है। सभी जानते हैं सुनने वालों की हमारी जो आत्मा है वो तो अजर और अमर है। ये शरीर ही हम लोगों का अरे मर जाता है तो, और इसीलिए किसी प्रकार नष्ट नहीं होती। मानव देह में उपस्थित जीव आत्मा विश्वव्यापी परमात्मा की शक्ति का ही एक अंश है। उसका कभी नाश नहीं होता और वह पुराने जन्मों के संस्कारों को लेकर नए नए शरीरों में प्रकट होती रहती है। पूर्व जन्म के जो संस्कार बहुत बलवान हो और जिनकी जड़ें बहुत गहरी हो, वह इस पर जन्म में अनुकूल परिस्थितियां पाने पर पुनः याद आ जाते हैं और क्रियाशाली हो जाते हैं। जैसे हम जन्म जन्म से जन्म लेते रहते हैं और हमारी आत्मा तो अजर अमर है और उसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि जब हम दोबारा जन्म लेते हैं कई बार वो हमारे साथ ही रहती हैं।

सुनने वालों, अब हम आगे चलते हैं। डॉक्टर कलीटन का कहना है कि नींद में जितनी गहरी होगी स्वप्न उतने ही जीवन से जुड़े होंगे। एक बहुत बड़े डॉक्टर हुए हैं कलीटन मन, उनका कहना है कि स्वप्न हम जितनी गहरी नींद लेंगे सपने उतने ही जीवन से जुड़े होंगे। स्वप्न देखना भी सांस लेने जैसी स्वाभाविक क्रिया है। नींद की गहराई पूरी रात सार्थक स्वप्न ना देखकर 2 घंटे के लिए ही आती है, और सारी रात सार्थक स्वप्न ना देखकर यह अनुभूतियां बहुत थोड़े समय के लिए होती हैं। अस्त व्यस्त स्वप्न अधिकतर खाने की गड़बड़ी या मादक पदार्थों के सेवन के कारण आते हैं।

सुनने वालों, अब हम आगे चलते हैं। अब हम जिक्र करेंगे तुल्य व्यवस्था। इसका मतलब है कि जो साधक, जो आदमी जागृत, स्वप्न और सुषुप्त, इन तीनों अज्ञान अंधकार की अवस्थाओं को पृथक रूप से जान लेता है, वह ज्ञान और प्रकाश की तुल्यावस्था में प्रवेश पाता है। भगवान कृष्ण का गीता में योगी का रात्रि में भी जागते रहते रहने का संकेत इस अवस्था की ओर ही है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो योगी रात को जागते हैं, ये संकेत उन्हीं की ओर है। उसमें चेतना का पूर्ण जागरण होता है, सारा अंत जगत प्रकाशित हो उठता है, अंत ज्योति से जगमगा उठता है, ऐसी महाज्योति जलने लगती।

यही चमत्कारों का चमत्कार है। आप परमात्मा ही हो जाते हो क्योंकि परमात्मा चेतना का सागर है, पूर्ण जागृति का प्रतीक है। इस पूर्ण जागृति की अवस्था को ही बुद्ध तत्व और शिव तत्व कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति के सभी दुख विसर्जित हो जाते हैं।

सुनने वालों, यह है फाहन हिंदुस्तानी रेडियो और इसमें आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्वप्न विज्ञान। ये इसका विषय है स्वप्न विज्ञान कि हमें सपने क्यों आते हैं और सपने हम क्यों देखते हैं और उनका मतलब क्या है। और आज मैं आपको स्वप्न की परिभाषा बता रही हूँ। हम आगे चलते हैं सुनने वालों। निष्फल स्वप्न, निष्फल स्वप्न की जिन सपनों का कोई मतलब नहीं होता, शारीरिक एवं मानसिक कारणों के बिना जो स्वप्न दिखेगा उसका ही फल प्राप्त होगा। निरोगी एवं प्रसन्न मन स्थिति में देखा गया स्वप्न भावी घटना का संदेश देता है। विकार रहित मन में दिखाई देने वाला स्वप्न ही उसके लिए उपयोगी होता है। विकार ग्रस्त मन में आया स्वप्न निष्क्रिय होता है। स्वयं स्वप्न देखने की इच्छा मन में ना हो उसके लिए कोई विशेष प्रयास ना किया गया हो एवं ना सार्गिक रूप में स्वप्न दिखे, तत्प्राय यह है कि स्वप्न पर किसी का वश नहीं चलता, मैं निद्रा अवस्था में अवश्य ही दिखाई देता है।

वालों, अब हम आगे चलते हैं। फल संपन्न स्वपन, कि जिन सपनों का फल हमें मिलता है या मिलने वाला है तो उसकी ओर हम बढ़ते हैं। इस उक्ति के अनुसार बिना प्रयास के मनुष्य को स्वप्न दिखाई देता है, ऐसे स्वप्नों का कारण अवश्य ढूंढना चाहिए। स्वप्न देवी सत्ता के अधीन होने से उसमें गलतियों का परिणाम भी कम होगा। ऐसे कारणों के लिए भी सपनों का सहारा निसंचोक रूप में ली, जिसकी जैसी भावना हो वैसा ही फल उसे प्राप्त होगा, यह सिद्धांत समीक्षी होता है। सुनने वालों, आप सबको पता है कि हम हमेशा सपने में जो चीज़ें देखते हैं वो कभी सच होती हैं, कभी सच नहीं होती, ये तो बात है। आज मैंने आपके लिए थोड़ी सी सपने की परिभाषा बताई है कि जो 10

सुनने वालों, आज मैंने आपके सामने स्वप्नों की परिभाषा रखी और आपको कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें तो जरूर प्राप्त हुई होंगी। अगली बार हम फिर मिलेंगे, आगे अपना प्रोग्राम बढ़ाऊंगी अगली बार और सपनों के बारे में कुछ और जानकारी आपको प्राप्त होगी। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं हूँ आपकी सेविका बबली।

0: वक्रतुंडा महाकाया सूर्यकोटी संप्रभा निर्विधिनम कुरु मे देवा सर्वकार्यशु सर्वदा। रुब्ररू मिलने का मौका नहीं पा रहा अथ शब्दों से अपनों को नमन कर लेता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में श्रेष्ठ होता है, इसलिए आपकी श्रेष्ठता को हृदय से नमस्कार करता हूँ। फाहुन रेडियो के सभी सुनने वालों को हार्दिक से अभिनंदन करता हूँ और हम सब यहाँ उपस्थित हो गए हैं कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश लेकर। ज्योति का प्रकाश में आज कुछ संदेश रखा जाएगा, जिसमें अनुराधा जी अपना संदेश रखेंगे, बबली जी और शांता जी और मैं खुद भी आपके साथ जुड़ा हूँ। हम अपने कोलेखा साथी शांता जी को आग्रह करेंगे कि अपना एंट्री ले।
1: तो यहाँ से शांता की तरफ से आप सभी को हार्दिक से स्वागत है आज इस ज्योति का प्रकाश के

0: दूसरा साथी बबली आसरा जी भी उपस्थित है।
1: हमें हर संबंध को समय देना चाहिए, क्या पता कल हमारे पास समय हो पर संबंध ना हो। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार।
0: सुनने वालों, हम वही गीत की ओर बढ़ेंगे जो हर सप्ताह हम सब चलाते आए हैं कि तेरा राम जी करे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डड़े।

0: करे बेड़ा पार उदासी मन काहे को डरे। सुनने वालों, हमारे कुलेखा साथी अनुराधा जी भी हमारे साथ टेलीफोन से और जुड़ गए हैं। अनुराधा जी, मैं आपको और जो अचानक मिला रहे हैं, और आप अपना संदेश रखिए।
1: सुनने वालों को अनुराधा का बहुत बहुत नमस्कार, और मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छी तरह से होंगे। अभी माँ शिवरात्रि का महापर्व मनाया गया। इस दिन फिर से मंदिरों में जगमग जगमग सहस्त्रों ज्योतियां जली, अनहद घंटों की ध्वनि गूंजी, शिवलिंगों पर जल अर्पित हुआ, हर हर महादेव ओम नमो शिवाय आदि मंत्र गूंजने लगे। इस तरह वातावरण शिवमय हुआ। भोलेनाथ का यह महापर्व हमें केवल भारी ज्योतियां दिखाने, भारी घंटियां सुनाने या केवल भारी मंत्रों का उच्चारण मात्र व जलाभिषेक अर्पित करने के लिए नहीं आता, बल्कि हमें देवाधिदेव महादेव की श्वाश्वत ज्योति, अनहद नाद और भीतरी अमृत के अनुभव से जोड़ने आता है। यह महाशिवरात्रि का जो पर्व आया, भारी मंदिर की पूजा ही नहीं, अंत जगत के अलौकिक मंदिर का साधक बनाने ही आता है। शिव की महिमा मनाने ही नहीं, बल्कि शिवत्व को जानने और उसमें स्थित त्वच ज्ञान का बोध कराने ही भी आता है। शिवरात्रि में शिव की पूजा की जाती है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी। शिव ने सृष्टि के कल्याण, इस दुनिया के कल्याण के लिए ही समुद्र मंथन से उत्पन्न विश्व को अपने कंठ में उतारा और नीलकंठ बन गए। शिव को जो कल्याण करने का भाव है, वही शिव तत्व कहलाता है। शिवोहम का उद्देश्य वही व्यक्ति कर सकता है जो अपने भीतर इस शिवत्व को धारण कर लेता है, उसे अपने आचार व्यवहार में उतार लेता है। महाशिवरात्रि का जो पर्व उत्सव मनाया गया, उसमें शिव की उपासना तभी सार्थक होती है जब हम दूसरों के कल्याण के लिए विष पीने को तैयार रहें, अर्थात दूसरे के कष्टों के निवारण व सहयोग के लिए तत्पर रहें, हमेशा तैयार रहें, दूसरों की सहायता करने के लिए तैयार रहें। इसी तरह

शिव की आराधना इसी प्रकार सच्चे दिल से किया करें, क्योंकि सही मायने में कल्याण या त्याग के भाव से ही तो शिव प्रसन्न होंगे। भगवान शिव ने देवी पार्वती को समय समय पर कई ज्ञान की बातें बताई हैं, जिनमें मनुष्य के सामाजिक जीवन से लेकर पारिवारिक और वैवाहिक जीवन की बातें शामिल हैं। भगवान शिव ने देवी पार्वती को 5 ऐसी बातें बताई थी जो हर मनुष्य के लिए उपयोगी हैं, जिन्हें जानकर उनका पालन हर किसी को करना ही चाहिए। चलिए जानते हैं ये कौन सी 5 बातें हैं जो इतनी महत्वपूर्ण हैं। क्या है सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा पाप? तो पहली बात यही है, प्रश्न यही है, क्या है सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा पाप क्या होता है? देवी पार्वती के पूछने पर भगवान शिव ने उन्हें मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा धर्म और अधर्म मानी जाने वाली बात के बारे में बताया है। भगवान शंकर कहते हैं, तो जो श्लोक उन्होंने बोला, नास्ति सत्यात् परो नार्थ तात पातंग परम, उन्होंने अर्थ इसका मतलब यह है, मनुष्य के लिए सबसे बड़ा धर्म है सत्य बोलना या सत्य का साथ देना, और सबसे बड़ा अधर्म है असत्य बोलना या उसका साथ देना। इसीलिए हर किसी को अपने मन, अपनी बातें और अपने कामों से शामिल करना चाहिए जिनमें सच्चाई हो, क्योंकि इससे बड़ा कोई धर्म है ही नहीं। असत्य कहना या किसी भी तरह से झूठ का साथ देना मनुष्य की बर्बादी का कारण बन सकता है। तो चलिए जाने कि ये दूसरी बात कौन सी है। दूसरी बात यह है, काम करने के साथ इस एक और बात का रखें ध्यान, तो कौन सी बात है और जो श्लोक क्या है? श्लोक का है, श्लोक इस प्रकार है, आत्म साक्षी भवे नित्य मात मनुस्तुति शुभा शुभे, अर्थात मनुष्य को अपने हर काम का साक्षी यानी गवाह खुद ही बनना चाहिए, चाहे फिर वह अच्छा काम करे या बुरा। उसे कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि उसके कर्मों को कोई नहीं देख रहा है। कई लोगों के मन में गलत काम करते समय यही भाव मन में होता है कि उन्हें कोई देख नहीं रहा है, और इसी वजह से वे बिना किसी भी डर के पाप कर्म करते जाते हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और ही होती है। मनुष्य अपने सभी कर्मों का साक्षी खुद ही होता है। अगर मनुष्य हमेशा यह एक भाव मन में रखेगा तो वह कोई भी पाप कर्म करने से खुद ही खुद को रोक लेगा। चलिए जानते हैं ये अब तीसरी बात कौन सी है। तो तीसरी बात यह है, कभी ना करें ये 3 काम करने की इच्छा। ये कौन से काम करने की इच्छा बात की जा रही है? तो श्लोक ऐसे जाता है, मनसा कर्मणा वाचा नच कान क्षेत्र पात कर्म, अर्थात इसका अर्थ यह है, आगे भगवान शिव कहते हैं कि किसी भी मनुष्य को मन, वाणी और कर्मों से पाप करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य जैसा काम करता है उसे वैसा फल भोगना ही पड़ता है। यानी मनुष्य को अपने मन में ऐसी कोई बात नहीं आने देना चाहिए जो धर्म ग्रंथों के अनुसार पाप मानी जाए, जो सही ना हो। ना अपने मुंह से कोई ऐसी बात निकालनी चाहिए और ना ही ऐसी कोई काम उन्हें करना चाहिए जिससे दूसरे को कोई परेशानी या दुख पहुंचे। पाप कर्म करने से मनुष्य को ना सिर्फ जीवित होते हुए इसके परिणाम भोगना पड़ते हैं, मरने के बाद नरक में भी यातनाएं झेलना पड़ती हैं।

चलिए अब जानते हैं ये वो चौथी बात कौन सी थी जो शिवजी से पूछी गई। सफल होने के लिए ध्यान रखें, ये एक बात संसार में हर मनुष्य को किसी ना किसी मनुष्य वस्तु या परिस्थिति से आसक्ति यानी लगाव होता ही है। लगाव और मोह का ऐसा जाल होता है जिससे छूट पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इससे छुटकारा पाए बिना मनुष्य की सफलता मुमकिन नहीं होती, इसलिए भगवान शिव ने इससे बचने का एक उपाय बताया है। तो ये चौथी बात हमें पता चलती है कि शिव जी ने इसका क्या उपाय बताया है। श्लोक इस प्रकार है, दोष दर्शी भवेत्रत यत्र स्नेह प्रवर्तते अनिष्टे नाश विन्तम पश्चेत यथा शिवप्रम विर्जयते। अर्थात इसका अर्थ यह है, भगवान शिव कहते हैं कि मनुष्य को जिस भी व्यक्ति या परिस्थिति से लगाव हो रहा है या हो रहा हो जो कि उनकी सफलता में रुकावट बन रही हो, मनुष्य को उसमें दोष ढूंढना शुरू कर देना चाहिए। सोचना चाहिए कि यह कुछ पल का लगाव हमारी सफलता का बाधक बन रहा है। ऐसा करने से धीरे धीरे मनुष्य लगाव और मोह के जाल से छूट जाएगा और अपनी सभी कामों में सफलता पाने लगेगा। चलिए जानते हैं वह पांचवी और आखिरी बात कौन सी है। यह एक बात समझ लेंगे तो नहीं करना पड़ेगा दुखों का सामना। ये कौन सी बात है? तो इसका श्लोक ऐसे जाता है, नास्ति तृष्णा सम दुखम नास्ति त्याग सम सुखम सर्वान कामन परित्यज्य ब्रह्मा भुवाय कल्पते। अर्थात इसका अर्थ यह है, आगे भगवान शिव मनुष्यों को एक चेतावनी देते हुए कहते हैं कि मनुष्य की तृष्णा यानी इच्छाओं से बड़ा कोई दुख नहीं होता और इन्हें छोड़ देने से बड़ा कोई सुख नहीं है। मनुष्य का अपने मन पर वश नहीं होता, हर किसी के मन में कई अनावश्यक इच्छाएं होती हैं और यही इच्छाएं मनुष्य के दुखों का कारण बनती हैं। जरूरी है कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं में अंतर समझे और फिर अनावश्यक इच्छाओं को त्याग करके शांत मन से जीवन बिताए। तो मैं आशा करती हूँ कि भगवान शिव ने माता पार्वती को बताए थे जीवन के ये पांच रहस्य जो बताए गए, वो आप अपने जीवन में इनको उतारेंगे और इनका उच्चारण करेंगे और एक अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे, अच्छा मनुष्य अच्छा इंसान बनने की कोशिश करेंगे। आशा करती हूँ ये आपको पसंद आया हो।

0: अरे भाई कहाँ जा रहे हो?
1: मंदिर जा रहा हूँ।
0: मंदिर तो बंद है, मंदिर पूरे एक साल बाद खुलेगा।

0: प्यारे प्यारे सुनने वालों, आपको हार्दिक से स्वागत है यहाँ पर एक बार फिर से। और इस बार एक प्रश्न हम मेरे साथ की गई है और वो प्रश्न मैं आपके पास भी रख रही हूँ। और उसके बाद ये बात है कि कौन सी धातु के बर्तन में भोजन करने से क्या क्या लाभ और हानि होता है। यानी कि बर्तन आप तो जानते हैं, बर्तन यानी बर्तन जिसमें हम भोजन करते हैं, और इसमें बर्तन कई प्रकार के होते हैं। तो उसके बारे में हम बबली जी से गुजारिश है कि बबली जी आप बताओ कि कौन कौन सा बर्तन में, किस किस प्रकार के बर्तन में खाने से क्या हानि हो, क्या लाभ है।
1: हाँ जी, जरूर शांता जी। बर्तन भी कई प्रकार के होते हैं शांता जी, जैसे सोने के बर्तन,
0: अच्छा,
1: चांदी के, कांसा, तांबा, मिट्टी
0: जी,
1: और भी वगैरह वगैरह।
0: हाँ, पोर्सेलेन।
1: हाँ जी,
0: पोर्सेलेन वो भी मिट्टी के बनता है।
1: पोर्सेलेन वो कौन सा?
0: पोर्सेलेन जो हम घर पे आजकल भी यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जो कांच घट होते हैं।
1: ओ,
0: वो
1: अच्छा।
0: सफेद वाला।
1: ओ, अच्छा अच्छा
0: जी। हाँ,
1: सफेद प्लेटी वगैरह जैसे
0: जी।
1: अच्छा, तो मैं शुरू करती शांता जी।
0: बिल्कुल, हम तैयार हैं सुनने के लिए, साथ में हमारे सुनने वालों भी।
1: हाँ जी, सोने के बर्तन शांता जी।
0: सोने के बर्तन?
1: हाँ जी,
0: सोने की बर्तन।
1: हाँ, सोना कह सकते हो। सोने, सोना एक बर्तन हो गया। सोने सब प्रकार के बर्तन, बहुत सारे,
0: बहुत सारे।
1: हाँ जी,
0: और सोने भी तो, नींद लेना भी है सोने।
1: हाँ, वो भी सोना। सही बात।
0: पर वो बर्तन नहीं।
1: नहीं नहीं नहीं, नहीं।
0: बर्तन के बात हम करते हैं। हाँ
1: हाँ, हर चीज के दो दो मतलब निकल जाते हैं। तो हाँ जी, जैसे सोने के बर्तन शांता जी, सोना एक गर्म धातु है। सोने से बने पात्र में भोजन बनाने और करने से शरीर के आंतरिक और बाहरी दोनों हिस्से कठोर, बलवान, ताकतवर और मजबूत बनते हैं। और साथ साथ सोना आंखों की रोशनी बढ़ाता है।
0: अब सोना के बर्तन में खाने से इतना लाभ।
1: हाँ जी, और सोने के बर्तन तो ज्यादातर अमीरों के, राजे महाराजों के पास ही होंगे।
0: अभी हो सकता है, हो सकता है, और हालांकि हम भी बना सकते हैं।
1: सोने के बर्तन मैंने कम देखे शांता जी।
0: हाँ, बनवा सकते हैं।
1: हाँ, बनवा सकते हैं। हाँ, वो कौन सी बड़ी बात है, बनवा सकते हैं
0: जी।
1: लेकिन मैंने कमती देखा है कि लोग सोने के बर्तन में खाना बनाते हैं और खाते हैं।
0: सही है, तो सही। हाँ,
1: आप जानते हैं शांता जी, भी पिछले घर की भारत के एक बड़े बिजनेसमैन
0: जी, बड़े बिजनेस
2: मेरी ओर देख रहे हो तो मैं अंबानी जी का याद
0: जी, अंबानी जी।
1: हाँ जी, अंबानी जी की बेटी की शादी हुई
0: जी,
1: और इतने लोग आए, हम जानते नहीं थे। हमारे बेटे ने बताया कि आपको पता है उनकी बेटी की शादी हुई, सारे फिल्म स्टार, बड़े बड़े राजा महाराजा। हमने कहा हम नहीं जानते।
0: बेटी की या बेटा?
1: बेटी की भी हुई है, बेटे की भी हुई है।
0: अच्छा।
1: थोड़े फर्क है, थोड़े दिनों का।
0: जी जी जी।
1: हाँ जी, तो अमीरों की अमीरी बात है, तो जितने अमीर उतना खर्चा। अच्छा, हम आगे बढ़ते शांता जी। चांदी के बर्तन। चांदी एक ठंडी धातु है जो शरीर को आंतरिक ठंडक पहुंचाती है, शरीर को शांत रखती है। इसके पात्र में भोजन बनाने और करने से दिमाग तेज होता है, आंखें स्वस्थ रहती हैं, आंखों की रोशनी बढ़ती है। और इसके अलावा पित्त दोष, कफ और वायु दोष को नियंत्रित रहता है।
0: चांदी के बर्तन खाने में।
1: हाँ,
0: चांदी के बर्तन में खाने से
1: खाना बनाना और खाना,
0: ओ, बनाना भी,
1: दोनों चीजें।
0: अच्छा, चांदी के बर्तन में हमने देखे गुरुजी उसमें भोजन करते थे, चांदी के बर्तन, चांदी के गिलास, एकदम से अलग जी।

0: हाँ, जो आपने सुने बर्तन के बात हो रहे है और हमारे मेंग पैनल के पीछे बैठ रहा है आज संजय जी, तो धरती से गीत खाना मिलेगा पीना मिलेगा, और यहाँ बबली बताएगा कि कौन से पत्र में हमको खाना मिलेगा।
1: जरूर शांता जी, अभी मैंने सबको बताया कि सोने के बर्तन और चांदी के बर्तन,
0: सोना चांदी जी।
1: अब हम आगे बढ़ते शांता जी, हाँ जी। अब है कांसा के बर्तन। कांसे के बर्तन में खाना खाने से बुद्धि तेज होती है, रक्त में शुद्धता आती है, रक्त पित्त शांत रहता है और भूख बढ़ती है। लेकिन कांसे के बर्तन में खट्टी चीज़ें नहीं परोसनी चाहिए। खट्टी चीज़ें इस धातु से क्रिया करके विषैली हो जाती है जो नुकसान देती है। कांसे के बर्तन में खाना बनाने से केवल 3% ही पोषक तत्व नष्ट होते हैं।
0: ये तो बहुत फायदाकारक है, फायदा इसमें
1: है। फायदा तो है, लेकिन कांसे के बर्तन में खट्टी चीजें नहीं रखनी चाहिए। जैसे नींबू हुआ, टमाटर भी नहीं, क्योंकि खट्टास से वो चीज विषैली हो जाती है।
0: अच्छा,
1: हाँ जी। अब हम आगे चलते हैं जी। तांबे के बर्तन। तांबे के बर्तन में रखा पानी पीने से व्यक्ति रोग मुक्त बनता है, रक्त शुद्ध होता है, स्मरण शक्ति अच्छी होती है, लीवर संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। तांबे का पानी शरीर के विषैले तत्वों को खत्म कर देता है, इसलिए इस पात्र में रखा पानी स्वास्थ्य के लिए उत्तम होता है। तांबे के बर्तन में दूध नहीं पीना चाहिए, इससे शरीर को नुकसान होता है।
0: तो इसमें फायदा भी है और ना फायदा भी है, हानि और नुकसान इसमें है। तांबा अगर हम कहे तो तांबा वो जिस पे हम मंदिर में जो देखते हैं ना, शिवलिंग के ऊपर जो,
1: हाँ जी,
0: जो धरता
1: घड़ा,
0: है
1: घड़ा
0: जो,
1: हाँ,
0: धरता है, उसका रंग जो है थोड़ा लाल लाल है।
1: हाँ जी, वही तांबा
0: है, वो तांबा है।
1: तांबा वो भी है, और पहले मंदिरों में तांबे के गिलास में पंचामृत रखते थे।
0: पंचामृत,
1: हाँ जी।
0: अच्छा,
1: अभी भी है, उसी में रखते हैं।
0: और अभी आपने कहा तांबे में क्या रखना नहीं चाहिए।
1: तांबे में, तांबे का पानी शरीर के विषैले तत्व को खत्म कर देता है, इसलिए इस पात्र में रखा पानी स्वास्थ्य के लिए उत्तम होता है
0: जी।
1: तांबे के बर्तन में दूध नहीं पीना चाहिए, इससे शरीर को नुकसान होता है।
0: नुकसान होता है, तो मेरे ख्याल से आप जैसे कहते हैं कि तांबे के बर्तन में पानी धर के और पी, तो अगर आप इसमें रात में पानी धर दे और सुबह में पी ले तो तंदुरुस्ती के लिए भी बहुत ठीक होगा।
1: हाँ, वो ठीक। आजकल मैंने देखा है शांता जी, आजकल तो बोतलें आ गई हैं तांबे की,
0: तांबे के बोतल भी आ गई।
1: हाँ जी, उसमें लोग पानी भर के अपने काम पे या स्कूल में बच्चे लेके जाते हैं।
0: बहुत अच्छा।
1: अब हम आगे चलते हैं पीतल के बर्तन।
0: पीतल यानी कोपर।
1: हाँ जी, पीतल के बर्तन में भोजन पकाने और करने से कृमि रोग, कफ और वायु दोष की बीमारी नहीं होती। पीतल के बर्तन में खाना बनाने से केवल 7% पोषक तत्व नष्ट होते हैं।
0: ये आखिरी लाइन जो आपने कहा, औषधि नष्ट होता है, यानी कि विटामिन जो कहते हैं, विटामिन खुरंत और
1: सब्जी,
0: सब्जी में जो खुरंत
1: 7% नष्ट होती है।
0: हाँ, विटामिन जो होता है, अगर आप तांबे के बर्तन में भोजन पकाओगे तो उसका विटामिन जो है कम नष्ट होता है।

सुनने वालों, जैसे कि आप सुन रहे हैं किस प्रकार और कौन सा बर्तन में जो आपको और भोजन तथा उनके उनके बारे में जानकारी जो बबली जी आज लेकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम न्यूज़ और कमर्शियल की ओर बढ़ेंगे और उसके बाद में हम आपके साथ फिर कार्यक्रम को आगे ले जाएंगे।

0: ये फ़ोन हिंदुस्तानी रेडियो है और जब मैं पीछे बैठे हुए तो कुछ भी हो सकता है ना शांता जी, पर हमारे लिए आपने भी एक भोजपुरी सॉन्ग को भी और सेलेक्ट कर चुके हैं, तो अभी हम चलाने वाले हैं उसे। और बबली जी जो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे कि बबली जी और कौन सा और संदेश यानी कि पात्र जो हम लोग के बर्तन हुए ना, तो बर्तन के बारे में और कौन सा संदेश और आप रखने वाले हैं?
1: हाँ जी, अभी मैंने आप सबको बताया तांबा और पीतल के बर्तन, अब मैं आगे बढ़ती हूँ सुनने वालों, अब है लोहे के बर्तन। शांता जी,
2: हम मैं सुरनाम से जानती हूँ लोहा के बर्तन, जिसमें संजय जी आप भी वो भी जानते हैं ना लोहा के बर्तन।
0: हम लोग के ऐसे शांता जी ऐसे होते थे कि हमारे घर पे एक लोहा का एक उसमें तीन गोड़ होते थे।
2: हाँ, त्रिपोता वाला,
0: तो उसमें दूध खौलाया जाता था चूल्हा पे। और लोहा का बर्तन और भी होते थे ना?
1: हाँ जी,
0: कढ़ैया जैसे कि आदि, वो भी लोहे के भी होते थे ना।
1: हम जब छोटे थे शांता जी,
2: हाँ जी,
1: परांत जिसमें आटा गूंथते हैं, हाँ, आटा सानते हैं, हाँ, वो भी लोहे की। पतीला जिसमें सब्जी दाल बनती थी,
2: हाँ,
1: कढ़ाई चम्मच सब पीतल के होते थे, लोहे के, सॉरी। और ये भी है शांता जी,
2: हाँ,
1: जब उसको कली भी करना पड़ता था, सुरीनाम में करते थे कि नहीं, स्पेशल हमारे घर में अरे आता था कली करवा लो, लोहे के बर्तन कली करवा लो, तो एक कली होती है चांदी की तरह, तो ऐसे एक जैसे काबल की तरह होती है, तो उसने क्या करना, उसको उस पर पहले अच्छी तरह गर्म करना, गर्म करके फिर उसने ऐसे थोड़ी सी लकीर सी मार देनी, फिर उसके पास एक स्पॉन्ज की तरह कुछ होता था, तो उससे ऐसे उसको सारी तरफ लगा देना,
2: अच्छा,
1: तो वो एकदम चमक उठता था, तो जिसके जितने बर्तन उसी हिसाब से वो पैसे लेता था।
2: अच्छा,
1: तो और थोड़े दिनों बाद वो कली फिर अरे जैसे 6 महीने साल तक चलती थी,
2: हाँ,
1: तो फिर उतर जाती, तो फिर सबने अपने बर्तन कली ऐसे करवाने
2: साफ करा देते।
1: हाँ जी, आजकल तो खैर नहीं है, लेकिन उस टाइम पे था, होगा लेकिन दुकानों में है
2: ना।
1: हाँ जी,
2: तो इसलिए जैसे हम आपके ये सुनते हैं ना कि किस बर्तन में खाने से क्या कैसा फायदा होता है, तो पहले जमाने के लोग तो बड़ा तंदुरुस्त थे, कोई भी ऐसी बीमारी नहीं था, और वो भी सब खेते में भी काम करते थे।
1: हाँ, सही बात,
2: देह से भी वो पसीना भी निकलता था, गंदगी जो है वो भी निकल जाता था जो ऑन सल्फर ही है। हाँ, तो जो सुरनामा तो हम जानते थे लोहा के हड़िया, तो संजय जी
0: बिल्कुल लोहा का हड़िया हमारे घर से भी रहा शांता जी, और पता नहीं अब कहाँ होगा या है या नहीं है, पर जरूर लोहा का हड़िया सबके घर पे होते थे, और ख़ास करके हम लोग के घर से,
2: हाँ,
0: जो जैसे कि अभी हमने कहा कि दूध जिसमें खूब खौलावल जाता रहा था,
2: तो मैं दूध भी उमें ओकर खौलावल दूध हमने भी पी है, दाल उसमें दाल जो बना दो तो ओहो।
0: पर शांता जी एक प्रश्न है, थोड़ा अभी मैं समझा नहीं एकदम से, शायद हमारे सुनने वालों सब समझ गए होंगे पर मैं खुद नहीं समझा। बबली जी, ये जो आप कह रहे थे जो बर्तन को कली,
1: हाँ जी,
0: उसके बारे में वो वो वो एक एक जो व्यक्ति है जो आपके घर से आकर के सब बर्तन साफ करते थे या कहीं दुकान पे ले जाना पड़ता?
1: ना, उन्हीं का काम ही ये था, जैसे भारत में सबका अलग अलग काम होता है, तो जो मोची है वो जूता सिलता है, और ऐसे बर्तन वाला भी आता था, और जो वो कहता था बर्तन कली करवा लो, उसका ये वाक्य होता था, तो जिसने बर्तन अपने कली करवाने होते थे वो एक जगह पे बैठ जाता, तो उसके पास बर्तन अपने लाके रख देते, तो बर्तन के हिसाब से फिर कहता तुम्हारे इतने पैसे हैं, कली करके देता था,
0: तो बड़ा सुख था वहाँ, क्योंकि हम लोगों के तो हमें ये बात भी ख्याल है शांता जी,
2: हाँ जी,
0: कि क्यों ना लोहा के हड़िया रोज और चूल्हा पे जलाया जाए, पर शाम को उसे तो धोना पड़ता था, तो हम लोग उनको हाथ घिस जाता था धोते धोते।
1: हाँ, बर्तन हम भी धोते थे,
2: हाँ,
1: जब सब्जी बनेगी दाल बनेगी,
2: हाँ,
1: तो बर्तन तो मांजने पड़ेंगे ना,
2: हाँ,
1: और मांज के जो उसका एक तरह से जैसे पेंट कह लो, दीवारों पे हम पेंट करते हैं,
2: हाँ,
1: उतर जाता दोबारा फिर पेंट करते हैं,
2: हाँ,
1: ऐसी बर्तन के भी लोहे ऐसे वो कली होती है वो फिर चमक उठते हैं। वो चलते हैं 6 महीने 1 साल तक, और रोज अगर उसमें खाना पकाएंगे तो वो तो फिर उतर जाएगी ना।
2: सरनाम में, सुरीनाम में हम बर्तन साफ करते थे, कैसे कहे, कोकोनट के
0: गुच्छा से।
2: हाँ, कोकोनट के छिलका से।
1: भारत में भी करते थे शांता जी।
2: हाँ,
1: ये स्पॉन्स वगैरह ये तो अब आए,
2: अब आए। हाँ,
1: पहले कहाँ थे, पहले उसी से करते थे,
2: कोकोनट के खुज्जा से। हाँ, और राखी से।
1: हाँ, कोयले की राख से।
2: तो हाँ, चूल्हा में जो आग रहा था, जो खाना बनता था, जो राखी था, उससे हम मंजन करते थे। थोड़ा से
1: हम करते थे मंजन, कोयले का कहते हैं अच्छा होता है दांत साफ करो।
2: वाकई में सही है बबरी जी, कोयला से अगर आप दांत साफ करो तो बहुत सफेद हो जाता है। जैसे आप आजकल में लोग ब्लैक मेडल खबरें करते हैं ना, स्पेशल मेडल है उसके लगाकर, तब पर रात भर सोते तो सुबह में हो जाते, सही से उपाय है कोयला खबरें।
1: सही बात, सब वो और आसान तरीका है, सब पुराने तरीके हैं जो आजकल थोड़े दूसरे तरीके से आ रहे हैं।
0: और जो आपने कहा कि जिस प्रकार से 6 महीना कभी 3 महीना में वो किस प्रकार से आप प्रयोग करते थे हड़िया, तो वो कली उसको कराते थे या उतना समय बाद, जैसे हर बार दिवाली आता है तो दिवाली से पहले साफ कराना
1: ना, जिसकी जैसे इच्छा वो दिवाली पे भी करवा सकते हो, जिसके जल्दी पहले कली उतरी वो पहले भी करवा लेते थे, जिसके ज्यादा खराब है बर्तन।
2: हाँ बबली जी आप बताओ।
1: हाँ जी शांता जी, लोहे के बर्तन, लोहे के बर्तन में बने भोजन खाने से शरीर की शक्ति बढ़ती है। लोह तत्व शरीर में जरूरी पोषक तत्वों को बढ़ाता है। लोहा कई रोगों को ख़त्म करता है, पांडु रोग मिटाता है, शरीर में सूजन और पीलापन नहीं आने देता, कमाला रोग को ख़त्म करता है और पीलिया रोग को दूर करता है। लेकिन लोहे के बर्तन में खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें खाना खाने से बुद्धि कम होती है और दिमाग का नाश होता है। लोहे के पात्र में दूध पीना अच्छा होता है। अब हम एक गाने की ओर बढ़ते हैं सुनने वालों।
0: जो गाने की ओर बढ़ रहे हैं तो क्यों ना हम एक शांता जी के पिटारा से निकाला हुआ गीत को रख देते हैं।